शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: लीजिए दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और पवित्र कार्यक्रम, एक और पवित्र एपिसोड हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं रोहिणी जी। और जैसा मैं हमेशा करता हूं, जिससे कि जो भी हमारे मेहमान हैं वो सीधे सीधे आपसे बात करें, मैं बीच में से हट जाऊं, मैं रोहिणी जी का स्वागत करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि वो आपसे बात करें, आपको बताएं कि वो कौन है, कहाँ हैं, क्या करती हैं। तो रोहिणी जी, हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए, उनके सामने आइए, हमें बताइए आप

0: कहाँ हैं, क्या करती हैं?
1: मेरा नाम टीवीबी रोहिणी है। बेसिकली मैं हैदराबाद की नेटिव हूँ और रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में।
0: जी
1: ऑल माय लाइफ, जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक तो हम लोग सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड काम कर रही थी। बाय प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन, आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉरेक्स मैनेज करती थी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और
0: जी
1: बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, ही वाज अ डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वी लिव्ड इन पंडारा रोड, तो ये
0: ऑलराइट,
1: हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा ये हमारा।
0: दैट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों, आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पंडारा रोड बहुत ज्यादा हैपनिंग प्लेस है, और वहां पर रहकर हम बात करेंगे रोहिणी जी से, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया, समझा दुनिया को, जिंदगी को समझा। तो रोहिणी जी, इस प्रोग्राम के तहत हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, अपने आप को पहचानने की। तो आप मुझे थोड़ा एनलाइटन करने कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है क्या? और सबसे पहले आपको आध्यात्म के बारे में कब पता चला, किसने बताया?
1: ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे आपने इस सुंदर दिव्य दर्शन नाम से जो चैनल आप कर रहे हैं काम, इस नाम से उस पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर।
0: प्लेजर।
1: और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और सुंदर तरीके से अगर बताएं तो आध्यात्म तो हर घर में, एवरीवन, एवरी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो पूजा पाठ अपने घरों में करते ही हैं। तो
0: जी
1: आस्था ही हमने समझा कि स्पिरिचुअलिटी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा शुरुआत हुआ था, आई वुड से कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि मेरी आत्मा ने या मेरे सोल ने ऐसे पेरेंट्स को चुना जो आंध्रा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं।
0: जी
1: तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग यू नो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करना, उनको मैं बचपन से देखती रही हूँ और मुझे लगा कि वही आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है। बट दैट इज ओनली रिचुअल दैट वी वर डूइंग इट, और आत्मा को अपने इवोल्यूशन के लिए जो चाहिए था वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर ये प्रश्न उठना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे आई हूँ, इस पृथ्वी पे आके क्या मकसद है मेरा और मुझे कहाँ जाना है,
0: जी
1: अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर उठे तो आप समझो कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हो। देयर एक्चुअली योर फर्स्ट स्टेप बिगिंस। और वो कब होता है जनरली? जनरली हम देखते हैं कि या तो मन बहुत ही खुश है या फिर बहुत ही सैड है। जैसे घर पे आपने अपने क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को, किसी को देखा, ही हैज पास्ड अवे और शी हैज पास्ड अवे, एंड यू सी द बॉडी एंड यू सी दैट ही इज नो मोर इन इट, देर इज नो लाइफ, आत्मा कहीं चली गई, ये तो शरीर है। और वो जब देखते हैं वो वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है अंदर कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है।
0: जी
1: तो ये वाला जो प्रश्न आपने बोला मेरे स्पिरिचुअलिटी का कब शुरू हुआ, तो ये तो मेरे को लगता है कि 35-36 years old जब मैं हो गई, आई लॉस्ट माई मदर वेन आई वॉज 34। उसके बाद से ये डीपर सर्च जो है ये हमारा जर्नी इस सर्च पे शुरू हुआ।
0: ओके
1: सो दिस इज व्हाट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी।
0: जी
1: तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को समझ जो मुझे समझ में आया अभी तक, तो मैं ये बता सकती हूँ, आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी
0: जी,
1: और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, मुझे ये ऐसा लगता है। आई एम देयर फ्रॉम 1996 पे मैं कुछ साधना कर रही हूँ जिससे मुझे इस बात पे कॉन्स्टेंटली विथ कमिटमेंट चलने का मौका मिला।
0: जी बहुत खूब। इसी तरीके की यात्राएं हमारे अपने जीवन में भी होंगी। आज जब रोहिणी जी ने कहा है तो हो सकता है आपको भी आपकी यात्रा याद और आ रही हो। दोस्तों चलिए उस यात्रा पर चलते हैं अपने को समझने की और इस भजन को सुनते हुए।

0: बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर बात रोहिणी जी। तो आज के प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है, जिस वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, उस समय में और समय में बहुत फर्क आ गया है। तो आज के यूथ के लिए आपको क्या लगता है, जो आज की जनरेशन है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारे परिवार में ही लोग हैं, उनके लिए अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज में ट्रेंड फॉलो करते हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पार्टनरशिप, कपड़े और जॉब और एवरीथिंग। सो आर दे फॉलोइंग ट्रेंड ओनली, या स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी मायने है उनका?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं अपने आपको ब्लेस्ड बोल रही थी, उसी तरह से मैं तो बोलूंगी कि आज का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर रियली ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उनको ये चीज तो समझ में आ जा रही है बहुत अच्छे से कि वेल्थ एंड नेम एंड फेम इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो भी कभी भी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या परमानेंट खुशी जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको कहाँ से तलाशना है, और उस परमानेंट खुशी के लिए क्या करना है, ये नॉलेज उन लोगों में बहुत यंग उम्र में ही मिलने लग गई है। मैंने जैसे बोला कि 36 इयर्स मुझे लगे कि वहां मेरा सर्च शुरू करने के लिए, तो मेरा बेटा जो 7 साल का था, ही वॉज रियली ब्लेस्ड। उसको अनोइंगली वो दीक्षा मिली, अनोइंगली उस पाथ को चुनने का मौका मिला, एंड देन ही कुड गो मूव फॉरवर्ड। उसी तरह से मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त किया, देन माई पैशन, इट वॉज माई पैशन टू टेक अलोंग पीपल ऑन दिस पाथ, हैंड होल्ड करके लोगों को, जिसको भी इंटरेस्ट है अपने आत्मज्ञान के रास्ते पे चलने का, उसका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाने का मेरा पैशन रहा है। हीलिंग वाज माय पैशन। पहले मैं बीमार थी, उसमें से मैंने अपने आप को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इस जर्नी पे चलती रही, और चलते चलते जितने लोगों को पॉसिबल है, जितने लोगों को चाहिए, इच्छा है, उन लोगों का हाथ होल्ड करके मैं आगे लेके चलना ही मेरा मकसद बना लिया अपने जीवन का
0: जी।
1: तो इसमें मैंने पाया है कि 8 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक सबको मैं इस रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ। आई फैसिलिटेट द कोर्सेस फॉर देम। तो वो कोर्सेस के माध्यम से उनको अनोइंगली नोइंगली वो कौन है ये जानने का मौका मिल जाता है। और जो अल्टीमेट चीज है, हम इस पृथ्वी पे आए क्यों, क्या करना चाहते हैं, उसके रास्ते पे उनको ले जाना शुरू कर देती हूँ। तो आई फील दैट यंगर जनरेशन इज रियली ब्लेस्ड। और मैं देखती हूँ कितने यंगस्टर्स हैं जो एक बार इस रास्ते पे एक चख लेते ना, जैसे कि आंखें बंद किया और आपने ध्यान अपने सांस पे लेके गए, सी हु यू आर, आपको समझ में आना लगता है।
0: Wow.
1: और आज के डेट में बच्चे से लेके बड़े तक सारे स्ट्रेस में ही है, और जैसे स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ भी रास्ता अगर थोड़ा सा भी उनको चखा दो तो दे आर गोइंग डीपली इनटू इट। तो आई वुड से कि इवन इफ दे आर फॉलोइंग ए ट्रेंड, इट नेवर माइंड, बट वो रास्ते पे चल पड़े ना
0: जी।
1: और वो जो चलना शुरू करते हैं, फिर उनको और कुछ चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ इस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। सो दे आर एंजॉयिंग दैट अल्टीमेट ब्लिस एंड परमानंद जो है वो महसूस कर पा रहे हैं।
0: All
1: तो
0: right.
1: उससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं हमें।
0: बहुत सुंदर विचार करने वाली बात है, और हमें विश्वास कई बार हो जाता है कि हम यूथ से या आज की जनरेशन से थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबली हम चाहते हैं कि वो हमारी तरीके की जिंदगी जिए, लेकिन उनको भी पूरा हक है अपने तरीके से जीने का। तो रोहिणी जी ने बहुत प्यारे ढंग से हमें क्लैरिफाई किया, समझाया है। आइए विचार करते हुए इस भजन को सुने और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत सुंदर। और जाहिर से बात है रोहिणी जी, जैसे जैसे हमने पिछले सवाल में थोड़ा सा डिस्कशन किया और आपने हमें बताया, हमको समझ में आई बात। और आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी है हम पर, हम लगातार कोशिश में लगे हैं कि वो हमारे मतलब हमको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया से, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा पूछा। सोशल मीडिया समझिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जो इतने फास्ट इम्प्रूव हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, सोशल मीडिया क्या, ये सब चीजों के वजह से तो हमें कोने कोने में बैठे हुए भी कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो हमें बहुत जल्दी से पता चल जाता है, isn't it?
0: जी।
1: तो अब इसके दोनों एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पुराने जमाने में टीवी चलती थी तो लोग

0: तो लोग उसमें ग्लूड हो जाते थे, बट देन देर वॉज अ टाइम कि दे वर फेड अप ऑफ दैट, दे कुड कम आउट ऑफ इट. सिमिलरली ये भी आप भी मानिए, सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फेसबुक है, लोग उसमें गुम हो जाते हैं. हाँ, उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं, वो खुद अपने विजडम से उनको ये यू नो दे नीड टू हैव देयर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है. इतना तो विजडम उनमें, इंटेलिजेंस होना चाहिए. और वो मीडिया के वजह से वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, ये भी बहुत जरूरी है. बट ऑल सेड एंड डन, सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड एंड इज गुड. इट्स गुड दैट सोशल मीडिया के वजह से काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है स्पिरिचुअलिटी के लिए. जिन जिनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वो यहाँ टटोलते टटोलते बाई चांस एक्सीडेंटली भी अगर उसमें कहीं देख लेते हैं एंड देयर उनका इंटरेस्ट जग जाता है, तो इट कैन कॉज एन अवेकनिंग इन देम. तो यू कैन टेक इट इन बोथ वेज.
1: जी
0: सोशल मीडिया कैन इम्पैक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और बहुत ही अच्छे वैल्यूज के साथ में सोशल मीडिया को अगर लेके चले, तो इट विल हैव वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन इवन स्पिरिचुअलिटी एंड द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं.
1: आई गेट इट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात बार बार कही जा रही है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड। हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना होगा। इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि हम अपना नुकसान कर बैठें, लेकिन सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए विचार करते हुए, ये एक थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है सोशल मीडिया को यूज करने का, विचार कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए।

0: दादा।
1: रोहिणी जी, बात स्पिरिचुअलिटी की हो, आध्यात्म की हो, तो एक टर्म और है जो पीछे नहीं रह सकता, वो है रिलीजन। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन आध्यात्म और धर्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, हमें बताइए ना, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग है?
2: धर्म तो वो हुआ जिसमें आप लोग पर्टिकुलर रिलीजन से आप पैदा हुए हो, उसी रिलीजन में जहाँ पे आपके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप, आपके आत्मा ने उन पेरेंट्स को चुना और इस रिलीजन को चुना, आप पैदा हुए और उसमें चल रहे हो, एक आस्था के साथ चल रहे हो, दैट इज अ रिलीजन। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द रिलीजन। आप अगर एक बनाना लोगे, बनाना का जो छिलका है वो समझिए कि वो रिलीजन है, और बनाना जो है वो है स्पिरिचुअलिटी है। वेरी सिंपल एग्जांपल अगर बोलो तो।
1: जी जी जी जी, जी.
2: तो हम लोग क्या कहाँ फंस गए, हम लोग सारे अपने अपने रिलीजन के, मतलब बनाना के छिलके में फंसे हुए हैं। बनाना को टेस्ट करना और बनाना को एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। जो बंदा स्पिरिचुअल होता है, आई मीन स्पिरिचुअल पाथ में जो चल पड़ता है, उसको ही इज एबल टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड एंड ही अंडरस्टैंड्स द ट्रू बीइंग ऑफ लव। यू आर मेड अप ऑफ लव एंड यू आर लव। तो वो एक एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअलिटी इज एन एक्सपीरियंस आई वुड से। और वो एक्सपीरियंस आपको इतना मैच्योर कर देता है कि आप हर किसी में पॉजिटिव चीज ही देख सकोगे और प्रेम से दुनिया को कनेक्ट कर सकोगे, क्योंकि होल वर्ल्ड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट द कॉन्शियसनेस ऑफ प्योर लव। और आप कण कण से आप जुड़ सकते हो विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ लव। द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ लव। तो ये हमें उस तरह से कनेक्ट कर सकता है, और स्पिरिचुअलिटी इज दैट आई वुड से। और रिलीजन में तो वो बात वहां से कुछ और में चली जाती है ना। तो रिलीजन इज फर्स्ट स्टेप, यू कैन से एटलीस्ट रिलीजन, एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को मानते हैं, कुछ आस्था है, कहीं पे श्रद्धा भक्ति बनी हुई है उनके अपने ही तरीके से। दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। तो ये तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप इसको आगे मिला के ले जा सकते हो।
1: आई गेट यू पॉइंट। दोस्तों, अगेन बहुत ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये हल्का फुल्का विषय वैसे भी है नहीं, क्योंकि जब ये पूरी जिंदगी को बदल के रख देने की ताकत रखता है, तो गहराई से विचार तो दोस्तों करना होगा ना। चलिए एक प्यारे से भजन को सुनते हुए विचार करते हैं, मेडिटेट करते हैं।

0: बहुत सुंदर। अब एक शब्द मुंह से निकल गया मैम, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल, जैसे आपने मेडिटेशन बोला तो वाह बोला
0: जी। सो क्या अध्यात्म में मेडिटेशन का रोल है, किस तरह से है? अगर है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं मेडिटेशन को? मतलब इसका मतलब हुआ ध्यान। तो मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल रही है ध्यान का मतलब क्या है मैम, और क्या अध्यात्म में ध्यान अगर हम यूज करें तो कुछ ज्यादा फायदा है, मतलब व्हाट इज द यूसेज?
1: बिल्कुल सही बोला आपने। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो सदियों पुरानी हमारे जो संस्कृति है भारत की, हजारों साल से लोग मेडिटेट करते रहे हैं। ऋषि मुनिया जो जो हमारे गैंजेस के बैंक्स के ऊपर बैठ के करते रहे हैं, दैट इज अ टेक्निक कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट लेटिंग गो, जस्ट लेट गो ऑफ योरसेल्फ। आपके क्रेविंग्स या अवर्शंस को लेट गो करना ही है और कुछ नहीं है। इट इज वेरी सिंपल टू लेट गो, और वो ही हम कर नहीं पाते हैं। जैसा ही हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस बनती है। वेरी सिंपली आई वुड से, पास्ट क्या है? पास्ट तो चला गया, क्या आप उसको लेके आ सकते हो? क्या नहीं ला सकते? और फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हो आगे क्या होने वाला है?
0: कुछ नहीं पता,
1: आगे का भी हमें पता नहीं। बड़ी सिंपल, एक बड़ी सुंदर एक सॉन्ग है, आई रिमेम्बर, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। Isn't it?
0: Absolutely.
1: तो जो भी है वो सिर्फ यही इस पल है, और इस पल की गहराई में जाना जो है वो मेडिटेशन है। So whatever you are doing, you are fully into that, पूरे दिल जान से आप जो भी काम कर रहे हो, जब उसके अंदर आप घुस जाते हो, that is meditation. You know, fully being your 100% in that work, whatever you are doing is meditation. और इस पल को जीना वही meditation बोलते हैं।
0: जी।
1: और इसी पल के लिए very beautifully it has been said, present is a, it's a gift, isn't it?
0: Correct.
1: ये Absolutely. पल जो है गिफ्ट है, वो आपके लिए प्रेजेंट है वो।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: इसको ही समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक जो हम अपने सांसों के माध्यम से मेडिटेशन के अंदर जा सकते हैं। एंड ब्रेथ इज द वन दैट कनेक्ट्स यू टू द आउटर एक्टिविटी एंड द इनर वर्ल्ड। आप आंखें बंद करो, और एक मिनट के लिए अगर आप आंखें बंद करें और ध्यान अपने सांस पे ले जाएंगे, जस्ट फॉर ए मिनट,
0: जी,
1: कैन यू डू दैट? आप आंखें बंद करो और ध्यान अपने सांस पे ले जाएं, धीरे से आंखें खोले, यू फील सो रिलैक्स्ड।
0: Absolutely.
1: So I can make you meditate just for 10 minutes and you can experience and let me know how you feel it.

0: ऑफ कोर्स
1: आपने रास्ता जो है बोलते ना, ब्रह्म ज्ञान खुद के अंदर है, ब्रह्मा जी ने अपने अंदर ही दबा दिया.
0: हाँ
1: इट इज एवरीथिंग इज इनसाइड यू एंड यू आर एज ए ह्यूमन बीइंग सर्चिंग आउटसाइड एवरीथिंग. तो वापस अपने घर का रास्ता, मतलब ये मान के चलो कि मेरा जो मकसद बना है आपको आपसे पहचान कराना, खुद से खुद का जो मिलन है
0: जी
1: वही है रास्ता अपने आप अंदर ले जाने वाला और जो आपको आपके हु यू आर पे ले जाता है. आप समझ पाओगे, दैट इज इट
0: गेट योर
1: अल्टीमेटली.
0: पॉइंट।
1: हाँ, बस अपने अंदर ही जाना है, बाहर कुछ भी नहीं है. बाहर की दुनिया से हमने आप अपने आप को समेट के अंदर ले जाना सीखना है.
0: करेक्ट
1: और इसके लिए अगर आपके लाइफ में कोई भी गुरु अगर मिल जाता है, गुरु मीन्स एनी वन हु कैन गाइड यू विथ कॉन्फिडेंस इन टू दैट डायरेक्शन. गुरु इज नथिंग लाइक आपके कमरे के बाहर रोशनी है, धूप है, आपके कमरे के अंदर धूप आने के लिए आपको खिड़की खोलना पड़ेगा ना,
0: एब्सोल्युटली
1: तब खिड़की से रोशनी आ सकती है, धूप अंदर आ सकता है. तो गुरु इज द वन हु इज ब्रिंगिंग लाइट इनटू योर लाइफ. यू हैव टू डू एवरीथिंग इज जस्ट लाइक आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, रेलिंग का सपोर्ट हो तो आप बहुत आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो.
0: जी
1: अगर रेलिंग नहीं है तो आपको ऊपर चढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है. सो गुरु कैन मेक योर लाइफ वेरी वंडरफुल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन विच यू कॉल इट द स्पिरिचुअलिटी, टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. तो
0: राइट
1: ब्लेस्ड आई एम, मुझे भी टाइम लगा था एक गुरु मेरे जीवन में आने के लिए, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज ब्लॉक्ड. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी पूजा पाठ करने वाले थे, तो मुझे तो लगा कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं अपने आप जो कर रही हूँ दिस इज द ओनली वे करके. बट वेन आई रियलाइज्ड, जब मेरे लाइफ में एक गुरु आए, एक पहला अपना तबीयत बिगड़ गया था जिसके वजह से मैं डेथ बेड पे जाके आई थी. एज आई टोल्ड यू आई लॉस्ट माई मदर इन व्हेन आई वाज 34 एंड आई माई सेल्फ वेंट इन टू डेथ बेड व्हेन आई वाज 35. जब वहां से लौट के आई तो बोलते ना, एक रात के अंधेरे में जब आप चले जाते हो तो सुबह तो एकदम इमीडिएटली आफ्टर दैट इज सवेरा, ओनली
0: करेक्ट
1: मिडनाइट के बाद में तो सवेरा आने वाला है. तो आई हैड गॉन टू दैट लोएस्ट एब एंड देन व्हेन आई केम आउट आई कुड सी द सन, आई कुड सी द लाइट इन माय लाइफ एंड दैट वाज द पाथ दैट आई केप्ट होल्डिंग ऑन टू. एंड कमिटमेंट के साथ में वो साधना करना बहुत ही जरूरी है. अगर आपका मकसद आप अपने आप को जानना चाहो कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो इस चीज के प्रश्नों का जवाब के लिए तो आपको साधना कमिटमेंट के साथ में करना बहुत ही जरूरी है.
0: जी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार किसी पर्टिकुलर इवेंट से इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर, मोटिवेट होकर और प्रॉबली प्रेशराइज होकर कोई चीज सीख लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उसके बेनिफिट्स कितने थे जो हम शायद आसानी से सीख भी सकते थे। दोस्तों आज मौका है रोहिणी जी की बातें सुनकर स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का, अपने आप को पहचानने की कोशिश करने का, कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने अंदर झांक लीजिए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से भजन को सुने और फिर मैं वापस आता हूं रोहिणी जी के पास।

0: बहुत सुंदर। रोहिणी जी, आपकी सारी की सारी बातें सुनकर अगर कोई व्यक्ति ये तय करे कि अभी तक तो चलिए मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं आध्यात्मिक बनूंगा, स्पिरिचुअल बनूंगा, तो आप उसको मतलब दो तीन सिंपल, बहुत सिंपल कोई स्टेप्स बताइए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया होगा वो इंसान इस चीज के लिए, तो 1 2 3 कुछ स्टेप्स बताइए कि क्या करे वो।
1: जैसे आपने बोला कि एकदम फ्रेश बंदा है और उसने शुरू करना है कुछ आध्यात्म के रास्ते में
0: जी,
1: पहले उसके अंदर वो मैच्योरिटी आनी है कि हाँ मैं कौन हूँ जानना चाहते हो तो आप ये समझो कि आप इस रास्ते पे चल सकते हो।
0: Okay.
1: आप सिर्फ बॉडी हो क्या, या आपने जो भी लाइफ में एक्वायर किया है वो सारे आपके साथ शुरुआत से नहीं थे, आपने एक्वायर किया हुआ है। आर यू ओनली दैट? इज देयर एनीथिंग समथिंग बियॉन्ड दैट? आप सिर्फ खाना पीना सोना या वेल्थ एक्वायर करना, नेम फेम करना, इतना ही समझते हो क्या लाइफ, या लाइफ में कुछ और भी है, या ऐसा कोई चीज है जो परमानेंट खुशी नाम की चीज है? लाइफ इज एटर्नल बोलते हैं, क्या उस चीज को जानना चाहते हो? लाइफ इज एटर्नल कहाँ है, कैसे है? तब वो इस रास्ते पे चलने के लिए शुरू हो जाते हैं।
0: ओके,
1: अगर ये क्वेश्चंस उनके अंदर उठना शुरू हुआ तो वो समझो कि इस बात पे पैर रखने के लिए तैयार है। और यहाँ शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं, आज के डेट में लोग इतना परेशान, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है हर इंसान का, इवन छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, एवरीवन इज गोइंग इनटू स्ट्रेस। डू यू एग्री टू दैट?
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
1: तो अब पहला क्वेश्चन, आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो क्या? तो डेफिनेटली एवरीबडी वुड लाइक टू गो आउट ऑफ स्ट्रेस एंड बी हैप्पी एंड जॉयफुल ऑलवेज, कम व्हाट मे बी द सर्कमस्टेंसेस। डू यू वांट टू कम बैक टू दैट जॉयफुल स्पेस इन यू? तो अगर स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो जैसे आपने बोला है, मेडिटेशन इज वन इजी वे, सहज मेडिटेशन है जो एफर्टलेसली कर सकते हैं। अब मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करना है, क्या आप आंखें बंद कर सकते हो? और कोई गाइड कर रहा हो तो उसको गाइड सुनते सुनते आप कर सकते हो कि नहीं, वो देखो। वेरी सिंपली आई कैन से आई विल जस्ट गाइड यू इनटू अ मेडिटेशन जस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड सी। 10 मिनट्स क्या, 5 मिनट, 2 मिनट भी आप शुरुआत करते हो तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ध्यान आंखें बंद करना है और अपने सांसों पे ले जाना है। पहला ब्रेथ जो है, आप जब आए थे यहाँ पे दुनिया में पहला काम क्या किया था? पहला सांस लिया था,
0: ऑफ कोर्स,
1: एंड और लास्ट हम क्या करते हैं बॉडी छोड़ने से पहले? लास्ट सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, सांस छोड़ी और बाहर गए। Isn't it?
0: जी.
1: So the whole life is between that first breath that you have taken and the last breath that you are going to leave. और वो बीच में जो भी गुजरा है, ups and downs, वो हमारी life रही है। और ये सांस ही है, ये सांसों का डोर ही है जो आपको, आपके माइंड को और आत्मा को कनेक्ट करता है। तो आपके आत्मा तक पहुंचने के लिए ये सांसों की डोर के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं।
0: Correct.
1: हम कौन हैं, उसका पहचान कराने का, खुद के अंदर दिव्य दर्शन करने का मौका मिल सकता है अगर हम सांसों की रिदम के माध्यम से जाए। सो आई टीच इन फैक्ट सुदर्शन क्रिया, जिसमें आपको ये मौका मिल जाता है खुद का दिव्य दर्शन प्राप्त करने का।
0: वाओ,
1: सो दैट इज
0: ब्यूटीफुल,
1: वेरी सिंपली, वेरी इजीली दैट कैन बी डन विद अ ह्यूमन बीइंग। इस यू नो, हम ब्रह्मास्मि तो हम सभी सुनते हैं,
0: सुनते हैं।
1: द होल वर्ल्ड इज वन, इट इज फुल ऑफ वन कॉन्शियसनेस। नो द साइंटिफिकली देखो तो पूरा दुनिया एक जनरल वाइब्रेशन ही है। हम उस वाइब्रेशन को, जनरल वाइब्रेशन को अलग महसूस करते हैं, इसलिए हमारे अंदर वी फील दैट देयर इज अ स्पेशल वाइब्रेशन इन अस। When we let go this special vibration in us and start experiencing oneness with this universal vibration, तो आप ये समझो खुद का आत्मा का परमात्मा का मिलन हो चुका है और उसी पे जाना है हमें.
0: Right,
1: isn't it?
0: Absolutely. बहुत खूबसूरत.
1: And that is possible. बहुत ही सुंदर तरीके से सांसों के माध्यम से हम कर सकते हैं. Taking attention to your breath. Keep taking attention to your breath. Consciously. बार बार उसको लेके आना है. हाँ, लोग समझते हैं कि मेडिटेशन मतलब थॉटलेस हो जाना. दैट इज नॉट इट. आप माइंड को जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट दैट रेजिस्टिंग द थॉट्स. एंड यू नो जैसे आप रिजेक्ट करते हो रेजिस्ट करते हो थॉट्स को जस्ट विद द कॉन्सेप्ट दैट मेडिटेशन मीन्स थॉटलेसनेस, वो गलत कॉन्सेप्ट है. मेडिटेशन इज नॉट बींग थॉटलेसनेस. मेडिटेशन इज एक्सेप्टिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग, विटनेसिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग ऑन योर माइंड. सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. थोड़ा सा हमने बस लेट गो ही करना है. जैसे ही लेट गो करते हो आप वो शांति एक्सपीरियंस करने लगते हो. स्ट्रेस आपका डिसॉल्व होने लगता है. द मिनट आपका स्ट्रेस कम हुआ यू विल फील मोर एनर्जेटिक. हमें सिर्फ एनर्जी तो चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, जो भी काम कर रहे हैं पूरा अच्छे से करने के लिए, और पूरा दिन ही हम एनर्जेटिक फील करें और किसी भी तरह के चैलेंज को हम ओवरकम कर पाए. उसके लिए जो शक्ति चाहिए, मन को चाहिए, माइंड को भी चाहिए, वो शक्ति आपको मेडिटेशन से और सांसों के ध्यान पे करने से आपको आ जाएगा.
0: राइट मैम. दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसा मैम ने बताया, और उसको अपनाना, उसको प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल. बहुत खूब रोहिणी मैम, आपका बहुत बहुत आभार है. थैंक यू सो वेरी मच. आज बहुत सारे मिथक हमारे दूर हुए हैं, बहुत कंफ्यूजन्स हमारे क्लियर हुए हैं और सिंपल रास्ते हमें मिले हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत सारी बातें हमें बताने के लिए. थैंक यू सो मच मैम.
1: थैंक यू गॉड ब्लेस यू. मे योर जर्नी बी कंप्लीट एंड होल. That's what I would wish every listener हमारे यहाँ पे जो भी आपको सुन रहा है, सब अपने अपने तरीके से, रास्ता सभी का एक ही है. हम अलग अलग रास्ते से जा भी रहे हैं, पर्पस एक ही है और जाना भी हमने एक ही जगह में, दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए ही हम इस पृथ्वी पे आए हैं. बस वो अगर हमें समझ में आए तो हम बड़े आराम से निकल सकते हैं.
0: Right, ma'am.
1: Thank you. God bless you.
0: Thank you.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक आम, तीन दोस्त और एक लेजेंड की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से आम से शुरू होती है, बट एंड बिल्कुल आम लोगों पे नहीं होती। ये कहानी खत्म होती है हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक नाम पर। रुक जाइए, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, इसमें है बचपन की शैतानी, फॉरबिडन जंगल जैसे पेड़, दूरदर्शन का एक संडे और एक मिशन इम्पॉसिबल। बीच में एक छोटा सा लड़का जिसकी एनर्जीज इतनी ज्यादा थी कि अगर उसे चैनलाइज नहीं किया जाता तो शायद कॉलोनी ही हिल जाती। 80s का संडे, एक सेक्रेट रिचुअल। दोस्तों, आज के बच्चे समझ ही नहीं सकते कि संडे आफ्टरनून का मतलब क्या होता है। एक ही चैनल दूरदर्शन और एक ही इवेंट संडे की मैटनी फिल्म। पूरा परिवार सोफे पर, पड़ोसी भी आ जाते थे कभी कभी, और अगर मूवी अच्छी हो तो साइलेंस ऐसा होता जैसे एग्जाम चल रहा हो। उस दिन चल रही थी गाइड और बैकग्राउंड में बज रहा था आज फिर जीने की तमन्ना है। बाहर का महा साइलेंस, कॉलोनी का ग्राउंड बिल्कुल खाली, ना क्रिकेट ना साइकिलिंग, बस हवा चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। पर एक बेंच के पास तीन शैडोज बैठी हैं, सुनील, अविनाश और एक छोटा सा लड़का, छोटा साइज पर फुल पावर, नाम सचिन। सचिन मतलब फुल ऑन एनर्जी पैकेट। अगर आप उसे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो तो या तो वो कुछ तोड़ देगा या फिर कुछ नया कर देगा। अब कॉलोनी में कुछ बड़े बड़े आम के पेड़ थे, उन पे आम लगते थे, रस भरे, टेम्प्टिंग। पर रूल ये था कि उसे टच भी नहीं करना। और दोस्तों, जब किसी बच्चे को बोलो ये मत करो तो उसका मतलब होता है बस यही करना है। सचिन उन पेड़ों को रोज देखता था जैसे कोई एक्सप्लोरर एवरेस्ट को देखता हो। सुनील धीरे से कहता है, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अविनाश कहता है, ये परफेक्ट चांस है। सचिन की आंखों में एक चमक आती है, मिशन आम। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और सचिन, देखा, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास जाते हैं जैसे आर्मी ऑपरेशन हो। सचिन सबसे आगे, मैं लीड करूंगा। सुनील, तू सबसे छोटा है। सचिन बोलता है, इसीलिए तो सबसे फास्ट हूं। और चढ़ाई शुरू, एक ब्रांच, दो ब्रांच, सचिन ऑलमोस्ट टॉप पे, आम बिल्कुल सामने, और उसका एक्सप्रेशन, आज हिस्ट्री लिखनी है भाई। और तभी सुनील भी सेम ब्रांच पर चढ़ जाता है। ब्रांच सोचती है, भाई मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं। क्रैक, और फिर ग्रेविटी का फुल डेमोन्स्ट्रेशन, थार, धूम, धपाक, पूरी कॉलोनी बाहर, टीवी बंद, गाइड पॉज। ये आवाज कहां से आई?
और वहां सचिन और उसकी टीम आम के नीचे पड़े हुए, आम के नीचे पेरेंट्स का एक्सप्रेशन, बेटा आज तो

तुम गए। घर पे इमरजेंसी मीटिंग बैठती है। मम्मी बोलती है, ये लड़का रुकता ही नहीं है। पापा कहते हैं, इसकी एनर्जी बहुत है। और भाई कहता है, डायरेक्शन जीरो है। सचिन क्वाइटली पर आम मिल जाता। और तब एक डिसीजन होता है, इसको किसी स्पोर्ट्स में डालो, इसकी एनर्जीज को यूज करो। नेक्स्ट मॉर्निंग सचिन को ले जाया जाता है एक क्रिकेट कोचिंग कैंप में। सचिन बोलता है, ये क्या है, मैं आम के लिए गया था, ये बात कहां से आ गई। कोच ऑब्जर्व करते हैं, रमाकांत आचरेकर जी। उनकी नजर अलग थी, उन्होंने देखा एनर्जी, फोकस, जुनून, और उन्होंने डिसाइड किया, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। सचिन बैटिंग करता है। पहला शॉट थोड़ा ऑकवर्ड, दूसरा शॉट बेटर, और तीसरा शॉट परफेक्ट टाइमिंग। और धीरे धीरे वो एनर्जी जो पेड़ पे चढ़ रही थी, अब बॉल के पीछे दौड़ रही थी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर वो आम का पेड़ नहीं होता, अगर वो गिरता नहीं, और अगर पेरेंट्स परेशान नहीं होते, तो शायद उन एनर्जीज को डायरेक्शन ही नहीं मिलता। कभी कभी हमारी शैतानी, हमारी गलतियां हमारी डेस्टिनी का शॉर्टकट होती हैं। और फिर क्या हुआ, वो सब जानते हैं। एक छोटा लड़का जिसे आम चाहिए था, एक दिन दुनिया का फेवरेट बन गया। लोग उसका नाम लेते ही स्माइल करते हैं, रिस्पेक्ट फील करते हैं। दोस्तों जिंदगी कभी कभी बहुत सिंपल सिग्नल्स देती है। एक आम, एक गिरना, एक दांत, और उसके पीछे छुपा होता है एक बड़ा सा फ्यूचर। आपकी लाइफ में कोई आम मोमेंट था, कोई शैतानी जो ब्लेसिंग बन गई, या कोई गिरना जो डायरेक्शन बन गया? जरा सोचिए, शायद आपका भी वो मैंगो मोमेंट है जो आपको कहीं ले जाने वाला है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा आम एक पूरी कहानी लिख देता है, जो बिल्कुल आम नहीं होती, बहुत खास होती है, जैसे कि आप। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: टाइपिंग वाले आर्टिस्ट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट, एक मिनट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट, दो मिनट। और मैसेज आता है, इतना बिल्डअप तो किसी फिल्म के ट्रेलर में भी नहीं होता।
2: लिखे जो

एक फैसला, एक प्यार और एक कहानी जो दुनिया बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जहां जिंदगी, कानून, प्यार और किस्मत सब एक ही लाइन पे मिल जाते हैं। और बिलीव करिए, इसका एंड आपको सरप्राइज ही नहीं, हैरान कर देगा। एक आदमी जो कभी पकड़ा नहीं गया। सोचिए, रात का वक्त है, शंघाई की सड़कें, बारिश की हल्की सी बूंदें, लैंटर्न्स हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं और उन्हीं रोशनियों के बीच एक आदमी चल रहा है। उसकी चाल सीधी है पर उसका रास्ता कभी सीधा नहीं रहा। नाम फैंग डाओलोंग, पर असली बात यह है कि उसका कोई एक नाम नहीं था। दिन में कार्गो शिप पे काम करता था एक आदमी, साइड में स्मगलर और असली सच एक सीक्रेट एजेंट। एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी खुद भी नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो हर रोज किसी और की जिंदगी जी रहा होता था। फैंग के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं था, जिंदा रहना जरूरी था। उस पर हमले हुए, धोखे हुए और कई बार उसकी मौत का प्लान बनाया गया, पर वो बच गया। कैसे? क्योंकि वो लड़ता नहीं था, वो समझता था और निकल जाता था। इसलिए लोग कहते थे वो आदमी नहीं, एक साया है। 29 ईयर्स की उम्र में फैंग सब कुछ छोड़कर शंघाई आ जाता है। नया शहर, नया नाम और नई जिंदगी, और वो है पोर्ट ऑफिसर। आईने देखिए, जो आदमी कल तक इलीगल चीजें ले जाता था, वो आज उन्हें रोक रहा है पोर्ट ऑफिसर बनके। पर दोस्तों, पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये हम सब जानते हैं। वो बस थोड़ा धीरे चलने लगता है। इसी शहर में एक और कहानी लिखी जा रही है। एक औरत, नाम है लिली, उसकी आंखों में शाम का साया है और आवाज में थोड़ी सी थकान। वो स्ट्रॉन्ग है पर टूट चुकी है। सिंगल मदर, दो बेटियां और जिंदगी का हर बोझ अकेली उठाती है। लिली गैम्बलर थी और वो जीतने की आदत डाल चुकी थी। लोग कहते थे इसके हाथ में जादू है, पर जिंदगी का एक रूल होता है, हाउस ऑलवेज विंस, और एक दिन जिंदगी जीत जाती है। कर्ज, लोगों का प्रेशर और घर में दो छोटी बेटियां, लिली के पास अब ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। उसे ऑफर मिलता है, एक काम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, ओपियम स्मगलिंग। एक रात, एक शिप और एक रिस्की सफर, लिली सोचती है और फिर हां कह देती है। पोर्ट पर रश है, लोग भाग रहे हैं। लिली बैग लेकर आगे बढ़ती है, बैग चेक होगा, वो रुक जाती है। ऑफिसर कौन है जानते हैं? जी हाँ, फैंग डाओलोंग। बैग खुलता है, अंदर ओपियम। अब यहां कहानी खत्म हो सकती थी, अरेस्ट, जेल और दी एंड, पर कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों। फैंग पूछता है, ये क्यों कर रही हो? लिली कहती है, दो बेटियां हैं मेरी। उसकी आंखों में ना ड्रामा है ना एक्टिंग है, सिर्फ सच्ची आंखें हैं। फैंग चुप हो जाता है, क्योंकि उसने भी मजबूरी देखी है, और फिर वह साइड हो जाता है। चली जाओ, बस इतना ही कहता है, ना लेक्चर ना वार्निंग, सिर्फ एक चांस। महीने बीत जाते हैं। एक रात, एक क्लब, म्यूजिक, स्मोक और बीच में लिली। फैंग उसे देख लेता है और दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर मिलना, फिर बातें, फिर अपनी कहानियां शेयर करना, और धीरे धीरे दो लोग जो बस सरवाइव कर रहे थे जीना सीख लेते हैं। 1949, शहर बदल रहा है, पावर्स शिफ्ट हो रही हैं, और फैंग जैसे लोग डेंजर में हैं। उन्हें भागना है और इस बार वो अकेला नहीं है। फेक नाम, फेक जिंदगी, रात के अंधेरे में वो भागते हैं हांगकांग की तरफ।
अब ना स्पाई मिशंस, ना थ्रिल, सिर्फ रियलिटी। फ्लोर साफ करना, डिशेस धोना और चुप रहना। कभी कभी पास्ट याद आता है, पर वो बस एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन एक बच्चा पैदा होता है, उसी गरीबी में पर उम्मीद के साथ, उनका बेटा। आप सोच रहे होंगे ये तो परफेक्ट फिल्म है, पर दोस्तों ये फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। और वो बच्चा जो इतनी मुश्किलों में पैदा हुआ, वो बड़ा होके बना जैकी चैन। सोचिए, अगर उस रात फैंग ने लिली को अरेस्ट कर लिया होता तो क्या होता? ना ये कहानी होती, ना ये प्यार होता और ना ये सुपरस्टार होता। जिंदगी में कभी कभी हीरो बनना जरूरी नहीं होता, इंसान बनना जरूरी होता है। कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन दुनिया को एक लेजेंड दे देता है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली कहानी तक याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है और हर इंसान के पीछे एक सैक्रिफाइस जरूर होता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: फ्री वाईफाई लवर्स, कुछ लोग जगह नहीं देखते, बस फ्री वाईफाई देखते हैं। यहाँ व्यू कैसा है, होटल रूम कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। चेक इन करते ही उनका पहला सवाल होता है, फ्री वाईफाई का पासवर्ड क्या है।

जब कचरा कहानी बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसीलिए है क्योंकि थोड़ी अजीब है और सच कहूं थोड़ी सी शर्मिंदा करने वाली भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो हम रोज फेंक देते हैं और उन लोगों की जो उनमें भी कहानियां ढूंढ लेते हैं। सोचिए, सुबह के 4 बजे का टाइम, ना ट्रैफिक ना हॉर्न, बस हल्की सी ठंडी हवा और स्ट्रीट लाइट्स का पीला सा उजाला। और इसी वक्त एक आदमी चल रहा होता है, हाथ में ग्लव्स लिए, पीछे एक कचरे की गाड़ी, नाम मुस्तफा। अब मुस्तफा कोई आम इंसान ही है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल आम नहीं है। आप और मैं डस्टबिन के पास से गुजरते हैं और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फेस साइड कर लेते हैं, पर मुस्तफा वो रुकता है, झांकता है और ध्यान से देखता है। उसे क्या दिखता है? किताबें। जी हाँ, किताबें। एक दिन एक पुरानी सी नॉवल, हाफ टोन कवर, पेजेस मुरझाए हुए, जैसे किसी ने थक कर उसे छोड़ दिया हो। मुस्तफा उसे उठाता है और एक सेकंड के लिए रुकता है। कल तक किसी के हाथ में थी, आज कचरे में है। वो उसे घर ले जाता है, रात को पढ़ता है और खुद से सोचता है, कहानी तो अब भी जिंदा है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, हर दिन एक नई किताब, कभी स्कूल बुक, कभी पोएट्री, कभी हिस्ट्री। और मुस्तफा हर किताब को ट्रीट करता है जैसे किसी ने उसे पर्सनली दी हो। एक दिन उसका दोस्त बोलता है, मुस्तफा भाई, तुम कचरा उठाते हो या पढ़ाई करते हो? मुस्तफा हंस के कहता है, दोनों, दिन में काम, रात में उसके सपने। सब हंसते हैं, पर धीरे धीरे वो भी नोटिस करते हैं कि मुस्तफा सिर्फ बुक्स नहीं उठा रहा, रिस्पेक्ट उठा रहा है। नेक्स्ट डे एक कोवर्कर एक बुक साइड में रख देता है, ले तेरे लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर धीरे धीरे ये एक आदमी का शौक नहीं, एक टीम का मिशन बन जाता है। कभी कभी उनके बीच फनी बातें होती हैं, ये हॉरर बुक है, तू ले जा, तू ऑलरेडी स्कैरी है, ये रोमांस नॉवल है, इसको मुस्तफा को दो, उसकी लाइफ में थोड़ा रोमांस आए। और सब हंसते हंसते बुक्स कलेक्ट करते जाते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, बुक्स बढ़ने लगती हैं। मुस्तफा के घर का हाल, बेड के नीचे बुक्स, अलमारी में बुक्स, किचन शेल्फ पे बुक्स, उसकी वाइफ, ये घर है या सेकेंड हैंड लाइब्रेरी? मुस्तफा कहता है, ये फ्यूचर का म्यूजियम है। टीम समझ जाती है, अब स्पेस चाहिए, तो क्रिएट करते हैं। और उन्हें मिलती है एक पुरानी डस्टी अबंडेंट फैक्ट्री की जगह, जो पहले गार्बेज ट्रक्स के लिए यूज होती थी। उन्होंने फैक्ट्री साफ की, पेंट की, शेल्फ्स बनाए और बुक्स अरेंज की। धीरे धीरे कचरे की जगह कहानियों का घर बन गया। 2018 में ये लाइब्रेरी ओपन होती है, पर ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये एक मैसेज है कि कुछ भी बेकार नहीं होता। एक छोटी लड़की आती है, अंकल ये बुक्स फ्री हैं? मुस्तफा मुस्कुराता है, नॉलेज फ्री होती है बेटा। उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और फिर उस मोमेंट मुस्तफा समझ जाता है कि ये सब कुछ वर्थ इट था। फिर वो लोग रुकते नहीं, हर जगह बुक्स पहुंचनी चाहिए और स्टार्ट होता है एक मोबाइल लाइब्रेरी का मिशन। गाड़ी में बुक्स, गांव-गांव तक नॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इवन प्रिजन्स तक ये कहानियां, ये किस्से और ये किताबें पहुंचती हैं, क्योंकि कहानी हर जगह जरूरी होती है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हैं? ये नहीं कि बुक्स बची, ये नहीं कि लाइब्रेरी बनी, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जिन लोगों को सोसाइटी इग्नोर करती है, वो लोग नॉलेज के रक्षक बन गए।
हम क्या करते हैं? पुरानी बुक्स फेंक दो, पुराने कपड़े फेंक दो, पुराने रिश्ते छोड़ दो। पर मुस्तफा, वो कहता है देखो तो सही इसमें क्या बचा है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चीजों की कीमत देखते हैं और दूसरे जो चीजों की कहानियां देखते हैं। और जो कहानी देख लेता है वो कभी किसी चीज को कचरा नहीं कहता। आपने लास्ट टाइम क्या फेंका था? कोई किताब, कोई सपना या कोई रिश्ता? और अगर आज मुस्तफा होता तो शायद वो कहता इसे मत फेंको, इसमें भी कहानी बाकी है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक याद रखिए, कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कचरे से ही मिलती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लोग एडवाइस फ्री में देते हैं, पर गलतियां हम खुद करके सीखते हैं। मतलब गाइडेंस अनलिमिटेड है, पर समझ थोड़ी लिमिटेड। फ्री एडवाइस और पेड मिस्टेक्स। What?

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, थोड़ा सा जोश से भर जाते हैं, थोड़ा उत्साहित होते हैं। पूरी जिंदगी हमारी उसी पर निर्भर करेगी दोस्तों। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली हेल्दी रहने के लिए इसलिए थी क्योंकि वो प्रकृति के पास थे, नेचर के नजदीक थे। सुबह सुबह का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर तुरंत सो जाते थे। वो अपने शरीर को प्रकृति के साथ चलाते थे। आज प्रकृति का मनुष्य से संपर्क तो टूट ही चुका है। रात को देर तक जागने से, सुबह देर से उठने से स्फूर्ति का अभाव तो होता ही है और आलस भरा रहता है। नए अनुभवों से सामंजस्य बैठाने के लिए पॉजिटिव आत्म छवि यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शन बदल जाते हैं, जिससे आपकी उपलब्धियां बदल जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से सकारात्मक बदलाव लाने की चाबी अच्छी आत्म छवि बनाए रखने में है। अपने बारे में अच्छा सोचिए दोस्तों। अपनी बातों पर अड़े रहने का रवैया आपकी तरक्की की राह में बाधा बन जाएगा दोस्तों। फ्लेक्सिबल होना सीखिए, लचीला बनना सीखिए। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस समय हटाना ही पड़ेगा जब कोई ये साबित कर रहा हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार उनके पास है। जरा सुन तो लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठहराव से बचना है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वो नए के लिए तैयार रहे।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

ये करीब 90 साल पुरानी बात है। एक बनारसी बंगाली किशोर बड़े ही शौक से कलकत्ता पहुंचा। देश की राजधानी रह चुका हुआ यह शहर तब दिसंबर की गुलाबी ठंड से सराबोर था। कलकत्ते से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, पर वो उस हुगली नदी की गोद में बसा हुआ है जिसमें गंगा का जल बहता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल में आते ही गंगा जी ज्यादा कलाकार हो जाती हैं, अपना नाम बदलकर पद्मा और हुगली रख लेती हैं। बहरहाल वो जमाना था जब कलकत्ते में खड़े होकर बनारस के रंग को महसूस किया जा सकता था। वो किशोर भी बस उसी रंग में डूबा हुआ था। कहीं से सितार, कहीं से शहनाई, तो कहीं से मृदंग की गूंज उठती थी। वहां विशाल संगीत समारोह चल रहा था। देश भर के आला संगीतज्ञ वहां थे, एक से बढ़कर एक सजीले, खूब चमकदार रंगीन पोशाकें और उन पर शोभित खूब सारे पदक मेडल्स, उस पर से भी भारी भरकम गहनों के क्या कहने, मानो किसी राजा की बारात जा रही हो जिसमें खूब सारे राजा राजकुमार आए हों, पूरा जौहर जलवा दिखाने। पर सजीलों की भीड़ में एक बहुत ही सादे और साधारण से व्यक्ति भी विराजमान थे। बस उन्हीं पर किशोर की नजर ठहर गई। वो किशोर 4 साल से नर्तकों की दुनिया का वासी था, 10 साल की ही उम्र में यूरोप घूम रहा था। एक से बढ़कर एक कलाकार सामने आए थे उसके, पर अभी नजर बार बार ऐसे सज्जन पर ठहर जाती थी जो कतई प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। किशोर ने शायद अपने बड़े भाई उदय शंकर से पूछा तो पता चला कि ये साधारण से दिख रहे संगीतज्ञ का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान है। कई तरह के साज बजाते हैं, किसी संत की तरह रहते हैं। वाकई वो किसी दीपक की तरह लग रहे थे जिनकी संगीतमय आभा कानों में घुल रही थी, दिल में उतर रही थी और नसों में पसर कर रोम रोम को हर्षित कर रही थी। जब शारदा मां की पावन भूमि मैहर से आए उस्ताद का संगीत सामने आया, तब चारों तरफ फैले सजीले लोग अपना अर्थ खो बैठे। मन बोल उठा कि ऐसे उस्ताद से जरूर कुछ सीखना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात रही कि उदय शंकर की गुहार पर उस्ताद नृत्य मंडली के साथ यूरोप जाने को तैयार हो गए। अब तो उस किशोर को उस्ताद के साथ सुबह शाम रहने का मौका मिल गया। कभी कभी किशोर के मन में होता था कि वो अलाउद्दीन खान साहब को विधिवत उस्ताद बना ले, तो कभी किशोर का मन कच्चापन से हावी हो जाता था। तब उस्ताद ने कहा, तुम पहले तय कर लो कि करना क्या है, सीखना क्या है, कहीं एक जगह मन लगा लो तो चले आना मेहर और सीखना। खैर एक दिन आया जब शिष्य ने फैसला कर लिया। बड़े भाई की ग्लैमरस नृत्य मंडली को अलविदा कहा और बहुत साधारण लिबास में मैहर पहुंचकर उस्ताद के चरणों में समर्पित हो गए। उस्ताद बहुत पक्के थे, उन्होंने ना सीखने में समझौता किया था और ना ही सिखाने में। उस्ताद ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा देवी और बेटे अली अकबर खान के समान ही मानकर अपने उस शिष्य को पारंगत किया। पूरे मनोयोग से सीखने सिखाने का दौर चल पड़ा। राग भैरव से भोर होती थी, भीम पलासी से दोपहरी तपती थी, यमन से शाम और मल्लार से रात चढ़ती थी। उस्ताद के आंगन में रोज 18 घंटे संगीत लहरियां उठती थीं। वो संगीत के मैहर घराने का स्वर्णिम काल था। अकबर सरोद सीखते थे, अन्नपूर्णा सुरबहार, और उस युवा को सितार के तार पर उंगलियां साधने में लगभग 7 साल लग गए। तब दुनिया को पंडित रवि शंकर के रूप में
एक विरल संगीतज्ञ मिला। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से न्यूयॉर्क लंदन तक पंडित रविशंकर के नाम का सिक्का चलता था। संगीत के जादू से सम्मान की बारिश तो होती ही थी। 7 अप्रैल को दुनिया में आने वाले रविशंकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने उस्ताद को किसी ईश्वर की तरह मानते थे और हमेशा तमन्ना रहती थी कि उस्ताद कुछ और सिखा दें। देश की अद्भुत हस्ती उस्ताद ने भी रविशंकर को सब कुछ दिया। अपनी बेटी अन्नपूर्णा का हाथ देकर दामाद भी बनाया। वो संसार के व्यस्ततम संगीतज्ञों में शुमार रखते थे। आज यहां तो कल वहां। उस्ताद ने एक बार उन्हें डांटा भी, तुम तितली की तरह हो, एक साथ बहुत सारी चीजें करते हो। समय बदला पर एक साथ कई काम की ललक छूटी नहीं। फिल्मों के लिए भी खूब काम किया। राज्यसभा में मनोनीत हुए, भारत रत्न से नवाजे गए। वो कहते थे, जब मैं कोई राग बजाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया को बंद कर देता हूं और फिर अपने भीतर गहराई तक उतरने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, ऐसी कोशिश का ही तो कमाल है कि उनका संगीत अमर है।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, हाँ, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
3: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।

संत मेहजी के प्रकांड पांडित्य और विरक्त स्वभाव की ख्याति पूरे जापान में फैली हुई थी। अक्सर जिज्ञासु उनके पास आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते थे। एक दिन जापान के राज्यपाल कियाजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सचिव को अपना परिचय पत्र यानी कि विजिटिंग कार्ड दिया और संत जी के कमरे में भेजा। संत जी ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें उनके राज्यपाल होने की चर्चा थी। संत जी ने सचिव से कहा, सुनिए भैया, उनसे कहिएगा कि मैं राजकाज की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे दरअसल राजनीति की बातें आती ही नहीं है। मैं तो केवल धर्म और साहित्य की चर्चा कर सकता हूं। निजी सचिव ने बाहर लौटकर राज्यपाल को संत जी के सारे बातों के बारे में बताया। राज्यपाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखकर भेज दिया। संत जी ने उन्हें बुलवा लिया। घंटों तक बैठकर उनके साथ धर्म की और ईश्वर के संबंध में चर्चा आई करते रहे। जब राज्यपाल लौटने लगे तो संत मेहजी ने कहा, देखिए महाराज, धर्म का सार सेवा, परोपकार, न्याय और करुणा जैसी चीजें होती हैं। ये सभी गुण मानव को अमर बनाते हैं, उसे शांति देते हैं। आप व्यावसायिक तौर पर क्या करते हैं, ये आप नहीं हैं, तो इसे हर जगह पर दिखलाते मत घूमा करिए। दोस्तों, समझने वाली बात है, जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम टीचर हैं, हम मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम आर्किटेक्ट हैं और जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो काम हैं जो आप करते हैं? मरीजों को ठीक करना डॉक्टर का काम है, तो आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। कोई ब्रिज बनाना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई नई चीज को बनाना इंजीनियर का काम है और आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और चीजें, पर दोस्तों, आप दरअसल हैं कौन? आराम से विचार करिएगा। हमारे पद, हमारे काम, क्या यही बस हमारी पहचान है? इन काम और पदों के पीछे भला हम हैं कौन? एक बार पूछ के देखिएगा किसी से।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़ा ही मिल जाएगा किसी को। तू टिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। जर्मनी के क्लॉस्टल शहर में उस बच्चे ने होश संभाला, तब अपने परिवार को खूब लंबा चौड़ा पाया। उसके दो तो बड़े भाई थे और उससे छोटे 10 भाई बहन, मतलब पूरे 11 भाई और 2 बहनें। छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के बड़े होने का इंतजार रहता था ताकि बड़ों के कपड़े उन्हें मिल जाएं। हफ्ते में 2 दिन अच्छा खाना मिलता था, बाकी दिन सूखी ब्रेड। शक्कर का तो स्वाद बच्चों ने चखा ही नहीं था। पिता खदान में काम करके बस जरूरी धन कमा पाते थे। देर रात जब पिता सुस्ताते थे तब दूर देश की कहानियां सुनाते थे, तो वो बच्चा भी दुनिया घूमने की तमन्ना से भर जाता था। धन की सीमा होती है पर मन की तो नहीं ना, मन तो बार बार सरहदें लांग जाता है। सरहद पार की खबरें अखबारों में ही आती हैं, तो वो बच्चा आसपास आने वाले अखबारों में झांकने लगा। अखबार पढ़ने वालों से सुनता रहता था और पढ़े हुए अखबार को बार बार पलट पलट कर देखता था। एक एक अक्षर में झांकते हुए वो बच्चा अखबार पढ़ना सीख गया। एक दिन मां बाप दोनों दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए कि उनका महज 5 साल का बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये तो चमत्कार है। अक्षर तोतली आवाज में साकार होने लगे, जबकि बच्चा स्कूल भी नहीं गया था। खुशनसीब मां बाप ने मन ही मन इस बच्चे पर खास ध्यान देने का फैसला कर लिया। उसके बाकी भाई बहन खूब खेलते थे, लेकिन वो जीव जंतु फूल पत्ती में ही लगा रहता। एक दिन वो पिता के टूटे हुए संदूक के सामान को देख रहा था, उसमें उसे एक पुराना पॉकेट लेंस दिखाई दिया। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में खरोंच के निशान थे, पर बालक ने उसे उठा लिया और पिता के पास पहुंचा। पापा ये मुझे दे दीजिए ना, मैं अपने जंतुओं को इसकी मदद से देखूंगा। पिता फिर चौंक उठे और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि उनका पुत्र प्रकृति के प्रति अथाह जिज्ञासा से भरा है, तो इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुशी के साथ कहा, लेंस ले लो बेटा और सदुपयोग करो इसका। फिर क्या था, वो बच्चा घंटों जीव जंतुओं को निहारा करता और उसे अलग ही संसार नजर आने लगा। प्रकृति प्रेम ही उसे चिकित्सा शास्त्र की ओर ले गई, और इसमें एक खास पहलू ये भी था कि डॉक्टर बनने से तब दुनिया के घूमने की संभावनाएं बढ़ सकती थी। उम्र कुछ बढ़ी तो दोनों बड़े भाई कमाने के लिए अमेरिका चले गए, पर उसे माने जाने नहीं दिया। मां की इच्छा थी कि कम से कम एक संतान पढ़कर नाम रोशन तो करे। किसी तरह परिवार ने हिम्मत दिखाई और उसे स्कूल पास युवा को गोटिंगेन शहर उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। तब पिता तो पुत्र की तेजी देखकर सकुचा जाते थे कि अगर रुचि दिखाएंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। समझदार युवा ने सोच लिया कि आगे का रास्ता उसे खुद तय करना है। विश्वविद्यालय में उसने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें सबसे ऊपर उसने लिखा, कभी बेकार मत बैठिए, कभी निष्क्रिय मत रहिए। वाकई दुनिया जो देख रही है वो दुनिया जिसे केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी निष्क्रिय है ही नहीं। ये शोध पत्र इतना कामयाब हुआ कि उन्हें पूरे $60 पुरस्कार में मिले, संग्रहालय में नौकरी भी मिली और लोग उस विद्यार्थी को रॉबर्ट कोच के नाम से जानने लगे। रॉबर्ट कोच ने पिता को फिर अचंभित कर दिया। अपने मजाकिया लहजे में पिता को पत्र लिखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है पापा, अंधी मुर्गी को भी मक्के का दाना मिल जाता है। समझिए मेरे साथ ऐसा ही हो गया।
अब जैसे जैसे परीक्षण की सुविधाएं बढ़ती गईं, रोबोट कोच विशेष रूप से खतरनाक बैक्टीरिया के चक्रव्यूहों को भेदते चले गए। सबसे पहले उन्होंने जानलेवा बीमारी एंथ्रेक्स के बीजाणुओं को खोज निकाला। चकित रोग वैज्ञानिक जूलियस कोहन हेम ने तब खुशी से भरकर कहा, यह तो बहुत बड़ी खोज है और ये युवा रॉबर्ट कोच अपने परीक्षण प्रतिभा में हमसे बहुत आगे निकल गया है। ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का पीछा करते करते दुनिया को 24 मार्च 1882 को बताया कि जानलेवा बीमारी तपेदिक का रोगाणु कैसे काम करता है, और रातों रात वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रोगाणुओं की विशाल बस्तियों में खोजते खोजते रॉबर्ट कोच ही थे जिन्होंने एक दिन बताया कि हैजा कैसे होता है। उनकी खोजों में अनेक प्रकार की दवाइयों के लिए रास्ता आसान बना दिया गया। कभी खूब अभाव देखने वाले इस इंसान ने खूब पैसे कमाए, लेकिन अहंकार छू न पाया उन्हें। वो कहते थे, मैं तो टहल रहा था, सोना राह के किनारे पड़ा था, संजोग से मुझे दिख गया बस। बेशक नोबेल प्राइज से सम्मानित इस वैज्ञानिक को दुनिया भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: अ से अर्जुन,
2: आ से आशा।
1: जी
3: ने बुलाया,
4: चलते हैं।
5: हाँ, सही कह रहा
4: था। चलो चलते हैं फटाफट। इससे पहले मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा। चलो,
6: कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे?
7: कहीं काम से
8: लगता है बच्चे आ गए। बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे अरे, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। शाबाश।
9: नमस्ते
8: बच्चों, नमस्ते। आ जाओ शाबाश। बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपने अपने नाम बताएंगे, ठीक है ना?
10: नमन,
8: लवीश,
10: अर्णव,
8: अभय,
10: दक्ष,
8: कुशाग्र, निशांत। भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चों को अच्छा लगता है?
11: हाथ खड़ा
12: मुझे।
8: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूंगा।
13: कहानी
14: अपनी बहन को।
15: मेरे दोस्त महमूद भी आए।
8: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानते हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
16: हाथी,
8: गिलहरी,
16: बिल्ली।
8: बिल्कुल ठीक। भाई मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
17: ये क्या बात हुई?
8: ये कौन आ रहा है?
18: नमस्ते भैया।
8: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, बैठ जाओ।
18: तो आज नई कमीज पहनी है।
8: क्या?
18: आज नई कमीज पहनी है।
8: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
18: अतुल?
8: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
18: ये मामा जी ने दी है।
8: अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
18: अमर।
8: आमर।
18: और भैया अकल का हो जाएगा आकल।
8: आकल। वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद। तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
18: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
8: हाँ आजब। शाबाश, बजाओ सी बात, जोरदार तालियां बजाओ, तालियां शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो।
18: आरती।
8: वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
18: अकेला।
8: अकेला। तो इसी बात पर बच्चों, हो जाए अक्षर की कहानी। तो अ से अक्षर, अ से
18: अक्षर।
19: भैया मेरी बहन ने छोटे अ से अनार सिखाया है।
8: अच्छा, और बड़े अ से?
19: बड़े अ से आम।
8: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं, छोटा आ बड़ा आ। और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे अ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ। तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं, छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ, थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है?
18: आ।
8: शाबाश। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ। आगे समझ में? अ से
18: अर्जुन
8: और आ से
18: आशा।
8: शाबाश। बच्चों, दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था, आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते। इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ?
2: क्या हुआ भैया?
3: क्या हुआ भैया?
8: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा, तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
19: वो रस्सी पे चलता है भैया।
8: हाँ, सही कहा तुमने।
19: जादू भी करता है।
8: जादू भी करता है हाँ।
19: भैया, और वो नए नए खेल दिखाता है।
8: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है। तो बच्चों, दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
19: भैया, आ से अचानक।
8: हाँ, आ से अचानक।
2: भैया, आ से आया।
8: आ से आया और आ से आई।
19: भैया, आ से आता।
8: आ से आता, शाबाश। आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों, जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई। अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन, जल्दी आओ जल्दी। अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ, तो बच्चों, आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और से अर्जुन,
19: आ से अमरूद,
8: आ से अमरूद,
19: आ से अगली,
8: आ से अगली,
19: आ से अजगर,
8: आ से अजगर,
2: अंदर,
8: आ से अंदर,
19: अम्मा
8: और आ से अम्मा, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों, अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
19: भैया, आ से आटा।
8: आ से आटा, शाबाश।
2: आ से आग।
8: आ से आग।
19: भैया, आ से अरहर की दाल।
8: आ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों, साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
2: अरबी की सब्जी।
19: भैया, से अरबी।
8: हाँ, शाबाश।
3: से अम्मा।
8: हाँ, से अम्मा।
19: या से अगर।
2: या से अगरबत्ती।
8: से अगरबत्ती। से अगर। से अजगर। से असलम और से अम्मा। से अरहर और से अरबी। और हाँ, एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार।
2: क्या बनाई?
8: अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
2: भैया, मुझे आलू पसंद है।
8: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
19: भैया, मुझे अनार पसंद है।
8: अनार पसंद है। से अनार। तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ, आम भी दिया। आम किसको पसंद है? वाह, सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर।
19: अ से अपनी।
8: अ से अपनी और आ से आँखें, अपनी आँखें।
2: भैया, आ से आम का अचार।
8: आ से आम और अ से अचार। तो आम का अचार, वाह क्या बात है, बजाओ ताली जोरदार। तो बच्चों, आगे सुनो। अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा, अरे बच्चों, अरे भाई, अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो। हाँ,
2: से अपने।
8: से अपने।
19: भैया, आ से आप।
8: आ से आप, शाबाश।
19: अपने
8: आप, वाह क्या बात है, अपने आप। तो बच्चों, अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना
2: भैया।
8: अच्छा बच्चों, ये बताओ, उन्हें खाना कैसा लगा होगा?
2: बहुत अच्छा।
8: शाबाश, अ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे, आहा, मजा आ गया, आहा, अम्मा ने कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था, आहा, मैंने तो खूब खाया।
19: भैया, आ से आहा।
8: बहुत बढ़िया, आ से आहा। हाँ, तो इस तरह दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने अम्मा का धन्यवाद दिया।
3: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबवा की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे,
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे,
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग,

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला। महात्मा गांधी की

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: 네!
1: 바람마당기!
0: 네! 바람마당기!
2: 네!
0: 바람마당기!
3: 정말 딸기 쌈는 나를 나가는 개수이 맛!
0: 바람마당기! 네!
3: 기차다이네 걸려서 뻥다루! 노! 노! 노! मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
4: इंतजार। जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 13, 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
5: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
5: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
1: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
5: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रोलेट एक्ट
6: वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
6: वापस लो।
2: रोलेट एक्ट
6: वापस लो।
5: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
1: मारो मारो।
5: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
1: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
1: डॉक्टर किचलू को
2: रिहा करो।
1: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? ऐसे फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।
0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
3: मासी, मासी मेरी लत सीधे कर दे। मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधे
4: कर दिया, कर दिया।
3: पानी
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो

0: कई हफ्ते बाद मिली।
1: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डायर।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
1: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
0: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय, निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: पहली उड़ान में
2: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
3: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
4: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
5: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
4: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
5: हाँ पूछो बेटा।
4: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
5: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
4: लेकिन माँ,
5: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
4: जी,
5: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
4: अच्छा माँ, ये लो माँ।
5: ला।
3: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
4: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे,
5: क्या मिल गया
4: मुझे? माँ माँ माँ,
5: क्या मिल गया, क्या मिल गया?
4: मुझे मिल गया,
3: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
5: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
4: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
3: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
4: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
5: धुआं?
4: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
5: हा?
4: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ?
5: क्या उड़ रहा
4: है? क्या उड़ रहा है?
5: कुछ हा? भी तो नहीं,
3: कुछ भी तो नहीं है।
4: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
3: वो तो है मगर
4: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
4: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
3: हाँ
4: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
3: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
4: ठीक है, आओ मेरे साथ।
5: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
2: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
6: ओ जुमाई में।
7: अरे हाँ,
6: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
8: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
8: अभी
6: है?
8: पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
8: आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
9: ना यार, क्या करेंगे?
6: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं
7: सकती। सो गया है।
6: अरे भाई साहब, जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
8: भाई साहब हट जाइए। आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
6: अरे अरे, वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
8: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
6: अरे अरे, टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
8: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
6: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
8: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
6: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
8: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
6: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
8: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो देखो, गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
6: अरे अरे, इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हो।
8: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
6: अरे अरे अरे, वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
10: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
11: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आपके रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
10: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
12: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
13: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
12: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
13: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह वो उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
12: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
13: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
12: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
13: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
12: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
13: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
12: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, तुम्हारे मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
13: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
14: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
12: जी बताइए डॉक्टर।
13: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
12: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
13: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
12: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
13: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
12: अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं
13: जी।
12: और डॉक्टर साहब एक
15: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
12: बताइए
13: जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
12: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
13: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें
12: जी। और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
13: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
12: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक प्रवाह ज्यादा
13: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं जी।
15: तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
12: जी बताइए।
13: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए
12: जी।
11: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
16: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज सांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
17: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। रेडियो टंट्या भील 90.8 FM का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हमारे किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें केवीकी के माध्यम से, कृषि वैज्ञानिक एक्सपर्ट के माध्यम से,
16: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज सांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
17: और सफल किसान की कहानी के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आप तक हम अच्छी से अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे सकें। तो किसान साथियों, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमेशा हम आपकी समस्याओं का निदान कर सके, आपके लिए कुछ कृषि में नवीनीकरण ला सके और आपकी जो आजीविका के स्रोत हैं उन्हें बढ़ा सके, कृषि विज्ञान के माध्यम से जो स्रोतों में आय वर्धक चीजें हैं उनमें उनको बढ़ावा दे सकें, साथ ही कृषि शिक्षा को भी हम बढ़ावा देते हैं ताकि कृषि शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियों को पहुंचाने का हमेशा से प्रयास रहा है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, आज के कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे शुकर पालन और पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, जहां हम जानेंगे कैसे हम हमारी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं और पशुओं का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए, साथ ही किस तरीके से ये पशु हमारे लिए एक आय का स्रोत बन सकते हैं और कैसे हम इससे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे जो हमारे दुधारू पशु हैं, किस तरह का रखरखाव जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम पशुधन की बात करते हैं तो उसकी सार्थकता तभी होगी जब हम बेहतर ढंग से उनका रखरखाव कर सकेंगे। और डॉक्टर पाठक, अगर आप से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पशुपालन क्षेत्र के लिए आपने लाइफ टाइम अचीव जो अवार्ड है वो भी अभी हम कह सकते हैं हासिल किया है, और लगातार इतने सारे एक शिखर तक आपका सफर रहा है, लेकिन जब दुधारू पशुओं के रखरखाव की बात हम करते हैं कितना जरूरी, क्योंकि शायद यही बात आप ना जाने कितने दशकों से जो किसान हैं उनके साथ बातचीत भी करते आए होंगे, उनको समझाते हुए आए होंगे।
3: जी मुकुल जी, देखिए हम बड़े भाग्यशाली हैं भारतवर्ष के जो पशुपालक हैं और हम सभी नागरिक के, हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है
2: जी।
3: और ये दुग्ध उत्पादन प्रथमता पहली एक दो साल की नहीं है, पिछले 10 वर्ष से जो है दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष जो है प्रथम चल रहा है। तो ये जो दुग्ध उत्पादन है इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे जो पशु हैं, क्योंकि पशुओं की संख्या में भी हम भारत जो है पूरे विश्व में नंबर वन है
2: जी।
3: तो इनको उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए और दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए पशु का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है
2: जी।
3: मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, तीन चीजें हैं पशुपालन में। एक है उसकी ब्रीड, कौन सी आप नस्ल रख रहे हैं, दुधारू पशुओं की बात करेंगे आज, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा है
2: जी,
3: और तीसरा है कि उनका आहार और उनका आवास कैसा है। तो ये अगर तीन चीजें बढ़िया हैं और विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य अच्छा है पशु का, तो निश्चित रूप से जो दूध उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, ये हम और कोई भी उत्पादन की बात करें, चाहे हम सुकर पालन की बात करें, चाहे भेड़ पालन की बात करें या बकरी पालन की बात करें
2: जी,
3: उत्तम स्वास्थ्य अगर पशु का रहेगा तो कम से कम पशुपालक का खर्चा होगा, खर्चा बचेगा, साथ ही साथ जो पशु है उसकी उत्पादकता बनी रहेगी
2: जी। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से, यानी जो पशुधन है उसकी सार्थकता कैसे हो सकती है, इन जो मुख्य कारक है इनका ख्याल हमें रखना होगा और इनके बारे में विस्तार से डॉक्टर पाठक आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: पोषण का असर पशुओं के शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी पड़ता है, ऐसे में दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन के लिए उनके पोषण का ध्यान रखना जरूरी है। दुधारू पशुओं को साफ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशु की पानी की जरूरत वातावरण की दशा और उसको दिए गए आहार पर निर्भर करती है। हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होने से पशु कम पानी पीते हैं, लेकिन दुधारू पशुओं को गर्मियों में कम से कम 4 बार और सर्दी में 2 बार ताज़ा पानी जरूर पिलाएं। अगर पशु गर्भित है तो दुधारू पशुओं को समय के हिसाब से ताज़ा भरपेट चारा देना चाहिए, तो उसके दूध उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। सूखे और हरे चारे को मिलाकर देना चाहिए, खासकर जब बरसीम की पहली या दूसरी कटाई पशु आहार के लिए की गई हो, क्योंकि इस परिस्थिति में बरसीम के पौधे में प्रोटीन और पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इनमें सेल्यूलोज की मात्रा कम रहती है। इस स्थिति में हरे चारे से पशु को अफारा होने की संभावना ज्यादा होती है और कभी कभी बिना पचा हुआ हरा चारा पतले दस्त के रूप में गोबर के जरिए निकलता है। ऐसे में पशु आहार से मिलने वाली ताकत पशु को नहीं मिल पाती है, इसीलिए हर दुधारू पशु के हरे चारे में कम से कम 20% सूखा हरा चारा होना चाहिए। अगर कम सूखा चारा पशु को दिया जाता है तब पशु के दूध में वसा की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे दिए गए हरे चारे में सेल्यूलोज की मात्रा बढ़ती है तब पशु को सूखे चारे की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ दुधारू पशु को पशुपालक संतुलित आहार जरूर दे जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा कम से कम 2% हो। इस तरह दुधारू पशुओं को उचित पोषण आहार देकर आप पशुपालन से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: जी शुकर पालन जो है बहुत ही लाभकारी उपक्रम है जिसके द्वारा ये पशुधन में जो अन्य प्रजातियों के तुलना में शुकर एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही कम समय में हमें ज्यादा लाभ देती है। शुकर पालन हम मुख्यतः जो है मांस उत्पादन के लिए करते हैं और शुकर जो है एक बार में 8 से 10 बच्चे देती है और साल भर में इसका जो पीढ़ी अंतराल है वो बहुत ही कम होता है, तो साल भर में ये 2 बार बच्चे देती है, तो हमें 8 से 10 एक बार में मतलब साल भर में 20 बच्चे के आसपास मिल जाती है जो 8 महीने में 80 से 90 किलो की हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें एक साल में काफी ज्यादा मात्रा में मांस की उत्पादन होती है और उसको हम 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफी भारी मात्रा में मुनाफा हमें जो है बहुत ही कम समय में मिल जाती है। तो अगर आप व्यावसायिक नजरिए से देखें तो सुपर पालन के द्वारा बहुत ही तेजी से जो है आर्थिक मुनाफा
2: जी, तो ना सिर्फ आर्थिक लाभ बल्कि इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से जो हमारे पशुपालक हैं जो दूसरे पशुओं को पालते हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी फायदा इसमें है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो विस्तार से यहां डॉक्टर सतीश के साथ हम उनको जानेंगे समझेंगे और आपको भी बताएंगे यहां पर, लेकिन आइए आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: शुगर पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, अगर सही तरीके से शुगर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में भी लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एक तो शुगर पालन कम लागत में किया जा सकता है, दूसरा इस व्यवसाय की शुरुआत कम जगह में भी की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इस व्यवसाय से बस एक साल में ही मुनाफा भी मिलने लगता है। शुगर पालन के लिए सबसे जरूरी बात है उपयुक्त जमीन या जगह का चयन। शुगर पालन में उनके रहने की जगह का चयन करते समय शुक्रों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रों के लिए घर बनाते समय सर्दी गर्मी बरसात नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शुक्रों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए जिससे शुक्र बाड़े में घूम फिर सके। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का खास ध्यान रखें। आहार की बात करें तो आमतौर पर बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनाने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। इसके अलावा शुक्रों की सेहत का भी ख्याल रखें। समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। शुक्रों को मुख्य रूप से शुक्र ज्वर खुरपका मुंह पका शुक्र चेचक और गलघोटू बीमारियां हो जाती हैं। इन रोगों से शुक्रों को बचाएं और समय से टीकाकरण करवाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: जो किसान हैं पशुपालक हैं देसी नस्लों को अपना रहे हैं जिनका स्वास्थ्य बेहतर माना जाता है, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर?
3: बिल्कुल, देखिए जब अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो मुख्य रूप से दो हैं, एक गाय है और एक भैंस है
2: जी।
3: ये दोनों ही हमारे दुधारू पशुओं की श्रेणी में आते हैं और गाय और भैंस के बारे में मैं फिर कहूंगा कि भारतवंशी भारत के लोग और भारत की जमीन बड़ी भाग्यशाली है कि प्रकृति ने हमको गाय की अगर हम बात करें तो गाय की जो हमारी देसी नस्ल हैं जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी नस्लें हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं
2: जी।
3: ऐसे ही अगर हम भैंस की बात करें भैंस की भी उत्तम नस्ल की जो मैं बात कर रहा हूं कि नस्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है तो भैंसों की भी नस्ल हमारे यहाँ पूरे विश्व में सबसे अच्छी है और साथ ही साथ भैंसों के मामले में तो हम पूरे विश्व में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है
2: जी।
3: और भैंसों का दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है तो नस्ल का बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ पहले बीच में कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि जो हमारी देसी नस्लें हैं विशेष रूप से मैं गौवंश की बात करता हूं, लोग ये कहते थे कि गाय रखेंगे तो 2 लीटर दूध देगी 5 लीटर दूध देगी ज्यादा चारा खाएगी, ये एक गलत धारणा थी लोगों की। हमारे देश, जैसा कि मैंने मुकुल जी भी बताया कि हमारे पास अच्छी नस्ल की और क्षेत्रवार नस्ल की, अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा की अपनी एक हरियाणी नस्ल है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां की एक थारपारकर अपनी नस्ल है, अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु, यानी प्रकृति ने हमारी जो भौगोलिक स्थिति है हमारे देश की, किसानों की और पशुपालकों की आवश्यकता अनुसार वो नस्ल दी है। तो आप अपने, मैं पशुपालक भाइयों को हमेशा जब भी बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में पाए जा रहे हो, जहां आप रह रहे हो, उस क्षेत्र की एक नस्ल है जो हमको मिली है, चाहे वो गाय की हो चाहे भैंस की हो। तो आप उत्तम नस्ल का अगर पशु रखोगे, उत्तम नस्ल का पशु का मेरा यहाँ तात्पर्य है कि जैसे मैं कहूं कि मुझे साहीवाल नस्ल की गाय रखनी है, तो साहीवाल नस्ल की प्योर गाय होनी चाहिए, उसमें साहीवाल नस्ल का खून प्योर होना चाहिए। तो अगर ऐसी नस्ल की गाय रखोगे तो जो 15 लीटर और 25 लीटर की जो बात करते हैं लोग, इन गायों से आपको, आप चाहे गिर ले लो, आप गुजरात की गिर ले लो, 25 लीटर तक दूध देती हैं।
2: जी,
3: यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आपको अच्छी नस्ल का पशु रखना है। संकर नस्ल का पशु रखना चाहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो रखने में कोई फायदा नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से पता करके अच्छी नस्ल का पशु खरीदिए। और अब तो एक अच्छी बात भारत सरकार ने करी है कि भारत सरकार की जो अपनी पशुपालन विभाग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर भी एक उपलब्धता है कि आपको अच्छा अगर गाय चाहिए तो कहां मिलेगी, अच्छी भैंस चाहिए तो कहां मिलेगी। तो वो सारी जानकारी आपको जो पशुपालन विभाग का जो वेबसाइट है उस पर जाइए, और पशु हाट बोलते हैं उसको, हाट करके उसका उन्होंने तैयार किया है, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाती है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो अपनी बातें
3: कारण हो सकते हैं, तो उन सारे कारणों का परीक्षण होगा। गाय के जननांग को भी देखा जाएगा, उसका पशु को चारा आप कितना दे रहे हो, वो सब चीजें, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, तब आपकी समस्या ये सॉल्व हो जाएगी निश्चित रूप से।
2: जी बिल्कुल, देखिए इसका समाधान हो सकता है। और साथ ही यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी दुधारू पशुओं में हम बात कर रहे थे, कई तरह की भ्रांतियां हो जाती हैं, ऐसी हम शुक्र पालन के क्षेत्र में भी नजर आती हैं। जो आमजन है उनका मानना होता है कि उनके क्षेत्र में ना होना चाहिए, कई तरह समस्याएं आ जाती हैं, और उस वजह से जो पशुपालक हैं वो कहीं ना कहीं एक दूरी बनती चली जाती है उनकी शुकर पालन से। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, कैसे उनका समाधान हम कर सकते हैं, और एक वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से सफलतापूर्वक शुकर पालन किया जाए?
5: वैज्ञानिक ढंग से शुकर पालन करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि किस नस्ल की शुकर हम पाल रहे हैं। जैसे व्यावसायिक पालन के लिए हम जो जनरली जो है लाभ कमाने के लिए, तो हमारा एक देसी नस्ल की शुकर है, और एक जो है हमारे जो संस्थान है राष्ट्रीय शुगर अनुसंधान केंद्र, और उसके जो 22 केंद्र है AICRP और मेगा, उसके द्वारा जो है बहुत सारे संकर नस्ल का विकास किया गया है। देसी नस्ल के शुगर होते हैं वो कम बच्चे देती हैं, और उसका विकास दर जो है कम होता है, मतलब 8 महीने में वो 40 से 50 किलो तक की होती है। लेकिन जो संकर नस्ल के शुगर जो विकसित किए गए हैं उनमें वजन जो है 8 महीने में 80 किलो तक पहुंच जाती है। तो ये, लेकिन जो संकर नस्ल के शुगर है उसको पालने में आपको ज्यादा आहार की देने की जरूरत होती है, और उसका रख रखाव थोड़ा सा खर्चीला होता है। लेकिन देसी नस्ल के शुगर हम बैकयार्ड प्रणाली में पाल सकते हैं, और जो किचन वेस्ट होता है उसके द्वारा आप कम खर्च में उसको पाल सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है कम लागत पे शुगर पालन करना है या थोड़ा अधिक लागत पर ज्यादा लाभ कमाना है।
2: तो यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा हमें मिल सकता है, और उसके लिए जो नस्ल है उसका चयन देखिए काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर चाहे आप दुधारू पशुओं की बात करें या इसके साथ साथ जो दूसरे, अगर हम शुगर पालन की बात करें, इसकी बात अगर की जाए।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: एक AICRP सेंटर है, उसमें जो है एक तो उत्तर प्रदेश की देसी नस्ल जो है बुर्रा है, एक देसी नस्ल है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। उसके अलावा जो है एक संकर नस्ल की शुकर है, लैंडली संकर नस्ल की शुकर विकसित की गई है जिसमें लैंडरेस और बुर्रा के को मिला के एक नस्ल विकसित की गई। इन दोनों नस्ल को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप शुकर पालन शुरू करते हैं तो उस समय नस्ल आप जो है किसी अच्छे फार्म से खरीदें ताकि किसी तरह की बीमारी और खराब पशु आपको ना मिल जाए। दूसरी बात यह है बीमारी, शुकर में आजकल जो है बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे आपको क्लासिकल स्वाइन फीवर और अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक बीमारी चली हुई है। इस बीमारी का कोई टीका नहीं है, लेकिन आप अपने फार्म में जैव सुरक्षा का उपयोग करके इसको कम कर सकते हैं। मतलब किसी बाहरी लोगों को अपने फार्म में ना प्रवेश करने दें और जो है चूने या ब्लीचिंग पाउडर का अपने फार्म पे छिड़काव करें। इस तरह से आप बीमारी को अपने फार्म में होने से रोक सकते हैं।
2: चलिए तमाम सावधानियां जो है
0: किसान साथियों, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ना अगर छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, छोटे जानवरों के का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका आपके पास जमीन है, चारे की व्यवस्था है वहां पर, तो आप जैसे हम आज बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की, तो दूध के लिए भी आप जो है गाय रख सकते हैं। भैंस की तो मैं नहीं, श्रीनगर में सलाह दूंगा आपको वहां रखने के लिए। और इसके लिए बहुत अच्छी परियोजनाएं जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की हैं, केंद्र सरकार की हैं और राज्य सरकार की हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीक के जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो आपके यहाँ एक श्रीनगर में कृषि विश्वविद्यालय है, शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में जो पशु संबंधित या पोल्ट्री से संबंधित भी अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करें और आपका जो जो जिस तरह का आपका विचार है या आपके पास जैसी जमीन है या चारा है उसकी सारी बात करके वो आपका प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ जो राज्य सरकार की तरफ से चाहे अगर कहीं सब्सिडी दी जाती है उसकी भी जानकारी देंगे। लोन कैसे दिया जाता है पशुपालन के लिए, क्योंकि पशुपालन को व्यवसाय को इस समय केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही, सभी राज्य सरकारें, खाली श्रीनगर में ही नहीं पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, वो अब इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। और आप सबको जानकारी भी देना चाहूंगा, बहुत सारे पशुपालकों को इस बात की जानकारी भी होगी, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए यह है कि भारत सरकार ने पहली दफे इतिहास में के हमारे जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, पहली दफे ऐसा हुआ है कि पशुपालन विभाग को बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक अलग ही मंत्रालय है। और इतनी परियोजनाएं पशुपालन विभाग इसको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जैसे यूसुफ जी कह रहे हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे पशुपालकों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा क्या लोन मिल सकता है वो आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग पशु रखे हैं और उनको उनके स्वास्थ्य के लिए
2: जी
1: फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा है,
2: यानी कई तरह की देखिए सुविधाएं हैं जिनका लाभ आपको मिल सकता है।
1: मैं भी हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यवसाय करिए, चाहे बकरी पालन करिए, सुकर पालन करिए या गौ पालन करिए, पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें। तो आपके देखिए एक तो जबलपुर में जो है वहां पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहां से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में आप जैसे पशुपालकों के लिए ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सिवनी के रहने वाले हैं, सिवनी में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाइए, पता करिए और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, उनको अपनी जमीन कितनी है आपके पास में, क्या व्यवसाय करते हैं, आपकी शिक्षा कितनी है, ये सारी जानकारी देना चाहते हैं उनको देनी होगी। साथ ही साथ आपका रुझान किधर है, क्या आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, क्या आप गौ पालन करना चाहते हैं, भैंस की डेयरी खोलना चाहते हैं या सुकर पालन करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ में कहां से आपको लोन मिल सकता है इसकी जानकारी वो पूरी प्रदान करेंगे और एक प्रशिक्षण भी देते हैं, एक 8 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। रीति कुमार जी, आप वो प्रशिक्षण लेके अपना बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं
2: जी। और उसके साथ साथ देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उसकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, बकरू मथुरा में ये संस्थान है, वहां से भी आपको ये सारी जानकारी हासिल हो सकती है। यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरह की सावधानी अपनाकर अगर पशुपालक चाहें तो सफलतापूर्वक शुकर पालन भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहां पर चुनौतियां रहती हैं, समस्याएं रहती है, रोगों के बारे में हम बात कर रहे थे और इन दोनों हम देखते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं, वहां पर किस तरह का बचाव किया जा सकता है।
3: जैसा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी बीमारी अभी अभी पिछले एक साल से भारतवर्ष में आई है
2: जी,
3: ये इसका प्रकोप अभी तक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सीमित था, लेकिन अब मेन लैंड में भी ये जा रही है
2: जी।
3: तो इसका अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व में इसका कोई टीका नहीं है। तो इसके बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, जैव सुरक्षा। अब जैव सुरक्षा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने फार्म में किसी भी आगंतुक को प्रवेश ना करने दें, कोई भी गेस्ट आपका आए आपके घर में रखाइए, आप फार्म में ना जाने दें। बाहर से अब आप पशु खरीद के लाते हैं तो उसको पहले क्वारंटाइन रखें, 21 दिन तक क्वारंटाइन रखें, ताकि उसमें अगर कोई बीमारी का सिम्टम आ रहा है तो उसे मेन पशु के साथ ना मिलाएं। उसके अलावा जो है आप अपने फार्म में जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, पोटास 10 लीटर पानी में जो है 1 ग्राम पोटास मिला के उसका जो है छिड़काव करें और उसका फुट मतलब फार्म में प्रवेश करने के पहले अपने पैरों को उसमें डुबा के उसके अंदर जाएं और पशुओं को छूने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें और फार्म से निकलते समय भी साफ करें। इसके अलावा जो है अपने फार्म में अगर कोई सूकर मर जाए तो उसे अच्छी तरह से उसको दफनाएं, मतलब 6 फीट गड्ढा खोद के उसके अंदर उस पशु को डालें और उसमें चूना या फिर ब्लीचिंग पाउडर के साथ उसको दफनाएं ताकि उस बीमार अगर किसी बीमारी से वो जानवर मरा है तो वो दूसरे जानवर में ना फैले।
2: चलिए, इसके लिए भी बेहद जरूरी जो लगातार हमारे किसान हैं वो सावधानी यहाँ पर बरतें हर स्तर पर, क्योंकि इसके जरिए जो आपके जो दूसरे पशु हैं उनकी आप जान बचा सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

सुबह है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: गाय पालिए, साहिवाल नस्ल की गाय पालिए, आप वहां पर मुर्रा नस्ल की भैंस पालिए, आप बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन भी जो है मैं आपको रेणु प्रसाद जी बताना चाहता हूं कि बकरी पालन दो चीजों के लिए किया जाता है, एक जो है दूध के लिए और दूसरा मांस के लिए। बकरी का दूध भी आजकल जो है, बकरी भी जो है ना दुधारू पशुओं की श्रेणी में आ गई है
1: जी,
0: भले ही 2 लीटर देती है, 2.5 लीटर देती है, लेकिन
1: काफी गुणवत्ता मानी जाती है उसकी।
0: जी हाँ, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, उसका अच्छा दाम मिलता है आपको। अगर आप जैसे किसान भाई, अगर पशुपालक भाई बकरी पालन में आगे आना चाहते हैं, उसका चीज बनाइए, उसका दूध बेचिए, इसके अलावा आप मांस परपज के लिए भी बकरी को पाल सकते हैं, और जबरदस्त इसका मार्केट है, इसका प्राइस बहुत अच्छा मिलता है आपको, और इसमें किसी प्रकार का टैबू नहीं है।
1: चलिए,
0: बस जरूरत यह है कि आप वैज्ञानिक तरीके से पालिए।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: तो आपके पास मिल ही गया है कि हो सकता है गर्मियों में, क्योंकि आपके उधर चारे की थोड़ी समस्या होती होगी, और ज्यादातर किसान भाई या पशुपालक क्या करते हैं, सिर्फ भूसा खिलाते हैं गर्मियों में,
1: सूखा चारा,
0: सूखा चारा देते हैं, हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, या उपलब्ध होता है तो उस क्षेत्र में नहीं होता है। तो एक तो यह है कि चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, कोई भी पशु हो, उसको प्रॉपर ढंग से जितना चारा चाहिए, और खासकर जो भैंस है, आप भैंस पाले हुए हैं तो भैंस के लिए सूखे हरे चारे की एक निश्चित मात्रा चाहिए, साथ ही साथ उसको दाना भी चाहिए, आहार में जो है दाना भी चाहिए, मिनरल मिक्सचर भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो ये सब अगर आप दोगे तो आप जो बता रहे हो वो जो है, हो सकता है उनके अंदर विटामिन ए की कमी रह जाती हो, उसकी स्किन में डिसीज हो जाती है, और भी कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों, उस भैंस के पेट में कीड़े हों, तो पेट के कीड़ों की दवा आपने प्रॉपर दी है कि नहीं दी है, यानी इसका जो स्वास्थ्य है वो आहार से भी प्रभावित होता है। अगर आहार अच्छा रखोगे, पानी जो है गर्मियों में पानी कम पिलाते हैं, पानी जो है गर्मियों में पूरा पिलाना चाहिए, और भैंस को तो वैसे भी दिन में 2 बार हम तो कहते हैं कि उसको अगर पानी की उपलब्धता है तो नहलाना भी चाहिए
1: जी।
0: तो
1: ये दुधारू पशु के लिए किस तरह का आहार व्यवस्था वो हमें अपनानी होगी, अभी का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए?
0: देखिए, इस समय जो है, अभी जो जैसे बरसात का समय है, तो दो चीजें एक मुख्य रूप से, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि इस समय घास खूब हो रही है जहां बरसात हो गई है, और जानवर को घास चरने के लिए छोड़ देते हैं। अब जानवर क्या करता है कि क्योंकि हरी हरी घास है, अच्छी कोमल घास है, स्वादिष्ट घास होती है, तो उसको ज्यादा खा जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर अफारा की बीमारी हो जाती है। अफारा यानी उसका पेट फूल जाता है, और इसमें जो है जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। दुधारू पशुओं में यह विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो आपको तो ये करना है कि उसको जो है ना एकदम पूरा हरा चारा नहीं देना है, या एकदम सारी पूरा दिन भर उसको नहीं चराना है, उसको समय से जितनी आवश्यकता है वो हरा और सूखा चारा, सूखे चारे में अगर आपके पास भूसा है तो भूसा मिलाइए, सूखा और हरा चारा। और अगर जानवर दूध दे रहा है तो दूध देने वाले जानवर को तो हमेशा 12 महीने चारा हरा भी देना चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर कोई किसान पशुपालन करना चाहता है तो वह कैसे लोन ले सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी और इसमें हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: लोन की पूरी शर्तें आपको देखनी होंगी, उन शर्तों में आप आते हैं और लोन की सुविधा है आपके यहाँ। आपको भी यही करना है कि जो संबंधित विभाग है, पशुपालन सीहोर का जो पशुपालन विभाग है, वहां से संपर्क करिए
3: जी।
2: मदद के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की मदद लीजिए। सीहोर में बहुत अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां के वैज्ञानिकों से बात करके और आपको लोन जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप गाय रखना चाहते हैं, आपने अभी कहा मैं गाय रखना चाहता हूं, गाय के लिए मिल जाएगा। आप बकरी के लिए रखना चाहते हैं, आप सुअर पालन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में सुकर पालन की भी बहुत अच्छी संभावना है
3: जी, बिल्कुल।
2: वो व्यवसाय भी अपना सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं।
3: और साथ ही अगर आपके पास केसीसी है तो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको आसानी से जो ऋण है वो उपलब्ध।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતેં ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
4: क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आते हैं
3: जी,
4: तो मध्य प्रदेश में शुकर पालन के लिए अपार संभावनाएं हैं। वहाँ का जो वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पहले से ISHP केंद्र चल रहे हैं और वहाँ का शुकर नस्ल जो है शुकर पाल सकते हैं। लेकिन शुकर पालन करने से पहले आपको इसका प्रशिक्षण लेना जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान आपको शुकर पालन के विभिन्न पहलू जैसे पोषण, आवास, नियमित फार्म गतिविधियां, शुक्रों की बीमारी और हर वर्ग के शुकर का रख रखाव के बारे में जानकारी मिलेंगी। इसके अलावा आपको कहां से जो है शुकर नस्ल उपलब्ध होगा, इसके बारे में कैसे चयन करेंगे और कलिंग करेंगे, ये सारे चीज कैसे कैसे, उसका हेल्थ कार्ड है, कौन कौन से टीके उनको किस समय पर देना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये प्रशिक्षण आप जो है वो जबलपुर वेटनरी कॉलेज से आप ले सकते हैं और उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके द्वारा आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है सरकार जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के एक कंपोनेंट के आधार पर जो है आपको 25% तक जो लोन जो है वो जनरल कैटेगरी को मिलता है और 33% जो है SC और ST कैटेगरी को लोन मिल सकता है। तो वो प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आधार पर आप लोन लेके सफलतापूर्वक जो है ये आप जो है सुकर पालन शुरू कर सकते हैं
3: जी, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
5: राजगढ़ से हैं और वो प्रोलैप्स का केस है आपके, उसमें योनि बाहर आ जाती है गाय की, यही जानना चाह रहे हैं ना
3: जी।
5: तो आपको तो उसे पशु चिकित्सक को नजदीक के जो पशु चिकित्सालय है वहां ले जाना पड़ेगा। देसी इलाज मत कराइए क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा हो जाता है। गांव में लोग ज्यादातर इसका देसी इलाज करने में लग जाते हैं, तो मैं आपको यहां से यही सलाह दूंगा कि जो नजदीक का पशु चिकित्सालय है वहां पे ले जाके उसका इलाज कराइए और ये ठीक होने वाली है, कोई बिना ठीक होने वाला बीमारी नहीं है या कोई परेशानी नहीं है।
3: जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आप इसका जो समाधान है वो भी हो सकता है और साथ ये भी माना जाता है कि जो अगला हिस्सा है अगर आप उसको थोड़ा नीचा रखेंगे तब भी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर पाठक जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारा आवास प्रबंधन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे समय में।
2: हाँ बिल्कुल मुकुल जी, अब हम दुग्ध उत्पादन की, पहले हमने नस्ल की बात करी, अब आवास विशेष रूप से आज हम बात करेंगे क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पूरे देश में जो है इस समय बरसात हो रही है, चाहे हमारा उत्तर क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, सब जगह। तो पशुओं के लिए आवास बहुत महत्वपूर्ण है और अगर अच्छा आवास नहीं है, अच्छे आवास का यहाँ तात्पर्य है कि आवास ऐसा होना चाहिए, खासकर बरसात के दिनों में, कि जहाँ पशु जो है का जो पानी है बरसात का वो अंदर नहीं जाए, पशु को वहाँ भीगने नहीं दे, पशु ऐसा नहीं हो कि बाहर खड़ा है। तो आवास में हवा जानी चाहिए, प्रकाश जाना चाहिए उसके अंदर जो है, साथ ही साथ जो आवास हो उसमें, क्योंकि पशु वहाँ रहेगा, दिन में भी रहेगा रात में भी रहेगा, तो वहाँ पर जो गौ और जो जो उसका गोबर और मूत्र है वो वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यानी आवास का जो फर्श है पशु का, वो फर्श ऐसा होना चाहिए ढलान वाला, ज्यादा ढलान का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ ये चीज इकट्ठी नहीं हो, वहाँ पेशाब पशु का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, गोबर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, और खिड़कियां विशेष रूप से, जैसे आप हवा चलती है कुछ बरसात के, बरसात में जो जो बरसात आती है बरसात में, तो हवा की बौछारें आती हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वहां अंदर जो है आपने दरवाजा तो बंद कर दिया है लेकिन खिड़कियां खुली हुई हैं और खिड़कियों से बौछार जा रही है, पशु भीग रहा है, एक तो ये बात। दूसरी बात, जब हम आवास की बात करते हैं तो दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको। पहला तो जो गयावन पशु है, जो एडवांस स्टेज में है, जो 6 महीने से ऊपर के जिनकी जिनकी वो
3: गर्भकाल हो चुका,
2: ज्ञानकाल हो चुका है, उनका आपको ध्यान रखना है कि जो आवास है वो ऐसा रपटन वाला नहीं होना चाहिए जहां पशु रपट के गिर पड़े, क्योंकि उसको चोट लग सकती है, उसका एबॉर्शन हो सकता है। दूसरी बात, जो बड़े पशु हैं उनको अलग रखें, जो छोटे पशु हैं, छोटे पशु का मेरा मतलब यहाँ पे उन पशुओं से है जो बच्चे दूध पीते हैं, जो गाय और भैंस के बच्चे छोटे हैं जो उनके दूध पर निर्भर हैं, उनके लिए भी आवास ऐसा करें कि वो भीगे नहीं, क्योंकि भीगने से छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है और उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
3: तो जो नवजात हैं उनके भी स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना होगा,
2: उनका भी स्वास्थ्य रखना है। तो आवास ऐसा हो जिसमें पशु पूरी तरह से स्वच्छता के साथ रह सकता हो और किसी तरह का वो भीगे नहीं। एक चीज और ध्यान रखिए, बरसात में जो है, क्योंकि आजकल बिजली गिरने के बहुत केसेस हो रहे हैं, आपने देखे होंगे, तो कभी कभी पशुपालक भाई क्या करते हैं, पशु को जो है शाम को जो है किसी नीम के पेड़ से या कहीं बांध देते हैं, वो काम मत करिएगा, और वो पशु जो है उसमें रात भर भी, अगर बिजली नहीं गिरेगी तो रात भर पशु भीगता रहता है, तो सवेरे देखेंगे तो पशु जो है बीमार हो जाएगा या उसका दूध उत्पादन तो निश्चित रूप से घट जाएगा। तो इस तरह का अगर ध्यान रखेंगे और आवास जो है अच्छा रखेंगे तो आपकी जो उत्पादकता है, जो दूध उत्पादन है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: है थोड़ा पीलापन का आ रहा है और अगर थोड़ा गाढ़ा भी आ रहा है तो ठीक है, 4-5 दिन तो जो है, जिसको हम कहते हैं ना कि जो कोलेस्ट्रम उसमें आता है, तो वो आप जो है उसको दूध को वो मत मानिए, लेकिन अगर उसके अंदर दूध के साथ में अगर वो आ रहा है, खून आ रहा है या और कुछ चीज आ रही है, तो आपका चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, और देखिए साथ में उनके जो थन है उनमें किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं है, जो उसके थन है चारों जो टीट्स हैं उनको देखिए, साथ ही साथ जब दूध निकाल रहे हैं तो उसमें नरेंद्र जी थोड़ा ध्यान रखिए कि जो है अब, क्योंकि आप बिहार में बरसात खूब हो रही है तो वहां पर गंदगी में नहीं रहनी चाहिए गाय, और साथ ही साथ जब दूध निकालने से पहले थोड़ा पानी, अच्छा पानी लेके साफ पानी से उसका थन धोइए, इसके बाद कपड़े से साफ करिए, तब दूध निकालिए।
3: जी बिल्कुल, और गाय अगर देखिए पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो नवजात के लिए, जो इस वक्त आप बता रहे हैं जो दूध की परिस्थितियां, वो काफी अच्छी मानी जाती हैं।
2: हाँ, वो दूध तो अच्छा है उनके लिए,
3: रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी देखिए इससे काफी बेहतर रहती है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे दुधारू पशु में आवास को लेकर, लेकिन शुक्र पालन की अगर बात की जाए तो आवास को लेकर भी अलग अलग तरह की धारणाएं शुक्र पालन में आ जाती हैं, कई जगह जो दुर्गंध का विषय है वो सामने आ जाता है पशुपालकों के, लेकिन किस तरीके से एक अगर वैज्ञानिक ढंग से हम बात करते हैं तो किस तरह का आवास इसके लिए हमें तैयार करना होगा?
4: शुगरों का आवास मुख्यतः जो है शुगरों की संख्या और उसकी पूंजी पर निर्भर करता है। जनरली जो है जब हम शुगर पालन करते हैं तो जो आवास पर जो है 20% खर्च होना चाहिए। आवास जो आप बनाइए वो एक ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जो कि सड़क से जो है पूरी साल के लिए जुड़े होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है उसके लिए आहार जो लाना होगा जो, और पानी और बिजली की आपूर्ति जो है उसमें साल भर होनी चाहिए। शुगर जो है ठंड और गर्मी दोनों से जो है बेहद संवेदनशील होते हैं, और और विशेष करके जो संकर नस्ल के सूकर आप पालेंगे वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो आपको जो उसका आवास बनाना है वो मौसम के अनुकूल होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सीधा धूप उस पर नहीं पड़ना चाहिए और बारिश से जो है पर्याप्त संरक्षण दे, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसको भोजन और पानी का जो पर्याप्त उपलब्धता वहां पर होना चाहिए। वैसे जो है जो बैकयार्ड सिस्टम में जो सूअर पालते हैं उसमें जो है आप जो है जो परंपरागत रूप से जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री है जैसे बांस हो गया, लकड़ी हो गया या ईंट हो गया, उसके द्वारा भी आप घर बना सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर जो है हर वर्ग के सूकरों के लिए अलग अलग आपको बनाना है, जैसे फिर जो आपका पिगलेट है छोटे सूकर है उसके लिए अलग, जो आप प्रेग्नेंट सूकर है उसके लिए अलग बाड़ा बनाना है ताकि वो जो है अपने बच्चे को कुचल ना दे। इस तरह से सबके हर सूकर के लिए अलग अलग आपको जो है बाड़ा बना के तैयार करना है ताकि सारे सूकर अपने आवास में आनंद मतलब अच्छे से रह सके।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: जो है पतला गोबर आने लगता है तो एक तो वो जरा टेस्ट करा लिए, इसके अलावा भी क्योंकि अब वैसे एक महीना हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए, एक महीने के बाद भी कभी कभी गायों के अंदर जो है ये देखा गया है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में या किसी तरह से, या आपका जो भोजन का में कोई चेंज किया है आपने तो वो भी परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन पेट के कीड़ों की ज्यादा चांसेस हैं, तो अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है तो दवा दिलवा दें, और दवा भी अपनी मर्जी से नहीं दें, जो डॉक्टर जैसा कहे दीपक जी उस हिसाब से उनको दवा दीजिए।
3: जी देखिए बेहद जरूरी, जो पशु चिकित्सक हैं पहले आप उनसे जरूर संपर्क करें और उसके बाद उन्हीं की सलाह पर ही जो उपचार है उसकी शुरुआत करें। यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कई तरह की जो बीमारियां हैं वो शुक्र पालन में आ सकती हैं अगर हमारे किसान पशुपालक जो है अनदेखी करते हैं तो, लेकिन अगर पूरी तरीके से प्रबंधन अच्छे से अपनाया जाए तब भी किस तरह की जो समस्याएं हैं आ सकती हैं और उनका निदान कैसे किया जाए जिससे सफलतापूर्वक शुक्र पालन हो सके।
4: सुकर पालन में जो है बहुत तरह की बीमारियां होती है, लेकिन उन बीमारियों को आप प्रॉपर अच्छे प्रबंधन के द्वारा जो है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि जो सुकरों को समय पर जो है टीकाकरण करें, इसमें सुकरों में जो मुख्य बीमारियां जो है एक तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है सुकर जो है, उसके अलावा खुरपका और मुंहपका रोग है और एक पोर्साइन सर्को वायरस है। इन तीन रोगों के लिए जो है टीकाकरण जो है जनरली जो है जब मां से बच्चे को अलग करते हैं उस समय जो है क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका देते हैं और हर 6-6 महीना पर जो अंतराल पर उसका बूस्टर डोज देते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी जो दो टीके मैंने बताए उसका भी करें। इसके अलावा जो कई तरह के परजीवी होते हैं उसके लिए जो कृमि नाशक का उपयोग जो है हर 6-6 महीने पे जो है सुकरों में करना चाहिए। इसके अलावा जो है सुकरों को जो पिगलेट होते हैं उसमें आयरन की बहुत कमी होती है, तो उसको जन्म के 4-14 दिन के अंतराल चौथे दिन और 14वें दिन जो है आयरन डेक्स्ट्रॉन का इंजेक्शन दिलवाना चाहिए ताकि उसमें जो है एनीमिया की बीमारी ना हो। तो ये और इसके अलावा जो सुकर में जो है मां से बच्चे को जो है 42 दिन के बाद जो है अलग कर देना चाहिए। अगर आप मां से बच्चे को अलग नहीं करेंगे तो वो फिर से गर्मी में नहीं आएगी और गर्मी में नहीं आएगी तो बच्चे फिर से देने के कंडीशन में नहीं आएगी। तो अगर आपको ज्यादा मुनाफे कर रहे हैं तो इस तरह से जो है मां से बच्चे को जो है वीनिंग के बाद जो है अलग कर देना चाहिए।
3: चलिए इन बातों का ख्याल हमारे जो शुक्र पालक है उनको रखना होगा और उसके बाद देखिए उनका जो ना सिर्फ लाभ जो है वो बढ़ सकता है बल्कि आर्थिक स्थिति और मजबूत सकती है। फिलहाल डॉक्टर सतीश आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ डॉक्टर सतीश हमें जानकारी दे रहे थे और खासतौर से डॉक्टर पाठक अगर टीकाकरण की बात की जाए तो उतना ही महत्वपूर्ण हमारे दुधारू पशुओं के लिए भी है, क्या इसमें आप जोड़ना चाहेंगे?
2: देखिए बिल्कुल पशुओं का टीकाकरण बहुत आवश्यक है, खासकर दुधारू पशुओं में तीन बीमारियां मुख्य रूप से देखिए खुरपका मुंहपका FMD बोलते हैं, हिमोरेजिक सेप्टीमिया HS बोलते हैं और ब्लैक क्वार्टर BQ। इन तीनों का वैक्सीनेशन जिन पशुपालक भाइयों ने अपने पशुओं का करा रखा है दुधारू पशुओं का अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कराया है वो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं का टीकाकरण इन तीनों बीमारी को लेकर आ लें। ये टीका जो है सभी पशु चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। बस सिर्फ आपको ये करना है कि अपने पशु को वहाँ पशु चिकित्सालय के पास लेके जाना है। साथ ही साथ जो है जिन्होंने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है अपने पशुओं को, उन जरूरी नहीं, मैं खाली दुधारू पशुओं की बात नहीं कर रहा, सभी पशुओं को अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है तो वो भी दवा पिला लीजिए। और जो दूध देने वाले पशु हैं जिनसे आप दूध ले रहे हो, चाहे गाय या भैंस है, उन्हें मस्टाइटिस थनेला रोग जो है इन दिनों काफी होता है, उसके बचाव के लिए जरूरी है कि आप अपनी जहां भी पशु का आवास है उसको साफ रखिए, वहां गंदगी मत होने दीजिए, और दूध जब भी निकालें तो स्वच्छ बर्तन में निकालिए और साफ पानी से पशु का थन धोकर दूध निकालिए। और आखिरी बात कि पशु को दूध निकालने के आध घंटे तक नीचे मत बैठने दीजिए ताकि उसको थनेला रोग जो है होने के चांसेस नहीं होंगे।
3: जी बिल्कुल, तो देखिए जो मूल मंत्र हो यही, अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वास्थ्य बेहतर आपके जो पशु है उसको मिल सकता है, साथ ही जो मानव स्वास्थ्य है वो भी इससे जुड़ा रहता है, तो ये जरूरी कि आप इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल डॉक्टर केमल पाठक जी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: तो जी हाँ किसान साथियों, जैसे आपने जाना भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमारे पशु बीमार हो जाते हैं और उन स्थितियों में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कहाँ हमें इसका इलाज करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां इनमें आ सकती है, इनके रख रखाव में आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के खेती बाड़ी प्रोग्राम में आपने जाना। किसान साथियों, रेडियो टंटियाबिल 90.8 FM झाबवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ साझा करेगा, परंतु अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटियाबिल 90.8 FM के साथ छावा की आवाज, रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटियाबिल, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है गौ सेवा और अनुभूति का सफेद रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज के दौर में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी परंपराओं और आधुनिक पर्यावरणीय चिंताओं के बीच एक नया सेतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, जिन्होंने एक अनोखी पहल के माध्यम से अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील और पारंपरिक प्रक्रिया को भी पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। हम बात कर रहे हैं गौमाया के संस्थापक, सामाजिक उद्यमी, सतत विकास के समर्थक और गौ आधारित नवाचारों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले व्यक्तित्व डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी का। डॉक्टर गुप्ता का कार्य केवल गोबर या गौ आधारित उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वेस्ट टू वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन न्यूट्रल समाधानों और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की एक व्यापक सोच को सामने लाता है। तो आइए बिना किसी देर के स्वागत करते हैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी का। डॉक्टर गुप्ता जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत अभिनंदन। जय गो माता, जय गोपाल।
1: चलिए तो डॉक्टर गुप्ता, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मुझे लग रहा है आज बातचीत बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हमारे साथ है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। कुछ अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए, कुछ बचपन के बारे में, पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए हमें।
2: जी जी, मैं प्रारंभिक से शुरुआत करूं तो पहले जो जीवन के 8 साल निकले सर, वो मेरे ग्रामीण परिवेश में निकले
1: जी,
2: जहां गाय और गोबर के बीच ही रहे। वहां पे मतलब हमारे घर परिवार में गौ माता का स्थान था, गोबर से भी हमारा ताल्लुक था कि उससे कहीं दूरी नहीं थी। जैसे आज के बचपन में जरूर ये सब चीजें धीरे धीरे गायब हो रही है, पर हमारा जुड़ाव था। और 9 वर्ष की उम्र में फिर मैं जयपुर आ गया, तो मेरी जो स्कूली एजुकेशन हुई वो हुई आदर्श विद्या मंदिर से।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ, देश सेवा और राष्ट्र प्रेम का जो भाव पैदा हुआ वो वहीं से हुआ, और वो निरंतर सतत जारी है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद एजुकेशन, BSc मैंने मैथ्स किया, MA हिंदी किया, कंप्यूटर ओ लेवल किया, MBA फाइनेंस किया, NDDY किया, और भारत सरकार एक कोर्स करवाती है MD पंचगव्य 3.5 साल का।
1: ओके,
2: तो एक डिफरेंट डाइवर्स फील्ड में और एजुकेशन रहा, तो बहुत कुछ सीखने को मिला जिसको अब जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं।
1: वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा डाइवर्स है। एजुकेशन भी आपने बहुत ही डाइवर्स प्राप्त कर ली है, सभी तरह की। BSc मैथ्स से आपकी शुरुआत हुई और MBA तक पहुंच गए। तो अब ये बताइए कि क्या स्टूडेंट लाइफ में समाज और सेवा के प्रति आपकी सोच थी, या स्टूडेंट लाइफ ने उसको प्रभावित किया, या आप किस तरह से ये सोच क्या उसी समय से थी आपकी?
2: जी जी जी जी, मैं सामान्य तो है, मेरे जैसे लेक्चर्स भी होते हैं, यूथ के इंट्रैक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं वहाँ हर बार एक लाइन कहता हूँ कि हर युवा के जब वो लगभग 16 से 20 की एज में होता है, तो उसमें एक भाव जरूर आता है। अमूमन मेरे अंदर था कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, ये था सर उस समय भाव। अब ठीक है, सामान्यतः युवाओं के आता भी है, फिर धीरे धीरे उसकी एजुकेशन होती है, मैरिज हो जाती है, बच्चे होते हैं, समाज की जिम्मेदारियां, तो कई बार फिर क्या होता है, 25-30 साल आते आते वो भी फिर यही सोचता है कि जो दुनिया कर रही है वही कर लेना है। पर इन एज ऑफ 46, ये ईश्वरीय कृपा मैं मानता हूं, जब कोरोना आया, कि वाकई मुझे जो मेरा 16 से 20 का सपना था ना, वो पूरा करने का सौभाग्य ठाकुर जी ने मुझे दे दिया सर।
1: ये बात तो आप सही कह रहे हैं, भाव सब में होता है लेकिन वो समय के संघर्षों के साथ साथ दबता जाता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो आपने सामाजिक उद्यमिता या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आने के लिए, तो क्या आपने उस समय चाहता है या कोई आपको ऐसे कोई गुरु मिले या कोई ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने आपको इस राह पे आगे बढ़ा दिया?
2: मैं जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो सामान्यतः वैसे जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, फादर मेरे HM से रिटायर हुए थे और तीन बड़े ब्रदर हैं, तीनों एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रिंसिपल्स हैं।
1: ओके।
2: और मैं खुद भी लोक जिम्बिश, अगर आपने नाम सुना, लोक जिम्बिश परियोजना चलती थी सरकार की, उसमें मैं 5 साल मास्टर ट्रेनर रहा, जहां मैं 21 ईयर की एज में 50 ईयर के टीचर्स को ट्रेनिंग दिया करता था।
1: अच्छा।
2: तो कहीं ना कहीं वो भाव तो मन में था कि हाँ हमें अच्छा काम करना, अच्छा कॉज करना है, पर ठीक है एक व्यापारिक दृष्टिकोण था तो BSc करते हुए कोई लाइन नहीं समझ में आ रही थी कि अपन को करना क्या है लाइफ में, किस डायरेक्शन में जाना है, और ये जरूर था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है लेकिन एग्जैक्ट चीज पकड़ में नहीं आ रही थी। तो आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे गायत्री परिवार से जुड़ने का मौका मिला, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और वहीं से प्रेरणा मन में आई कि कुछ देखिए अपने लिए तो दुनिया में सब करते हैं, जीव भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, पर ईश्वर ने यदि हमें मनुष्य बनाया है जहां दो डिफरेंट चीजें हमको दी सर, एक हमारी विचार शक्ति और एक इसको क्रियान्वित करने की ताकत
1: जी।
2: तो लगा कि अगर ये दो शक्तियां ईश्वर ने दी है तो क्यों नहीं हम कुछ ऐसा डिफरेंट कर जाएं कि हमारे मानव जीवन के सार्थक होने को साकार कर दें हम। तो बस वो भाव और विचार चलता रहा, व्यापार में मशगूल रहे थोड़े टाइम, मैं रियल एस्टेट में हूं सर, पिछले 25 सालों से मैं व्यापार में हूं, आज भी निरंतर जारी है, आज ही G+2 के अपार्टमेंट और विला वगैरह बनाता हूं, बट कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक था कि ये भी सेवा कार्य था, क्योंकि किसी को घर देना भी और एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, व्यापार तो चलो एक होता ही है बट मन में एक सुकून था कि किसी को आप एक घर दे रहे हैं। कहते हैं सर रोटी कपड़ा मकान तीन मूलभूत आवश्यकता है, रोटी खा के आदमी 6-8 घंटे रह सकता है, दोबारा खानी पड़ेगी, कपड़ा 2 साल पहन लेगा, 5 साल पहन लेगा, लेकिन मकान ऐसा है जो न केवल अपने लिए तैयार करता है बल्कि पीढ़ियों तक के लिए आदमी प्लान करता है। तो ठाकुर जी ने वहां भी सेवा ही कार्य दिया था कि किसी को छत और डिग्निटी देने का एक सौभाग्य हमें मिला हुआ था, तो वहां तो कर ही रहे थे बट फिर भी एक मन में पीड़ा थी कि कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्या और किया जा सकता है, बस उसकी सतत मन में विचार था और वो कोरोना के समय पे ईश्वर ने उसको पूरा किया और आज लगभग 6 साल हो गए, देखते देखते अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम ये बन चुका है।
1: मजा आ गया आपकी बात सुन के और कई नई जानकारियां भी मिल गई मुझसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए और आप इस मकान वाले कार्य को जो कि नॉर्मली ये माना जाता है विशुद्ध व्यापारिक काम है, इसको आपने एक बड़े सेवा कार्य की तरह जोड़ लिया है और आप उसको आई एम श्योर आप और लोगों से डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आप में भाव ऐसे है, तो आई एम श्योर आप भी वैसे ही कर रहे होंगे। तो मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो इसी सेवा कार्य पे और आपका जो लोगों को घर दे रहे हैं, किसी को पिया का घर मिल रहा है, किसी को पिता का घर मिल रहा है, किसी को बेटी का घर मिल रहा है, तो इसी पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।

0: हाँ तो गुप्ता जी वेलकम बैक। तो अब ये
1: जी
0: बताइए, गौ माता के बारे में अब हम बात करते हैं। अधिकांश लोग गौ माता को केवल एक रिलीजियस एक एंगल होता है जिससे हम उनको देखते हैं, लेकिन
1: जी
0: आपने इसके पर्यावरणीय और आर्थिक पक्ष को भी सामने रखा है। तो ये कैसे विकसित हुआ, हुआ कब से ये, क्या कोई ट्रिगर था ऐसा
1: जी
0: जो आपने सोचा, क्या इसके बारे में बताइए।
1: हाँ जी हाँ जी, जुड़े हुए तो देखिए गौ माता से बचपन से ही थे। जब ये पढ़ा था कि गौ माता हमारी विश्व की माता, गाओ विश्वस्य मात्र, ऋग्वेद में लिखा है गाओ विश्वस्य मात्र, गाय विश्व की माँ है, तो एक भाव मन में था। पर 2015 में मुझे सौभाग्य मिला सर MD पंचगव्य करने का, जो 3.5 साल का पार्लियामेंट्री बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है, और वहां गोबर गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाने सीखे। और पहला प्रोडक्ट जो डेवलप किया वो देशी गाय के गोबर से बनी हुई कागज पर छपने वाली मेरी किताब है, जिसे दुनिया की पहली किताब बनने का दर्जा हासिल हुआ, और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बुक ने अपने नाम किए, और 2022 में अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी इस बुक को मिला।
0: अरे वाह, दोबारा बताइए सर ये मेरी बात पूरी समझ। गोबर से किताब का कागज बना है, कुछ इसके बारे में बताइए। अच्छा पहले ये बताइए कि ये जो आप इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, क्या है कुछ?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं आपको बताऊँ, राजीव भाई दीक्षित का आपने नाम सुना होगा।
0: जी सुना है।
1: जिन्होंने अपने आयुर्वेद पे और स्वास्थ्य पे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बोला, उनका एक सपना था। पंचगव्य एक शब्द है सर, आयुर्वेद का एक पार्ट है पंचगव्य, जिसमें गाय के जो पांचों गव्य होते हैं, गोबर गोमूत्र घी दूध और दही, इनमें आयुर्वेदिक औषधियां मिला के जीवन की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सके। तो वहां मुझे MD पंचगव्य करने का सौभाग्य मिला। ये जो नाम के आगे डॉक्टर, ये PhD वाला नहीं है, जैसे एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर, ऐसे में पंचगव्य का डॉक्टर हूँ। और इन एज ऑफ 53 फिट एंड फाइन हो सर, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है एज का, तो वो केवल गौ माता के गव्यों के प्रभाव से है और सहज जीवन जी रहे हैं। तो वहां मुझे लगा उन 250 प्रोडक्ट में से क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो यूनिक बन सके। तो हमारे एक मित्र हैं जो गोबर से कागज बनाते हैं, तो कोरोना के समय में जब 1.5 महीने लगभग फ्री थे, तो उस ज्ञान को मैंने लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, और एक बुक लिखी, उसको प्रिंट करवाना था। मुझे यह था कि इसकी लगभग 10,000 प्रतियां प्रिंट करवा के जन जन तक बांट दूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोशिश करो, थोड़ा महंगा पड़ेगा, कम प्रतियां छपवाओ, लेकिन इस किताब को मैं ऐसे कागज पे छाप दूं जो आपको विश्व की पहली किताब बन जाए। हमने ट्राई किया और 10 दिन के अंदर ही सर वो पूरा हुआ, और 12 अगस्त 2020 को ये बुक विश्व इतिहास में पहली बार पब्लिश हुई, जिसको वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हुआ। इसमें पेड़ नहीं लगने दी हमने इसके कागज में, ये जो कागज है ये गाय के गोबर से ही बने हुए हैं।
0: ओके अच्छा,
1: इसलिए इसको विश्व की पहली पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हो गया। जीवन में पहली किताब लिखी और ठाकुर जी की कृपा से उसको वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हो गया। इसको हमने नाम दिया गौ में ज्ञान सागर, ये गौ माता के ज्ञान का खजाना है।
0: वाह
1: जी,
0: तो इसमें जो भी बात ने लिखी है वो 250 प्रोडक्ट्स के बारे में और उसका मतलब तरीका है या प्रोसेस बताया है, उसका जो कंटेंट है किताब का वो क्या है?
1: जो इसके पंचगव्य है गाय का, जैसे गोमूत्र है, क्या वैल्यू है, क्या हमारी लाइफ में कैसे हम फिट हो सकते हैं, गोबर क्या वैल्यू है, एक छोटा सा उदाहरण मैं उसमें कई बार देता हूँ कि कैसे गाय भगवान का दर्जा प्राप्त की। भगवान शब्द है वो, वैसे भूमि जैसे गगन, वैसे वायु ऐसे अग्नि नैसे नीर, ये 5 ही शब्दों से बना हुआ है भगवान। और आप विशेषता देखिए, हम भी भगवान इसीलिए है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, भूमि गगन वायु आकाश और नीर। तो यानी हर व्यक्ति में भगवान है। अब गाय कैसे भगवान हुई, क्योंकि गाय के 500 गव्य जो है वो पंच तत्वों के प्रतीक है। अगर हम गोबर की बात करें तो भूमि तत्वों का प्रतीक, यदि हम दूध की बात करें तो जल तत्वों का प्रतीक, यदि हम घी की बात करें तो अग्नि तत्वों का प्रतीक, यदि हम गोमूत्र की बात करें तो वायु तत्वों का प्रतीक। तो इस तरह 500 जो गव्य है वो पंच तत्वों के प्रतीक है, और वो भी भगवान ही बनाते हैं, इसलिए गौ माता भगवान के सदृश।
0: वंडरफुल, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और आपने जो किताब लिखी है वो गोबर से कागज बनाया है, वो भी सुन के मजा आ गया। कागज जो वेस्ट कागज होते हैं उनसे तो मैंने देखा है कि रद्दी से बनाते हैं कागज वगैरह, वो राजस्थान अमेर में ही बहुत बनता है, लेकिन ये आपने नई बात बताई। तो चलिए, एक नया गाना सुनने से पहले मैं थोड़ा सा ये और जानना चाहता हूँ, वेस्ट टू वेल्थ कचरे को संपदा बदलने की जो बात है, ये इसके पीछे क्या थॉट है आप?
1: देखिए, अगर दुनिया में हम बात करें तो एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कचरा इकट्ठा कर रहा है। बाकी हर जीव जो इस दुनिया में पैदा हुआ है ना, उसका हर अंग तक जीवित में भी और मरने पे भी काम आ जाता है। लेकिन ये हमारी विडंबना है, मनुष्य केवल और केवल कचरा बनाने का काम कर रहा है। मतलब प्रकृति और पर्यावरण सब ठीक करते हैं, लेकिन हम कचरा बना रहे हैं। अब वक्त आ गया, कोरोना ने सिखाया कि इस कचरे में से भी, आप कहते हैं ना, आपदा में से अवसर कैसे निकलता है। तो कोरोना के समय हमको ये समझने में मौका मिला कि कचरे को भी संपदा में बदला जा सकता है। और उसी को हमने कोशिश की कि गोबर, जो वैसे तो कहते हैं सर गो में वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, लेकिन हमने उसको ढेर लगा दिए गौशालाओं में, गोबर वैसे पड़ा है। तो प्रयास हुआ कि क्या ये गो में वस्ते लक्ष्मी को हम साकार कर पाएंगे, और उसी का एक प्रयास किया और उससे हमने गो में संविदा बनाई, जो पराली, देशी गाय के गोबर और हवन सामग्री के मिक्स से विश्व के इतिहास में पहली बार इस कंपोजिशन से हमने लकड़ी बनाई। भारत सरकार से उसका पेटेंट लिया और अब अंतिम संस्कार जैसा कार्य है, जो कि 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण है, जिसपे लोग बात भी करने से कतराते हैं। ठाकुर जी ने हमें वो सौभाग्य दिया, उसको हम सफलतापूर्वक संपन्न करवा रहे हैं और पेड़ बचाने का कार्य हमसे बन पा रहा है।
0: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी बात सुन के। और पर्यावरण से संबंधित जो आपकी सोच है वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए इस बात पे रुक के हमें गाना सुनते हैं और फिर आपका ये जो अगली जो टॉपिक आप डिस्कस करना चाह रहे थे संवेदनशील, उस पर हम बात करना चाहेंगे डिटेल में।
1: निश्चित,
0: एक पॉज लेते हैं।

0: हाँ डॉक्टर गुप्ता, अब वेलकम बैक। अब आ रहे हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव नेचर की बातचीत है लेकिन बहुत ही जरूरी है आज के समाज में। तो पारंपरिक लकड़ी की चिताओं के स्थान पर ये जो गौकाष्ठ आधारित शब्दहा बनाने का विचार, ये कैसे आया? क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से अलग का विचार है।
1: जी जी जी, कोरोना का दौर हम सबने झेला और उस समय एक दिन अखबार में खबर पड़ी कि लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज्यादा शवों को नदियों में बहा दिया, रेत में दफना दिया। तो थोड़ा सा मन में पीड़ा हुई कि आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को लकड़ियां नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना सोलवार अंतिम संस्कार ही बंद कर देंगे? और उसी विचार ने जब पल्लवित रूप लेना प्रारंभ किया तो मैंने विकल्प ढूंढने शुरू किए, मोक्ष धामों में जाना शुरू किया कोरोना के टाइम ही। और केवल जयपुर नहीं, नागपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे पीपीई किट पहन पहन के गए। एक जुनून चढ़ा कि क्या हम इस दौर को परिवर्तित कर सकते हैं, बिना लकड़ी के अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। तो ओवरऑल रिसर्च में उसको भी मैंने बुक में लिखा फिर कि कैसे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार प्रतिवर्ष होते हैं, हर अंतिम संस्कार में 2 पेड़ काट के जला दिए जाते हैं, उन 2 करोड़ पेड़ों के कट के जलने से 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही इंडिया में एवरी ईयर, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। पर चूंकि धर्म का काम है इसलिए कोई बोलता नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं दे पा रहे थे, तो बस वो ईश्वरीय कृपा से वो घूमते घूमते सारा रिसर्च करते हुए पता चला इलेक्ट्रिक और गैस वाले आज भी 2% हो रहे हैं, 98% आज भी वही पारंपरिक तरीके से लकड़ियों के जलाने से हो रहा है। फिर एक पीड़ा और मन में उठी, पहले मोक्षधाम गांव खेड़े में बिल्कुल बाहर होते थे, आज शहर में घरों के बीचों बीच मोक्षधाम और उसके चारों तरफ घर है। एक बॉडी सर बर्न होती है तो हजारों तरह की गैसेस निकलती है जहरीली उसमें से, और हम और हमारे बच्चे अगर वो जहरीले गीत सुनेंगे तो कैसे कैंसर नहीं होगा? तो मन में बस एक पीड़ा थी, ईश्वर ने मौका दिया, रास्ता दिया और एक ऐसा विकल्प ढूंढ लिया कि अब उसमें एक टुकड़ा भी लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये 90 लाख टन CO2 एमिट हो रही है, ईश्वरीय कृपा रही तो अगले 5 साल में भारत में इसको नेट जीरो पे ला देंगे सर। वो कार्य हम कर चुके हैं सफलतापूर्वक।
0: तो ये तो बहुत ही मैं मानता हूँ आपकी जितनी बात है सही है, लेकिन अब ये बताइए जब इस विचार को आपने लोगों के सामने आप रखते हैं तो कैसी प्रतिक्रिया होती है, क्या रिस्पॉन्स होता है लोगों का, क्या कुछ सामाजिक ऐसे चैलेंजेस सुनी आते हैं, सामाजिक या धार्मिक इस टाइप के कोई चैलेंजेस लोग करते हैं, क्या क्या विचार है लोगों का इसके बारे में?
1: सफलता के लिए मैंने 2 चीजें महसूस की जीवन में। एक तो अगर किसी में तकलीफ नहीं आ रही है तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जो काम सहज हो जाए वो बड़ा काम है ही नहीं। दूसरा, यदि आपको लोग पागल नहीं समझने लगे, मुझे इन चीजों का बहुत सामना करना पड़ा शुरू में, पहले घर में भी करना पड़ा, परिवार में करना पड़ा कि जब मैंने विचार दिया तो घर परिवार में कहा पागल हो गए क्या, अंतिम संस्कार से रिलेटेड क्या दिमाग लगा रहे हो, ये अपना काम थोड़ी है, ये तो दुनिया जो कर रहे हैं करने दे, अच्छा भला आपका काम चल रहा है, क्यों परेशानी उठाना। पर चूंकि कहते हैं ना, सनक जब सवार होती है और पागलपन जब जुनून की हद तक आ जाएगा तो निश्चित मानिए सफलता के द्वार हमारे लिए अपने आप खुल रहे होते हैं। उन दिनों जब मोक्ष धामों पे गया, जहां भी बात की, 2 शब्द मैं इसमें डिफर करूंगा। आपने कहा एक गोकाष्ठ, ये एक्चुअली गोबर से बनने वाली सामान्य लकड़ी है जिसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 2500 होता है, 2500 जलाने की क्षमता, और बॉडी की बर्निंग के लिए 3000 का मिनिमम GCV चाहिए, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब गोबर से अंतिम संस्कार हो तो जाता था, ये भी 2015 में मैंने ही शुरू करवाया था हमारी गौशालाओं में, बट वहां प्रॉब्लम आ रही थी, बॉडी में अस्थियां चिपक जाती है, फिर जो तीसरे दिन खून चुनने जाते हैं तो लकड़ी से तोड़ तोड़ के निकालने पड़ते हैं, तो वो बड़ी पीड़ादायक चीज है कि मरने के बाद भी आप लकड़ियों से कूट रहे हैं। तो उसके विकल्प के रूप में हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, गौमय समिधा। उसमें पराली मिलाई, जो अगेन भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पराली मिलाई, गाय का गोबर मिलाया, उसको पवित्र बनाने के उद्देश्य से हवन सामग्री मिलाई और नाम दिया गौमय समिधा। गौमय का मतलब गोबर, समिधा का मतलब यज्ञ करने योग्य पवित्र लकड़ी। इसका भारत सरकार से पेटेंट कराया, स्टार्टअप इंडिया में इसको रजिस्टर्ड करवाया, और आपको मुझे बताते हुए आश्चर्य है कि जहां स्टार्टअप में आजकल 99% टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर उनके चलते हैं, ये गोबर का अकेला पहला ऐसा स्टार्टअप MIIC MNIT में गया जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल जहां भी गया हर जगह ये आइडिया फर्स्ट आया सर, और वर्ल्ड के टॉप 40 इनोवेटिव आइडिया में सेलेक्ट हुआ ये।
0: ये तो बहुत बढ़िया बात है। इनफैक्ट मेरी भी थोड़ी लर्निंग हुई, मैं समझ रहा था आप जो यूज करते हैं वो गोकास्ट यूज करते हैं, वो गो में संविदा आप यूज करते हैं।
1: जी,
0: ओके, ओके, ओके, ओके, अच्छा। जनरली वो जो छाने की जगह आजकल मैंने देखा है जब अंतिम क्रिया होती है तो वो लंबे लंबे
1: लंबी लकड़ी
0: गोकास्ट देते हैं आजकल। आदर्श नगर में गया था अभी तो वहां ये
1: बट उसमें तो प्रॉब्लम आती है कि थर्ड डे जब हम फूल चुनने जाते हैं ना तो वो अस्थियां चिपक जाती है एक्चुअली।
0: ओके,
1: तो वो फिर निकालने में तोड़ के निकालते हैं पीड़ा है, तो इसलिए उसको अपग्रेड करने के लिए अपन ने गो में संविदा बनाई। इसके प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम और थी, गोकास्ट जो बनती है वो 50-1000 रुपए की मशीन से तैयार हो जाती है और प्रतिदिन जो है लगभग 2000 किलो गीले गोबर से लकड़ी बनती है जो सूख के 500 किलो रह जाती है। मेरे लिए चैलेंज ये था अगर मैं केवल गोकास्ट को प्रमोट करता तो जयपुर के अंतिम संस्कार के लिए 90 मशीनें चाहिए थी, 270 लोग चाहिए थे, बीघाओं में जमीन चाहिए थी, फिर वो गर्मियों में 5 दिन में सूखती है, सर्दियों में 8 दिन में, बारिश में उसको गोबरेला खा जाता है गोबर का कीड़ा। तो ये मेरे लिए ऐसा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को शुरू करता पहली स्टेज पे ही फेल हो जाता। तो मैंने इसको अपग्रेड करने के लिए ब्रिकेट्स कहीं बन रहे थे जो पराली के बनते भी हैं, उसको अपग्रेड करके गोबर मिला के हवन सामग्री मिला के और गो में संविदा बनाया जिसका 25,000 किलो पर डे का प्रोडक्शन है। केवल 2 मशीनें अगर लगती है तो पूरे जयपुर के अंतिम संस्कार उससे करवाए जा सकते हैं। अभी 1 मशीन लगी हुई है और इधर निकलता है इधर काम में ले लीजिए, सूखा हुआ निकलता है बिल्कुल बाइंडिंग के साथ। तो ये टोटली सक्सेसफुल प्रोडक्ट है हमारा।
0: तो आपने अच्छा चलिए मुझसे बहुत सारे हर शब्द कराए हैं, कोई ऐसा खास अनुभव या ऐसा कोई एक्सपीरियंस या मेमोरेबल कोई आपके साथ है यादगार चीज जो आपको हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: पहले मुझे भी पता नहीं था लेकिन एक बार जब मैंने एक अंतिम संस्कार करवाया तो एक वहां कोई पंडित जी थे ये गरुड़ पुराण वगैरह और ये बांसते हैं, तो उन्होंने कहा गुप्ता जी आज आपने एक जबरदस्त काम किया। मन का क्या बोलिए, जो जाने वाले है ना आपने इनको लोकऋण से बचा लिया। तो मैंने बोला भाई ये क्या होता है, उन्होंने मुझे बताया और उस चीज ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि इतना अच्छा काम अगर अपन से बंद पड़ रहा है तो ये ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने कहा जीवन में 5 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण और लोक ऋण। देव ऋण का मतलब जो देवताओं ने हमें ये अद्भुत शरीर दिया है उनका एक ऋण है तो हम अच्छे काम करके उससे मुक्ति हो लेते हैं। पितृ ऋण का मतलब जब हम संतान उत्पत्ति करते हैं तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देव जो और लोक ऋण ऐसा ऋण है जो इंसान पे जाते जाते चढ़ता है। ये जो पहले 4 ऋण है इनको तो हम जीवन में उतार देते हैं पर जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे लिए 2 पेड़ काट दिए जाते हैं सर, तो हम प्रकृति को नष्ट कर रहे होते हैं। उसका हम भुगतान एक तरीके से कर सकते हैं, या तो जीते जी 10 पेड़ लगा दें जो अमूमन हर आदमी लगा नहीं पाता। फिर लोक ऋण चढ़ने पर जब हमारी मृत्यु होती है अगर हमारा दोबारा जन्म होता है तो चूंकि हम प्रकृति को नष्ट करके गए तो हमें प्रकृति जन्य रोग होते हैं। आज जितनी बीमारियां हैं ना ये सब प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग है सब शरीर में। तो मुझे ये खुशी हुई कि अब अगर जिसका गांव में संविदा से अंतिम संस्कार होगा उसके लोक ऋण नहीं चढ़ेगा, अगर भावी बस उसका दोबारा जन्म हुआ तो कम से कम प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग उसके शरीर में नहीं होंगे।
0: बहुत बहुत बढ़िया लॉजिक है और ये इनफैक्ट

0: हाँ गुप्ता जी, तो आपको बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, विश्व रिकॉर्ड भी आपने बनाए हैं, तो कोई बताइए इसमें कोई बहुत आपके बहुत ही दिल के करीब हो उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो
1: अरे
0: बताइए।
1: अपनी हरकतें देख ली।
2: मैं सिर्फ इतना कहता हूँ सर, हर सम्मान कहते हैं ना, मान का पान भी भला, हर सम्मान मेरे लिए प्रिय है। पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो थे, इसकी भी अद्भुत कहानी कि मैंने कई बार मैं पढ़ता था पेपर में, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, इन्होंने बनाए, और ईश्वरी कृपा से पिछले एक साल में 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, अलग अलग घटनाओं इवेंट्स के माध्यम से, जिसमें नगर निगम के साथ मिलकर हमने योग और यज्ञ का कार्यक्रम किया। उसमें 11.25 घंटे का किसी गांव में संविधा से नॉन स्टॉप यज्ञ चला। और मजेदारी की बात बताएं सर, दिन भर धूप थी, खूब धूप थी, टेंट लगा के यज्ञ हुआ, गर्मी थी, शाम को जो पूर्णावति होने लगी अपने आप घटाएं गिरी और जबरदस्त वर्षा हुई, लोगों ने कहा आपका यज्ञ सफल हो गया। कहते हैं यज्ञ के अंत में अगर बारिश आ जाए तो सफल हो जाता है। उसमें 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे बने। फिर 72 फीट का एक रावण बनाया प्रताप नगर में,
3: गो
2: में पेंट उस पर किया, गो में संविधा से जला। उस दिन पूरे भारत में बारिश थी, दिल्ली का रावण गला, कोटा का रावण गला, जयपुर में आदर्श नगर का रावण गला, और हमारे प्रताप नगर का आप देखिए, मैं ईश्वरीय कृपा को उस दिन मान गया। मेरे घर से कंटिन्यू फोन आ रहे थे कि वो आपके रावण दहन हो गया क्या, आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, पर भैरव सर्किल जहां पे हमारे रावण दहन था उससे 1 किलोमीटर की परिधि में एक भी बूंद पानी नहीं था और बाकी सब जगह बारिश जबरदस्त। अगेन वहां पे ठाकुरीय कृपा

0: महसूस हो गई कि ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है और उस दिन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। फिर गाय के लिए हमने दौड़ करवाई, 25,000 लोग दौड़े भारत में पहली बार, 3 वहां मिले। फिर हमने एक भोजन वाला 0, मोदी जी ने एक निवेदन किया था जनता से 10% तेल ही कम करें अपने भोजन में से।
1: बिल्कुल,
0: मैंने खंडेलवाल समाज के साथ मिलकर बसंत पंचमी पे 3,000 लोगों के लिए 58 तरह के आइटम बनाए जिनमें तेल और घी था ही नहीं, और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको मिले। फिर एक हेल्थ का महाकुंभ कराया, 7 उसमें मिले और 6 इस बुक को मिले, ऐसे 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड। और 19 जनवरी को दैनिक भास्कर ने इंडिया के टॉप 29 नेगेटिव हीरो में सेलेक्ट किया। तो ये ठाकुर जी की कृपा है कि अपने कार्य को रिकग्निशन मिल रहा है और धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
1: भाई वाह गुप्ता जी, ये तो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, तीनों शब्द आपके लिए कहने चाहिए, क्योंकि एक साल में इतने आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। और ये रावण वाली बात तो बहुत ही जोरदार बताई है आपने, वहां बारिश नहीं हुई और आपका
0: नहीं हुई
1: उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छी तरह से कर दिया आपने।
0: क्योंकि जल जाता तो वो जल नहीं पाता, पर जल जला और कविता से उसका अंतिम संस्कार हुआ सफलतापूर्वक।
1: बहुत बढ़िया, ये बहुत जोरदार बात है। चलो संविदा मतलब फिर उसमें क्या, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, उसमें पटाखे भी फिट किए थे और ये संविदा
0: ग्रीन, वो भी ग्रीन पटाखे जो ग्रीन क्रैकर्स आते हैं आजकल,
1: ओके ओके,
0: वो वाले, क्योंकि बिना पटाखों के क्या हो जलता, तो लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। 50,000 लोगों की उस दिन उपस्थिति थी और सबने बड़ा एंजॉय किया कि ये पहली बार गांव में रावण हमने जलता देखा और उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, ये ऐतिहासिक काम हो गया, पूरे वर्ल्ड में पहली बार था जब इस तरीके का कार्यक्रम हुआ।
1: वाह भाई वाह, कमाल है कमाल। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ रुक के इसी रावण की बात पे एक गाना सुन लेते हैं और फिर करीब करीब आखिरी पायदान पे हम आ गए हैं और फिर थोड़ी सी बातचीत और

0: हाँ गुप्ता जी, थोड़ा सा अब हम आगे का विजन के बारे में बात करना चाहेंगे। अब ये जो आपका अभियान चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने में रिलीजियस लीडर्स है, मीडिया है, शिक्षण संस्थान है, इनकी भूमिका क्या हो सकती है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है?
1: बहुत बढ़िया, इसका भी मैं बता दूं, हमने एक संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया है जिसमें हम 11th 12th के बच्चे, क्योंकि यही हमारे भारत के भविष्य है आने वाले दिनों के, तो हमने उनको शामिल किया है और ये पूर्णतया निःशुल्क है। और मोटिवेट करने के लिए हमने कहा कि जो भी बच्चा, ये सब ऑनलाइन है और निःशुल्क है, ऐप है इसका, उसकी पूरी डिटेल है, उसका वीडियो भी बना हुआ है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, और उसमें हमने 1 करोड़ लोगों से अंतिम 37 के लिए संकल्प पत्र भरवा रहे हैं कि हम कोई सा एक गोगव्य काम में लेंगे और जैसे भी हो पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे। हमारे इस प्रोडक्ट की यूएसपी और है कि ये हम निःशुल्क देते हैं सर, इस लकड़ी का हम पैसा नहीं लेते सर लोगों से।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ सर, ये निःशुल्क है, क्योंकि एक मन में भाव था, आज भी हमारे गांव में यदि किसी की डेथ हो जाती तो हर घर से लोग 5-5, 7-7 कंडे और लकड़ियां ले जाते हैं, पर हम शहरी जिंदगी जीने में इतने मशगूल हो गए कि यहाँ मरने वाले की लकड़ी का भी व्यापार हो रहा है, तो मन में एक पीड़ा थी कि क्या हम इसको निःशुल्क कर सकते हैं। तो वो हुआ और हजारों लोग हमारे साथ जुड़ गए। कोई भी, इसमें भी हमारा एक सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति जो हमें 1 फिनरल का कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बदले में उतने ही एमआरपी के काउ प्रोडक्ट हम उनके घर भिजवाते हैं, हम फ्री का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते। और ये सिस्टम एवरग्रीन चले, इसके लिए अंतिम संस्कार में कार्बन क्रेडिट के लिए अप्रूव होने वाला वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट अपना बन चुका है। आने वाले दिनों में अंतिम संस्कार यहाँ होंगे और पैसा हमारे पास इंटरनेशनल लेवल से आएगा सर।
0: अच्छा, ओके,
1: मेरी भारत सरकार से अपना जी,
0: ओके ओके। तो मतलब अगर आपके क्या एक एनजीओ चला रहे हैं, जो भी संस्था आप चला रहे हैं, उसमें अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करे इस कार्य के लिए, तो वो क्या मॉनिटरली या फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है?
1: हाँ जी, वो कर सकते हैं, बट हम वो हेल्प ऐसे ही नहीं लेते, बदले में उतने ही एमआरपी के काउ प्रोडक्ट या हेल्थ सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हम।
0: और उसी से आपका काम जी, तो बहुत बढ़िया बात जी। तो आपने कोई जगह स्थान बना रखा है जहाँ ये सब मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, क्या है वो, क्या है किस जी,
1: इसके लिए हमने नगर निगम से एमओयू किया और जयपुर के 11 मोक्षधाम गोद ले लिए, हमने एमओयू करके टेक ओवर कर लिए, वहाँ पे वेयर हाउस बन चुके हैं और अब समाज हमारे साथ आने लग गए। जैसे बी2 बाईपास मोक्षधाम है, इसमें सर्व समाज आ गया है, आपके महेश नगर मोक्षधाम, उसमें खंडेलवाल समाज आ गया है, सीकर रोड पे अग्रवाल शेखावाटी समाज आ गया है, इनके साथ मिलके हमने 20-20 साल के लीज लेटर जारी करवा लिए मोक्षधामों के लिए, मतलब अगले 20 साल के लिए उस मोक्षधाम का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का काम समाजों के साथ मिलके हमने ले लिया। हम भी जानते हैं जब समाज हमारे साथ किसी काम में जुड़ गए तो फिर वो सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता फिर। बाकी मेरी भारत सरकार से टाई अप हो गया है और हमने एक ऐसी चिमनी डेवलप कर दी, आधी तो ये लकड़ी खत्म कर देती, पॉल्यूशन भी नेट जीरो पे कैसे लाएंगे, अगर आप मुझे मौका दे तो एक मिनट में एलाबोरेट करूं
0: जी।
1: अभी 500 से 600 किलो लकड़ी लगती है सर अंतिम संस्कार में, तो आधा तो हमने किया, मेरी जो गोमय समिता है हमारी वो केवल 300 किलो ही लगती है, यानी आधा पोल्यूशन तो हमने यहाँ खत्म कर दिया। फिर इस लकड़ी का हमने NABL भारत सरकार की लैब में टेस्ट करवाया तो 30% पोल्यूशन कम होता है, यानी 50 का 30-15%, पर 35% अभी भी हवा में जा रहा था। अब मेरे लिए चैलेंज ये, अगर पूरा ही कार्बन रोक दिया तो पेड़ पौधों का भोजन खत्म हो जाएगा और जाने दिया तो हमारे और हमारे बच्चों की सांसों में जाएगा, तो इसके लिए 3 साल पहले मेरी भारत सरकार से हमने अप्रोच किया, उनको पूरा प्रोजेक्ट समझाया और एक चिमनी डिजाइन की, उस बचे हुए धुआं को वो चिमनी अपने अंदर सक करती है, पानी में वाटर स्क्रबर लगाए, वो सारा कार्बन और गैसें उस पानी में आ जाती है, अब जो धुआं निकल रहा है वो टोटली पॉल्यूशन फ्री है और वो पानी कार्बन का पानी बन गया जो पेड़ पौधों में खाद के काम आएगा।
0: बहुत बढ़िया, आपने तो बड़ा साइंटिफिकली इसको स्टडी भी किया है और उसका सॉल्यूशन भी निकाला है। कई सब लोग समस्याएं तो ढूंढ लेते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं निकालते, लेकिन आप उसकी हर चीज पे जा रहे हैं कि मतलब मिनिमम जीरो पोल्यूशन हो, बिल्कुल आपका ये उद्देश्य है। बहुत बहुत सुंदर।
1: एक फील्ड ऐसा हो जिसमें हम नेट जीरो पे, मोदी जी ने जो वहां पे 112 देशों का जब हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हम भारत को नेट जीरो पे लाना चाहते हैं कार्बन उत्सर्जन में, तो हमने कहा जी एक फील्ड हम भी पकड़ ले जहाँ पे अकेले मोदी जी तो कर नहीं पाएंगे तो जनता को भी साथ आना पड़ेगा, तो किस फील्ड में हम कर सकते हैं, वो फील्ड मैंने चुना और उस फील्ड में अपना एक प्रयास दे रहे हैं, बाकी ठाकुर जी की कृपा आगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बस सिंपल मेरे को एक लाइन में कोई एक संदेश दे दीजिए श्रोताओं के लिए, जिससे हम आज की इस बातचीत को या इसका कंक्लूड कर सके।
1: जी, ईश्वर ने अगर हमें मानव जीवन में भेजा है तो जीवन में कुछ ऐसा कर जाए, कोई भी हो, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ऐसा काम कर जाए कि हम रहे या नहीं रहे हमारा होना सार्थक हो जाए।
0: तो डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी, आज की इस अत्यंत एक्साइटिंग और थॉट प्रोवोकिंग और प्रेरणादायी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे से बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, नई बातचीत है, लेकिन जब तक मीडिया में बातचीत नहीं होगी तब तक ये विचार आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही
1: सर, आपका भी धन्यवाद।

0: कि आपने अपने पोर्टल पर मुझे ये मौका दिया, तो मैं भी बहुत बहुत आपका आभारी हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आपके माध्यम से जितने लोगों तक ये बात पहुंच पाएगी तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, तो आप भी उसके सहभागी है इस बनने के।
1: एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी आगामी प्रयासों के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने इस कार्यक्रम को मिस कर दिया हो तो आप इसे प्लेटफॉर्म स्टेशन पर दोबारा सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा रीब्रॉडकास्ट भी होता है, तो आप इसको मिस मत करें, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मिस कर जाए तो इसको दोबारा भी सुनते हैं। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी शख्सियत के साथ में। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

आइए दोस्तों, थोड़ा सा जोश से भर जाते हैं, थोड़ा उत्साहित होते हैं। पूरी जिंदगी हमारी उसी पर निर्भर करेगी दोस्तों। दोस्तों, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली हेल्दी रहने के लिए इसलिए थी क्योंकि वो प्रकृति के पास थे, नेचर के नजदीक थे। सुबह सुबह का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में भजन पूजन करते थे। वे मुर्गे की बांग के साथ उठते थे और चांद निकलने पर तुरंत सो जाते थे। वो अपने शरीर को प्रकृति के साथ चलाते थे। आज प्रकृति का मनुष्य से संपर्क तो टूट ही चुका है। रात को देर तक जागने से, सुबह देर से उठने से स्फूर्ति का अभाव तो होता ही है और आलस भरा रहता है। नए अनुभवों से सामंजस्य बैठाने के लिए पॉजिटिव आत्म छवि यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके एक्शन बदल जाते हैं, जिससे आपकी उपलब्धियां बदल जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने, सम्मान पाने और अच्छे परिणामों से सकारात्मक बदलाव लाने की चाबी अच्छी आत्म छवि बनाए रखने में है। अपने बारे में अच्छा सोचिए दोस्तों। अपनी बातों पर अड़े रहने का रवैया आपकी तरक्की की राह में बाधा बन जाएगा दोस्तों। फ्लेक्सिबल होना सीखिए, लचीला बनना सीखिए। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस समय हटाना ही पड़ेगा जब कोई ये साबित कर रहा हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार उनके पास है। जरा सुन तो लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठहराव से बचना है तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप गलत हो सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यही है कि वो नए के लिए तैयार रहे।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

ये करीब 90 साल पुरानी बात है। एक बनारसी बंगाली किशोर बड़े ही शौक से कलकत्ता पहुंचा। देश की राजधानी रह चुका हुआ यह शहर तब दिसंबर की गुलाबी ठंड से सराबोर था। कलकत्ते से समुद्र ज्यादा दूर नहीं है, पर वो उस हुगली नदी की गोद में बसा हुआ है जिसमें गंगा का जल बहता है। बड़ी खूबसूरत बात है कि बंगाल में आते ही गंगा जी ज्यादा कलाकार हो जाती हैं, अपना नाम बदलकर पद्मा और हुगली रख लेती हैं। बहरहाल वो जमाना था जब कलकत्ते में खड़े होकर बनारस के रंग को महसूस किया जा सकता था। वो किशोर भी बस उसी रंग में डूबा हुआ था। कहीं से सितार, कहीं से शहनाई, तो कहीं से मृदंग की गूंज उठती थी। वहां विशाल संगीत समारोह चल रहा था। देश भर के आला संगीतज्ञ वहां थे, एक से बढ़कर एक सजीले, खूब चमकदार रंगीन पोशाकें और उन पर शोभित खूब सारे पदक मेडल्स, उस पर से भी भारी भरकम गहनों के क्या कहने, मानो किसी राजा की बारात जा रही हो जिसमें खूब सारे राजा राजकुमार आए हों, पूरा जौहर जलवा दिखाने। पर सजीलों की भीड़ में एक बहुत ही सादे और साधारण से व्यक्ति भी विराजमान थे। बस उन्हीं पर किशोर की नजर ठहर गई। वो किशोर 4 साल से नर्तकों की दुनिया का वासी था। 10 साल की ही उम्र में यूरोप घूम रहा था। एक से बढ़कर एक कलाकार सामने आए थे उसके, पर अभी नजर बार बार ऐसे सज्जन पर ठहर जाती थी जो कतई प्रभावशाली नहीं दिख रहे थे। किशोर ने शायद अपने बड़े भाई उदय शंकर से पूछा तो पता चला कि ये साधारण से दिख रहे संगीतज्ञ का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खान है। कई तरह के साज बजाते हैं, किसी संत की तरह रहते हैं। वाकई वो किसी दीपक की तरह लग रहे थे जिनकी संगीतमय आभा कानों में घुल रही थी, दिल में उतर रही थी और नसों में पसर कर रोम रोम को हर्षित कर रही थी। जब शारदा मां की पावन भूमि मैहर से आए उस्ताद का संगीत सामने आया, तब चारों तरफ फैले सजीले लोग अपना अर्थ खो बैठे। मन बोल उठा कि ऐसे उस्ताद से जरूर कुछ सीखना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात रही कि उदय शंकर की गुहार पर उस्ताद नृत्य मंडली के साथ यूरोप जाने को तैयार हो गए। अब तो उस किशोर को उस्ताद के साथ सुबह शाम रहने का मौका मिल गया। कभी कभी किशोर के मन में होता था कि वो अलाउद्दीन खान साहब को विधिवत उस्ताद बना ले, तो कभी किशोर का मन कच्चापन से हावी हो जाता था। तब उस्ताद ने कहा, तुम पहले तय कर लो कि करना क्या है, सीखना क्या है, कहीं एक जगह मन लगा लो तो चले आना मेहर और सीखना। खैर एक दिन आया जब शिष्य ने फैसला कर लिया। बड़े भाई की ग्लैमरस नृत्य मंडली को अलविदा कहा और बहुत साधारण लिबास में मैहर पहुंचकर उस्ताद के चरणों में समर्पित हो गए। उस्ताद बहुत पक्के थे। उन्होंने ना सीखने में समझौता किया था और ना ही सिखाने में। उस्ताद ने अपनी बेटी अन्नपूर्णा देवी और बेटे अली अकबर खान के समान ही मानकर अपने उस शिष्य को पारंगत किया। पूरे मनोयोग से सीखने सिखाने का दौर चल पड़ा। राग भैरव से भोर होती थी, भीम पलासी से दोपहरी तपती थी, यमन से शाम और मल्लार से रात चढ़ती थी। उस्ताद के आंगन में रोज 18 घंटे संगीत लहरियां उठती थीं। वो संगीत के मैहर घराने का स्वर्णिम काल था। अकबर सरोद सीखते थे, अन्नपूर्णा सुरबहार, और उस युवा को सितार के तार पर उंगलियां साधने में लगभग 7 साल लग गए। तब दुनिया को पंडित रवि शंकर के रूप में
एक विरल संगीतज्ञ मिला। ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से न्यूयॉर्क लंदन तक पंडित रविशंकर के नाम का सिक्का चलता था। संगीत के जादू से सम्मान की बारिश तो होती ही थी। 7 अप्रैल को दुनिया में आने वाले रविशंकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो अपने उस्ताद को किसी ईश्वर की तरह मानते थे और हमेशा तमन्ना रहती थी कि उस्ताद कुछ और सिखा दें। देश की अद्भुत हस्ती उस्ताद ने भी रविशंकर को सब कुछ दिया। अपनी बेटी अन्नपूर्णा का हाथ देकर दामाद भी बनाया। वो संसार के व्यस्ततम संगीतज्ञों में शुमार रखते थे। आज यहां तो कल वहां। उस्ताद ने एक बार उन्हें डांटा भी, तुम तितली की तरह हो, एक साथ बहुत सारी चीजें करते हो। समय बदला पर एक साथ कई काम की ललक छूटी नहीं। फिल्मों के लिए भी खूब काम किया। राज्यसभा में मनोनीत हुए, भारत रत्न से नवाजे गए। वो कहते थे, जब मैं कोई राग बजाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया को बंद कर देता हूं और फिर अपने भीतर गहराई तक उतरने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों, ऐसी कोशिश का ही तो कमाल है कि उनका संगीत अमर है।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
0: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, हाँ, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
2: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।

संत मेहजी के प्रकांड पांडित्य और विरक्त स्वभाव की ख्याति पूरे जापान में फैली हुई थी। अक्सर जिज्ञासु उनके पास आते थे और अपनी शंकाओं का समाधान लेकर संतुष्ट होकर लौट जाते थे। एक दिन जापान के राज्यपाल कियाजारी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने निजी सचिव को अपना परिचय पत्र यानी कि विजिटिंग कार्ड दिया और संत जी के कमरे में भेजा। संत जी ने विजिटिंग कार्ड पढ़ा, उसमें उनके राज्यपाल होने की चर्चा थी। संत जी ने सचिव से कहा, सुनिए भैया, उनसे कहिएगा कि मैं राजकाज की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता, क्योंकि मुझे दरअसल राजनीति की बातें आती ही नहीं है। मैं तो केवल धर्म और साहित्य की चर्चा कर सकता हूं। निजी सचिव ने बाहर लौटकर राज्यपाल को संत जी के सारे बातों के बारे में बताया। राज्यपाल जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कागज पर सिर्फ अपना नाम लिखकर भेज दिया। संत जी ने उन्हें बुलवा लिया। घंटों तक बैठकर उनके साथ धर्म की और ईश्वर के संबंध में चर्चा आई करते रहे। जब राज्यपाल लौटने लगे तो संत मेहजी ने कहा, देखिए महाराज, धर्म का सार सेवा, परोपकार, न्याय और करुणा जैसी चीजें होती हैं। ये सभी गुण मानव को अमर बनाते हैं, उसे शांति देते हैं। आप व्यावसायिक तौर पर क्या करते हैं, ये आप नहीं हैं, तो इसे हर जगह पर दिखलाते मत घूमा करिए। दोस्तों, समझने वाली बात है, जब कोई हमसे पूछता है कि आप कौन हो, तो हम बताते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, हम टीचर हैं, हम मजदूर हैं, हम ठेकेदार हैं, हम आर्किटेक्ट हैं और जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें वो काम हैं जो आप करते हैं? मरीजों को ठीक करना डॉक्टर का काम है, तो आप डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। कोई ब्रिज बनाना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई नई चीज को बनाना इंजीनियर का काम है और आप इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से और चीजें, पर दोस्तों, आप दरअसल हैं कौन? आराम से विचार करिएगा। हमारे पद, हमारे काम, क्या यही बस हमारी पहचान है? इन काम और पदों के पीछे भला हम हैं कौन? एक बार पूछ के देखिएगा किसी से।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़े ही मिल जाएगा किसी को। तू पिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। जर्मनी के क्लॉस्टल शहर में उस बच्चे ने होश संभाला, तब अपने परिवार को खूब लंबा चौड़ा पाया। उसके दो तो बड़े भाई थे और उससे छोटे 10 भाई बहन, मतलब पूरे 11 भाई और 2 बहनें। छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के बड़े होने का इंतजार रहता था ताकि बड़ों के कपड़े उन्हें मिल जाएं। हफ्ते में 2 दिन अच्छा खाना मिलता था, बाकी दिन सूखी ब्रेड। शक्कर का तो स्वाद बच्चों ने चखा ही नहीं था। पिता खदान में काम करके बस जरूरी धन कमा पाते थे। देर रात जब पिता सुस्ताते थे तब दूर देश की कहानियां सुनाते थे, तो वो बच्चा भी दुनिया घूमने की तमन्ना से भर जाता था। धन की सीमा होती है पर मन की तो नहीं ना, मन तो बार बार सरहदें लांग जाता है। सरहद पार की खबरें अखबारों में ही आती हैं, तो वो बच्चा आसपास आने वाले अखबारों में झांकने लगा। अखबार पढ़ने वालों से सुनता रहता था और पढ़े हुए अखबार को बार बार पलट पलट कर देखता था। एक एक अक्षर में झांकते हुए वो बच्चा अखबार पढ़ना सीख गया। एक दिन मां बाप दोनों दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए कि उनका महज 5 साल का बच्चा अखबार पढ़ रहा है, ये तो चमत्कार है। अक्षर तोतली आवाज में साकार होने लगे, जबकि बच्चा स्कूल भी नहीं गया था। खुशनसीब मां बाप ने मन ही मन इस बच्चे पर खास ध्यान देने का फैसला कर लिया। उसके बाकी भाई बहन खूब खेलते थे, लेकिन वो जीव जंतु फूल पत्ती में ही लगा रहता। एक दिन वो पिता के टूटे हुए संदूक के सामान को देख रहा था, उसमें उसे एक पुराना पॉकेट लेंस दिखाई दिया। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में खरोंच के निशान थे, पर बालक ने उसे उठा लिया और पिता के पास पहुंचा। पापा ये मुझे दे दीजिए ना, मैं अपने जंतुओं को इसकी मदद से देखूंगा। पिता फिर चौंक उठे और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानते थे कि उनका पुत्र प्रकृति के प्रति अथाह जिज्ञासा से भरा है, तो इसे रोकना ठीक नहीं होगा। उन्होंने खुशी के साथ कहा, लेंस ले लो बेटा और सदुपयोग करो इसका। फिर क्या था, वो बच्चा घंटों जीव जंतुओं को निहारा करता और उसे अलग ही संसार नजर आने लगा। प्रकृति प्रेम ही उसे चिकित्सा शास्त्र की ओर ले गई, और इसमें एक खास पहलू ये भी था कि डॉक्टर बनने से तब दुनिया के घूमने की संभावनाएं बढ़ सकती थी। उम्र कुछ बढ़ी तो दोनों बड़े भाई कमाने के लिए अमेरिका चले गए, पर उसे मां ने जाने नहीं दिया। मां की इच्छा थी कि कम से कम एक संतान पढ़कर नाम रोशन तो करे। किसी तरह परिवार ने हिम्मत दिखाई और उसे स्कूल पास युवा को गोटिंगेन शहर उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। तब पिता तो पुत्र की तेजी देखकर सकुचा जाते थे कि अगर रुचि दिखाएंगे तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। समझदार युवा ने सोच लिया कि आगे का रास्ता उसे खुद तय करना है। विश्वविद्यालय में उसने एक शोध पत्र लिखा, जिसमें सबसे ऊपर उसने लिखा, कभी बेकार मत बैठिए, कभी निष्क्रिय मत रहिए। वाकई दुनिया जो देख रही है वो दुनिया जिसे केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है, दोनों में कुछ भी निष्क्रिय है ही नहीं। ये शोध पत्र इतना कामयाब हुआ कि उन्हें पूरे $60 पुरस्कार में मिले, संग्रहालय में नौकरी भी मिली और लोग उस विद्यार्थी को रॉबर्ट कोच के नाम से जानने लगे। रॉबर्ट कोच ने पिता को फिर अचंभित कर दिया। अपने मजाकिया लहजे में पिता को पत्र लिखा, कभी कभी ऐसा हो जाता है पापा, अंधी मुर्गी को भी मक्के का दाना मिल जाता है। समझिए मेरे साथ ऐसा ही हो गया।
अब जैसे जैसे परीक्षण की सुविधाएं बढ़ती गई, रॉबर्ट कोच विशेष रूप से खतरनाक बैक्टीरिया के चक्रव्यूहों को भेदते चले गए। सबसे पहले उन्होंने जानलेवा बीमारी एंथ्रेक्स के बीजाणुओं को खोज निकाला। चकित रोग वैज्ञानिक जूलियस कोहन हेम ने तब खुशी से भरकर कहा, ये तो बहुत बड़ी खोज है और ये युवा रॉबर्ट कोच अपने परीक्षण प्रतिभा में हमसे बहुत आगे निकल गया है। ऐसा ही हुआ। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया का पीछा करते करते दुनिया को 24 मार्च 1882 को बताया कि जानलेवा बीमारी तपेदिक का रोगाणु कैसे काम करता है, और रातों रात वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रोगाणुओं की विशाल बस्तियों में खोजते खोजते रॉबर्ट कोच ही थे जिन्होंने एक दिन बताया कि हैजा कैसे होता है। उनकी खोजों में अनेक प्रकार की दवाइयों के लिए रास्ता आसान बना दिया गया। कभी खूब अभाव देखने वाले इस इंसान ने खूब पैसे कमाए, लेकिन अहंकार छू ना पाया उन्हें। वो कहते थे, मैं तो टहल रहा था, सोना राह के किनारे पड़ा था, संजोग से मुझे दिख गया बस। बेशक नोबेल प्राइज से सम्मानित इस वैज्ञानिक को दुनिया भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

होता है जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है तुम एक हसीन हो लाख में।

भी तो इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल

0: किसी से होता है, दो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भल पाक तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल
1: दो। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें

या फिल्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: हम अकेले
1: चलें साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: चार पतंगे चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि देवरन साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकार हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुड़ी तमिलनाडु में हुआ था। उनका जन्म एक तमिलियन परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम हेमा मालिनी आर चक्रवर्ती है। आइए सुनते हैं हेमा मालिनी जी की फिल्म का ये गीत।

हेमा मालिनी जी की शादी बॉलीवुड के मैचो मैन अभिनेता धर्मेंद्र से हुई है। उनकी दो बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल।

हेमा मालिनी जी ने चेन्नई के आंध्र महिला सभा से अपनी पढ़ाई पूरी की। रुपहले पर्दे पर हेमा ने पहली बार एक डांसर के रूप में एंट्री ली। एक तेलुगु फिल्म में हेमा ने एक डांस में पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी झलक दिखाई, लेकिन साउथ इंडिया फिल्म निर्माताओं को वो इम्प्रेस नहीं कर पाई। इस तरह 4 साल के संघर्ष के बाद हेमा साउथ इंडिया फिल्मों में हिट नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

लगभग 4 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में की, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें वो दिन भी देखना पड़ा जब एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें यहां तक कह दिया कि उनमें स्टार अपील है ही नहीं। चलिए दोस्तों, उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

हेमा ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तब एक तमिल निर्देशक श्रीधर ने उन्हें अपनी फिल्म में काम देने से मना कर दिया और कहा कि आप में स्टार अपील है ही नहीं। बाद में 70 के दशक में इसी निर्माता निर्देशक ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें लेकर 1973 में गहरी चाल नाम की फिल्म बनाई। आइए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

हिमा की खूबसूरती और डांस टैलेंट ने हिंदी फिल्मों के शोमैन राज कपूर को प्रभावित किया। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म सपनों का सौदागर में एंट्री दी। सपनों का सौदागर की नायिका के रूप में हिंदी फिल्मों को उसकी ड्रीम गर्ल की पहली झलक मिली। आइए दोस्तों सुने उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया इसी नाम का ये गीत।

धीरे धीरे हेमा का अट्रैक्शन बढ़ता गया और हिंदी फिल्म दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलने लगा। उनका नाम शीर्ष अभिनेत्री की सूचियों में सबसे ऊपर आ गया। लगभग 30 साल तक हेमा मालिनी के अभिनय और आकर्षण का जादू सभी बाकी अभिनेत्रियों पर हावी रहा। आइए सुने उनकी फिल्म का गीत।

हेमा जी ने लगभग 150 फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सीता और गीता, प्रेम नगर, अमीर गरीब, शोले, महबूबा, चरस, ड्रीम गर्ल, किनारा वगैरह वगैरह। पेश है उनकी फिल्म का एक खूबसूरत गीत।

हेमा मालिनी 1999 में राजनीति में उतर गईं, जब उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। वो अब भी राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी फिल्म का एक और

0: दोस्तों, हिमा को वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि भी दी। पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।
1: हंसो मत, बोलो

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ इतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ा जब से, एक बाजू उखड़ा जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में, आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। नमस्कार आदाब, 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय और लेकर आई हूँ आपका मनपसंद प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक, जहाँ

गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। नवाए मीर सुनाओ, बड़ी उदास है रात। दोस्तों, रात का सन्नाटा जब गहरा होता है, दिल के छुपे हुए जख्म और पुरानी यादें एक खामोश सैलाब की तरह उमड़ पड़ती हैं। उर्दू अदब के होनहार चमकते सितारे फिराक गौरखपुरी साहब ने इस कलाम में दिल की उसी उदासी को साजों का सहारा दिया है। वो कहते हैं, उदास रात को काटने के लिए संगीत का सहारा लो। और नवाए मीर यानी मीर तकी मीर के उन दर्द भरे शेरों को दोहराओ जो सदियों से आशिकों के टूटे दिलों का मरहम कर रहे हैं। इस नायाब कलाम को साल 1990 के मशहूर सीरियल कहकशां के लिए जब जगजीत जी ने अपने तिलस्मी सुरों से नवाजा तो ये हर तन्हा दिल की इबादत बन गई। गजल का मिसरा मुलाहिज़ा फरमाएं, मकां की बंदिशें टूटी, जमी के साए उड़े। हवा का रुख तो देखो, बड़ी उदास है रात। फिर शायर कहता है, कसक है दिल में, धड़कन में एक बेकरारी है। कसक है दिल में, धड़कन में एक बेकरारी है। कोई सुबकी तो छुपाओ, बड़ी उदास है रात। तो आइए इस दूसरे पायदान पर सुनते हैं जगजीत सिंह जी की पुरसोज आवाज में ये गजल। गजल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। नवाए मीर सुनाओ, बड़ी उदास है रात। आपकी नजर।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जनाना हो गए। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हसीन मोड़ आता है जब कोई अजनबी हमारी ज़िंदगी के दायरे में चुपके से कदम रखता है और धीरे धीरे हमारे वजूद का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। तस्लीम फाजली साहब ने इस कलाम में मोहब्बत की इसी मुकम्मल सुपुर्दगी और रफ्तार को लिखा है। वो कहते हैं कि जो शख्स कल तक महज एक अजनबी था, वो रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे मेरी हस्ती का सामा हो गया। पहले वो मेरी जान बना, फिर जाने जा और आखिर में मेरी रूह का मालिक बन गया। दोस्तों, की है क्या ऐसी पारसा मोहब्बत किसी से आपने? बुनियादी तौर पर उस्ताद मेहदी हसन साहब की आवाज़ में मशहूर हुए इस तारीखी दर्द को आज हम एक बिल्कुल नए और नायाब अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस कलाम को अपनी खूबसूरत आवाज़ का पैरहन दिया है सरहद पार के ही संजीदा गुलकार मोहम्मद अली साहब ने, जिनकी भारी पुरसर और ठहरी हुई आवाज़ में जो एक मखमली सुकून है, वो इस सदाबहार कलाम के साथ मिलकर जहन पर एक नया सुरूर तारी कर देता है। गज़ल का मिसरा तो सुने जरा। बकौल शायर, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुले बादामा हो गए। रानाइयाँ यानी हुस्न की खूबसूरती, गुल बेदामा यानी फूलों के आगोश में सिमट जाना। शायर की ज़ुबानी समझें तो वक्त गुजरने के साथ साथ महबूब के हुस्न और उसकी सादगी की कशिश इस कदर बढ़ती गई कि वो खिलते हुए फूल से बढ़कर बहार का मुकम्मल मंजर बन गया। और जब ये दीवानगी आखिरी हदों को छूती है तो मोहम्मद अली साहब का ये मिसरा सीधे कलेजे के पार उतर जाता है। सुनिए, सोजे गम को खा लिया, सोजे गम को खा लिया बेचैनियों की रात ने, पहले दर्द फिर दर्दे दिल फिर दर्दे पन्हा हो गए। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस बेहद नफीस पड़ाव पर सुनते हैं मोहम्मद अली साहब की आवाज़ में ये मशहूर शाहकार, रफ्ता रफ्ता वो मेरी जिंदगी का सामा हो गए। पहले जाने जा फिर जाने जनाना हो गए। शौक फरमाई।

ना डर मौत से इतना कि मौत डर से आ जाए। जिंदगी बस में कहाँ तेरे, मौत अगर से आ जाए। जिंदगी एक शराब तो, आदमी बेताब तो, भागता है तेरे पीछे, मिलती जिसका नसीब तो, ना जिंदगी के करीब तो। फिर शायर कहता है कि जिंदगी एक नशा है तो, आदमी एक शीशा है तो, जिंदगी एक नशा है तो, आदमी एक शीशा है तो, तकदीर के सागर में भरा जहर अमृत या शराब तो, ना जिंदगी के करीब तो, ना मौत के करीब तो, आदमी कहे आदमी से आदमी अजीब तू। दोस्तों, आपके लिए इस महफिल का सबसे हटकर नगीना है ये गज़ल, जो कि आप यकीन नहीं करेंगे कि किसने गाई। क्या आपको अभी जो मैंने मिसरे सुनाए कुछ याद आया? चलो, नहीं आया तो मैं बताती हूँ। इस नायाब और गहरे खसूसी कलाम को गाया है हमारे बहुत प्यारे गुलकार सुरेश वाडेकर साहब ने। ये गज़ल उनकी निजी एल्बम कुछ और नहीं से ली गई है। इसको लिखा है उदय पौडकर ने और मौसीकी से संवारा है पुंडलिक कोल्हटकर ने और श्याम शीर सागर जी ने। तो आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ में ये बेहद बेहतरीन गज़ल। ना जिंदगी के करीब तू, ना मौत के करीब तू, आदमी कहे आदमी से आदमी अजीब तू। आपकी नज़र।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश बूझिए तो किस आवाज़ में इस महफिल में अपने रंग बिखेरेगी। ये हमारे किशोर दा की आवाज़ में वो नगमा है जो अनरिलीज्ड वर्जन है। इसको लिखा है योगेश जी ने। दोस्तों, ये किशोर दा का बहुत ही सुंदर अनरिलीज्ड शाहकार है जो आमतौर पर महफिल गज़ल में सुनाई नहीं देता। किशोर दा की आवाज़ का वो मखमली धीमापन और उनके लहजे की सादगी इन सीधे सादे अल्फाज के साथ मिलकर जहन पर एक नया सुकून तारी कर देती है। इसका मिसरा नोश फरमाए। प्यार है वो रंगों का बादल जीवन पर जो छाए, प्यार है रंगों का बादल जीवन पर जो छाए, मन चाहे तो बरसे वरना बिन बरसे उड़ जाए। कभी ये मन की प्यास बुझाए, कभी ये आग लगाए, रेत में ये मोती सा चमके शबनम सा हो जाए। प्यार अजनबी है जाने कहाँ से आए, कितना गहरा कितना सादा कितना सच्चा एहसास प्यार का। आइए किशोर दा की जादू भरी आवाज़ में सुनते हैं ये नगमा। प्यार अजनबी है जाने कहाँ से आए, जाने कहाँ से आए, कब जीवन में फूल खिलाए कब आंसू दे जाए। प्यार अजनबी है आपकी नज़र।

दोस्तों, अब हमारी आज की इस महफिल का ये आखिरी कलाम है। ये नगमा रूह की उस बेबसी को बयां करता है जहां दो चाहने वाले ज़माने की बंदिशों के आगे घुटने टेक देते हैं। बाबू सिंह मान ने इस कलाम में उस कड़वे सच को लिखा है कि कभी कभी मोहब्बत करना जितना आसान है, उसे निभा पाना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल या दर्दनाक साबित होता है। इंसान इसी कश्मकश में पूरी तरह से टूट जाता है कि वो अपने जज्बातों की सुने या इस दुनिया के दस्तूर को माने। और जब इस खामोश तबाही को सुरों का लिबास देने की बात आई तो उभर कर आए एक ऐसे बाकमाल और मुनफरिद गुलकार सुखविंदर सिंह साहब। सुखविंदर जी की गायकी की ये खासियत रही है कि उनकी बुलंद पुरअसर और सूफियाना आवाज़ में जो एक रूहानी टीस छुपी होती है, वो आदेश श्रीवास्तव साहब की इस नाजुक धुन में के साथ मिलकर जहन पर एक अजब सा सुकून तारी कर देती है। उनका वो साफ पंजाबी और उर्दू का मिला जुला लहजा सीधे सुनने वालों के दिल के हार पार हो जाता है। इस कलाम का अंदाजे बयां सुनिए। बकौल शायर, लाई वी ना गई ते निभाई वी ना गई, लाई वी ना गई ते निभाई वी ना गई, मैंने मारदा मैनू जग सारा, तेरी मेरी इंज टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। दोस्तों, सीधा साधा मतलब है, मोहब्बत की भी ना गई, मोहब्बत की भी ना गई और निभाई भी ना गई, ताने मारता है अब मुझे जग सारा, तेरी मेरी इस तरह से टूट गई सोनिए, जैसे टूटे कोई अंबर से तारा। दोस्तों, है तो ये पंजाबी कलाम, लेकिन मोहब्बत की जुबां इतनी भी कठिन नहीं।

नहीं होती कि दिल तक पहुंच भी ना पाए। शायर फिर कहता है, हो सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जावेंगी, मैंने सोचा नहीं था कि तू मेरा प्यार भूल जाएगी। इन्ने कीते हुए तू करार भूल जाएंगी, इतने मेरे साथ करार किए हुए भूल जाएगी, करार भूल जाएगी। फिर कहते, दिल टूटिया ना जुड़े दोबारा। अब इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है समझना कि टूटा हुआ दिल तो जुड़े ना दोबारा। तेरी मेरी इंज टूट गई सोनी है, तेरी मेरी ऐसे टूट गई सोनी है, जिवें टूटिया अंबर तो तारा, जैसे टूट गया अंबर से तारा। आपकी नज़र प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी

दोस्तों, सुरों, साजों और अनोखे एहसासों की जिस सरजमी पर आज हम सब सफ़र कर रहे थे, अब वहाँ इस महफिल को समेटने का वक्त आ पहुँचा है। मन्नाडे साहब के उस टूटे हुए तसव्वुर से शुरू हुआ अल्फाज का ये कारवां, जगजीत जी के उस उदास रात के सन्नाटे, मोहम्मद अली साहब की रफ्तार रफ्तार बढ़ती हुई मोहब्बत और सुरेश वाडेकर की वो दार्शनिक पहेली, किशोरदा के उस अजनबी अछूते रंग और आखिर में सुखविंदर सिंह साहब की इस बुलंद सुफियाना पेशकश तक आते आते हमारे जहन को एक नया फलसफा सौंप गया। हकीकत ये है कि रेडियो बंद होने पर भी इन अजीम फनकारों की आवाज़ें आपकी तन्हाई का हमसाया बनकर आपके साथ रहेंगी। सो उसी असर को अपने दिलों में महफूज रखते हुए अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। तो मुझे, यानी आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय को अब इस मोड़ पर इजाज़त दीजिए। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा SN रेडियोज़ और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। अपनी सेहत का, अपने चाहने वालों का, अपनी सोच का खूब ख्याल रखिएगा। आप सभी हसीन कदरदानों को मेरी तरफ से एक बेहद हसीन और पुरसकून शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम पर। झाबुआ की कुल वर्षा 55.9 मिलीमीटर। अगर हम बात करें झाबुआ के तापमान की तो झाबुआ का तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस से 34.2 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: दोस्तों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और आज हम फिर से हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली भी गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फसल बीमा योजना किस तरीके से हम करवा सकते हैं और फसल बीमा योजना से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको एक्सपर्ट से और जानते हैं किस तरीके से हम कैसे हम फसल योजना का लाभ उठा सकते हैं।
1: विभास कुमार जी, जो कि महाप्रबंधक है CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर PC सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं सहायक आयुक्त फसल बीमा कृषि मंत्रालय से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णवीर चौधरी जी हैं अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज से, कृष्णवीर जी आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो आप

0: किसानों का पक्ष यहाँ पर रखेंगे और साथ ही हमारे साथ सुधाकर जी हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी काम करती है और सुनील जी बताएंगे कि कैसे सरकार इस योजना को किसानों तक पहुंचा रही है, कैसे इसे और व्यवहारिक बनाया जा रहा है, किसान कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमारे साथ विभास जी हैं जो कि बताएंगे कि अगर किसान को किसी तरह की समस्या आती है, अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा है तो ऐसे में कैसे वो उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं और उनके लिए राह और आसान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
0: तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको मोटे तौर पर बताया कि किस तरीके से ये योजना काम कर रही है, समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए ताकि किसानों के लिए और आसानी हो सके और जो उनकी तरफ से सुझाव दिए गए हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपसे समझना चाहूंगी कि जो फसल बीमा वीक हम मना रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, इसका मकसद क्या है?
2: देखिए, ये फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की गई है और इसमें बहुत सारे विभाग, बहुत सारे कर्मचारी, एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चूंकि इनरोलमेंट शुरू होता है, जनरली जो खरीफ का इनरोलमेंट है वो 1 जुलाई पर व्यवहारिक रूप से पिक पर रहता है या वहां से स्टार्ट हो जाता है और जो कट ऑफ डेट है वो बहुत सारे राज्यों में 15 जुलाई है और बहुत सारे राज्यों में जो है 31 जुलाई है। तो इसमें ये किया गया था, इसका जो बनाने का स्वरूप था कि सभी स्टेक होल्डर्स को हम लोग एक जगह जमा करें, सभी को सेंसिटाइज करें और फार्मर्स के इनरोलमेंट के प्रति उनको दायित्व फिक्स करें कि आप जो है इनको समझाएं और जो भी उनकी जो मशीनरी है उसको पूरी की पूरी एक सप्ताह में हम एक्टिवेट कर दें कि वो फसल बीमा इजी वे में हर एक जगह, हर एक गांव में, हर एक जगह वो पहुंच जाए ताकि किसानों को किसी तरह का दिक्कत ना हो। इसका एक और पर्पस है कि चूंकि हम पहले योजना के बारे में बता देना चाहते हैं तो और जो समय मिलता है किसान भाइयों बहनों को वो उसमें निर्णय ले पाएंगे और उसमें अच्छे से पूरे कागजात वगैरह जमा करके वो बीमा अपनी करा सकते हैं। तो ये सारे चीजें हैं कि पूरी स्टेक होल्डर्स को उसमें एक्टिवेट करना होता है।
0: मैं सुधाकर जी से जानना चाहूंगी, सर ये बताएं कि देखिए अभी हम फसल बीमा वीक मना रहे हैं लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो किसानों के मन में ये होता है कि कुछ नया किया गया होगा, कुछ चीजें बेहतर की गई होंगी, कुछ चीजें उनकी सहूलियत के अनुसार इसमें शामिल की गई होंगी। तो इस बार इस वीक में किसानों को क्या नया बताने वाले हैं, क्या नया उन्हें, क्या कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है?
3: जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि ये फसल बीमा सप्ताह हम ये तीसरी बार हम करने जा रहे हैं, पिछला खरीफ हुआ, फिर रबी हुआ, ये फिर से खरीफ आ गया है। तो इसका जैसे कई सारे इन्होंने बताया कि क्यों मनाया जा रहा है, उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि अब बीमा जो है हमारा स्वैच्छिक हो गया है। तो पहले तो जो भी लोनी फार्मर थे जो बैंक से लोन लेते थे उनका अपने आप बीमा हो जाता था, अब जो है उनको बताना जरूरी है कि ये बीमा हम ले क्यों। तो जब तक उनके हम घर पे नहीं जाएंगे तो हर बार जो है कुछ ना कुछ जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चुनते हैं। इस बार भी करीब 75-80 डिस्ट्रिक्ट चुना गया है और हर उसमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स पे जाकर के, गांव के घर तक जाकर के, इतने अधिक मतलब जितने भी हमारे पास साधन है प्रचार प्रसार के सभी का इस्तेमाल करते हुए और जितने हितधारक हैं सभी के कान तक एक बार आवाज जरूर पहुंच जाए कि बीमा है क्या और इसको हम कैसे लें और उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और मतलब नुकसान होने पर फसल का उनको क्या इससे फायदा होगा और आगे फसल अपना जो है खेती बाड़ी आगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। ये सबसे प्रमुख बिंदु है जिसपे कि हम फोकस करना जा रहे हैं इस बार।
0: जी बिल्कुल, यानी जो एक किसानों की तरफ से लगातार मांग थी कि कुछ किसान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि अगर हमने ऋण नहीं लिया है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, तो उनका क्यों बीमा किया जाए। मतलब अगर ऋण लिया है और तब भी अपने आप ही पहले बीमा हो जाया करता था और अगर उन्हें नहीं कराना है तो ये उनके पास अब सुविधा है कि वो बैंक में जाकर इसकी जानकारी दे दे कि भले ही मेरा बीमा आप ना करें अगर ऋण लिया है तब भी, लेकिन इसके बारे में आपको सही समय पर सूचना देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं विभास जी से। विभास जी देखिए, हम जब गांव जाते हैं और किसानों से बात करते हैं और हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, हमारा भी मकसद रहता है कि किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाए, लेकिन एक जो हम प्रैक्टिकल और व्यवहारिक समस्या किसानों के बीच देखते हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर उनकी तरफ से शिकायत एक तरह से कह सकते हैं कि रहती है कि हम जाएं कहां, कोई हमें सुनने वाला नहीं, करानी है, अगर हमें नहीं भी कराना है बीमा और अगर हो गया है तो उसके बारे में हमें बैंक जाना पड़ता, कोई सुनता नहीं है, हमें कंपनी की तरफ से, जो बीमा कंपनी की तरफ से कोई व्यक्ति नहीं होता है जो उन्हें समझा सके, इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है?
4: देखिए, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स कहलाते हैं, CSCs, सारे किसान भाइयों को पता है। तो हम लोगों का पूरा पर्पस ये है कि फसल बीमा की पूरी जानकारी किसानों को दी जाए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मतलब हम लोग कैंप्स लगा सकते हैं, हम लोग ये सब करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, डिस्कशन करते हैं लोकल एरियाज में, उन लोगों को बताया जाता है कि फसल बीमा में क्या क्या सुविधाएं हैं। और उसके बाद पूरा एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है जिसपे किसान अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी जमीन का बीमा करा सकते हैं, वो पूरी की पूरी प्रोसेस हमारे CSC के थ्रू होती है
0: जी।
4: और उसके अलावा फिर मतलब उनको एक हम रसीद देते हैं जिससे ये उनको प्रूफ हो जाता है कि हाँ उन्होंने पेमेंट करा है
0: जी।
4: उसके बाद का उनका पॉलिसी का या जो उन्होंने पेमेंट करा है उसका स्टेटस क्या है वो भी हमारे वेली उनको समझा सकता है। तो इसलिए पूरी क्लेम अगर कभी आता है और अगर उनको इंटीमेट करना होता है तो उसके लिए भी वो हमारे वेली के पास आके अक्सर उनसे हेल्प लेते हैं और फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, क्योंकि बेसिकली हमारा काम कनेक्शन का है। तो जो भी नियरेस्ट CSC है, और हमारे काफी CSCs हैं सारे, उसमें मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक करीब करीब 3.5 करोड़ फार्मर्स को हम लोग एनरोल कर चुके हैं थ्रू द CSC नेटवर्क। तो
0: ठीक है, कृष्णवीर जी मैं आपके पास आती हूँ। अब ये बताएं कि देखिए इस योजना को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गया है और कहते भी हैं कि किसी योजना की कामयाबी या फिर उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको समझने के लिए 5 साल का वक्त काफी होता है, और कहते भी हैं कि किसी भी स्कीम का जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 5 साल आप लेकर चलिए। अब आप कहाँ देखते हैं किसानों को इस योजना को लेकर, उनमें कितना आत्मविश्वास है और उन्हें कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि आप किसानों से जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का फीडबैक प्रतिक्रिया आपको मिल रही है?
5: देखिए अंजू, जो उद्देश्य था सरकार का इस योजना को बनाने का, वो किसानों को जो नुकसान होता रहा प्राकृतिक आपदाओं से उससे बचाना सबसे बड़ा उद्देश्य है। दूसरा, जो पहले योजना थी उसमें जो लोन किसान का था उसमें कंपलसरी कर दिया गया था, लेकिन उसमें शिकायतें ये रही, कुछ बैंकों ने पैसा काट लिया, जमा नहीं किया पॉलिसी में, बहुत सारी शिकायत रही। इसी वजह से अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया है, किसानों की अपनी मर्जी है कि वो उसमें अपना इंश्योरेंस पॉलिसी में किस तरीके से भागीदार लें। ये सच्चाई है कि अब जब सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य यह है कि किसानों को पूरी तरीके से फसल बीमा योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप इसमें आइए और आप फसल बीमा कराइए, जिससे यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान आपका होता है तो उसकी भरपाई हो सके। ये तो है योजना का उद्देश्य, और योजना का जो लाभ है वो किसानों के लिए है, लेकिन कुछ कमियां, जो सुधार हो रहा है बराबर, अभी भी खामियां हैं। खामियां क्या है कि जब फसल बीमा योजना को लागू करते हैं खरीफ का तो बहुत तेजी से प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे रबी का करते हैं, लेकिन जब आपदा से नुकसान होता है देश के किसी भी कोने में, तो ये सच्चाई है कि अब तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपनी तरफ से जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसलिए लागू करवाया जिससे सर्वे के लिए ड्रोन जो है सबसे एक सही रास्ता चुना गया है, और उससे नुकसान का जो है एक सर्वे होता है और उसी तरीके से किसानों का जो है बीमा योजना की धनराशि दी जाती है। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि पूरे गांव में जब नुकसान होगा, पहले तो ब्लॉक होता था, अब सरकार ने गांव कर दिया है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे गांव का नुकसान होगा। ये हो सकता है कि एक तरफ से गांव के एक हिस्से में नुकसान हो और दूसरा हिस्सा ठीक रह जाए।
0: तो
5: मेरा सुझाव ये रहा है, और आज फिर मैं कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से फिर मेरा सुझाव है कि हर किसान के हर खेत का सिर्फ रसीद देना भर से जिम्मेदारी हक पूरा नहीं हो जाता, उसको कवर नोट दिया जाए कि ये फसल है, ये इसकी वैल्यू है, और यदि नुकसान होगा तो इतनी भरपाई जो है इंश्योरेंस कंपनी करेगी। इसमें भी दो चीजें हैं, एक केंद्र सरकार का धनराशि है और दूसरा प्रदेश सरकारों की उसमें धनराशि होती है। कई बार प्रदेश सरकारें समय पर धनराशि अदा नहीं कर पाती तो किसानों को ये फसल बीमा कंपनियां उसको जो लाभ समय पे नहीं दे पाते। कुछ प्रदेशों ने तो फसल बीमा योजना लागू ही नहीं की अपने यहाँ, जैसे पंजाब है तो वहाँ परेशानियां होती हैं, लेकिन पंजाब ने लागू नहीं किया, और भी प्रदेश हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं। एक सिर्फ मेरा दो सुझाव है कि जब किसान को आपदा का मुकाबला करने का हालात होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव वहां ब्लॉक लेवल पर होना जरूरी है। अगर ब्लॉक लेवल पर नहीं है तो जिला लेवल पे परमानेंट वहां रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस कंपनी का जो उस जिले में इंश्योरेंस कर रही है फसलों का, क्योंकि ऑनलाइन है सब कुछ। अब ऑनलाइन जो है सब कुछ में काम नहीं चलता, ऑनलाइन किया जा सकता है लेकिन जब लेने का नंबर आता है तो ऑनलाइन में अधूरापन रहता है और किसान उसमें भटकता है। इस कमी में सुधार करना है।
0: जी जी सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो कृष्णवीर जी ने एक तो पहली बात उन्होंने कहा कि जो कवर लेटर होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं हम किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाते हैं, कार है, मकान है, यहां तक कि हेल्थ इंश्योरेंस, सब में ये एक आपको बकायदा पॉलिसी मिलती है, उसमें जो जो चीजें कवर हैं, कितना सम इंश्योर्ड है, सब चीजें होती हैं। तो ऐसा क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आगे इस पर कुछ किया जा रहा है?
2: देखिए, जो अभी पूरे चर्चा चल रही थी उसका स्वरूप है कि जो सरकार जो है मुख्यतः तीन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसमें हम लोग बहुत काम करने में सफल हुए। पहला चीज है कि हम फसल कटाई प्रयोग को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंट वे में करके हम किसानों को भागीदार बना के हमको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करें, क्लेम दे दें। उसकी दूसरी चीज है कि इनरोलमेंट हम करें कि किसान को इनरोलमेंट में कहीं भटकना ना पड़े, हम उनकी पूरी चीज को है वो द्वार तक पहुंचाएं, और इसके लिए पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, सीएससी, पोस्ट ऑफिस या फिर टेक्नोलॉजी के सहायता से हम लोग देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किसानों को हम योजना के बारे में बताएं, उसमें कोई त्रुटि रह गई उनको विश्वास हो और उसमें भागीदार बने। तो ये इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार वगैरह कर रहे हैं और उसी कड़ी में ये फसल बीमा सप्ताह इस बार लागू चलाई जाएगी। लेकिन मुख्य जो आप कह रहे थे कि हम उनको रिसीट देते हैं या नहीं देते हैं, हाँ हम लोग आज से 2-2.5 साल पहले हम लोग शुरू कर चुके हैं कि हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो बैंक में बीमा कराते हैं, बैंक के थ्रू बीमा होता है, उनको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से देते हैं। जो कॉमन सर्विस सेंटर या अभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कराएंगे उनको तत्काल तुरंत हाथ में ही उनको पॉलिसी दिया जाता है। अच्छा। उसका पर्पस ये है, जो हम किसान भाइयों को जागरूक करते रहते हैं, इसका बहुत वैल्यू है क्योंकि आपके पास एक कागजात है, कागजात में एक सारे चीजें लिखे होती है कि आपका किस फसल का बीमा हुआ, आपने कितना प्रीमियम दिया, सरकार ने उस आपको प्रीमियम सहायता के रूप में आपके लिए कितने बीमा कंपनियों को भुगतान किया, किस खेत में है, किस खेत में किस फसल के लिए बीमा किया गया है, कितनी धनराशि है, बैंक का नाम, खाता नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। इसके अलावा फिर हम किसान भाई को और जागरूक करते कि अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई तो इसको तत्काल हम लोग से सुधारवाएं, बीमा कंपनियों को संपर्क करें ताकि इसमें सुधार किया जाए, ताकि हम भुगतान जब आपको भुगतान करना हो तो जल्द से जल्द भुगतान करें, किसी तरह की व्यवधान ना पैदा हो। खास करके ऐसा देखा गया है, पीछे हम लोग ने अनुभव किए थे कि अगर बैंक के माध्यम से जब इंश्योरेंस होता था तो किसान भाई को पता भी नहीं होता था कि मैं मेरी किस खेत की किस फसल के लिए बीमा हो गई है। तो ये एक चैलेंज था। जब हम इसमें व्यक्तिगत खेतवार आकलन करने की व्यवस्था की गई है कि कुछ ऐसे पेरिल्स हैं, जोखिम जिसको खेतवार आकलन किया जाता है, जब बीमा कंपनी राज्य सरकार के जो संयुक्त समिति होती है जब सर्वेक्षण के लिए जाती है तो वहां जिस फसल के लिए बीमा होता किया गया है वो फसल नहीं मिल पाती थी। तो ये सारे चीज जो चुनौतियां जो फील्ड में थी
0: देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि किसान ये कहता है कि हमें तो पता ही नहीं होता है कि हमारी कौन सी फसल का बीमा हो गया, और वो तो जो उसको जो फसल लेनी वो लेता है, और बाद में पता चलता है कि जो कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो नोटिफाइड फसल है जिसकी अधिसूचना है उसी का ही बीमा मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों होता, मतलब ऐसी स्थिति ही क्यों आती है?
2: देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार इसमें अधिसूचित करती है फसलों को। इसमें योजना में उनके लिए जो एक क्षतिपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड होता है, ग्रांटेड यील्ड दिया जाता है, तो उसके लिए 10 साल का उपज आंकड़ा की आवश्यकता होता है। प्लस जो अभी हम लोग तत्काल में अगर कोई क्षति होती है, क्षति का जो मापदंड होता है वो भी फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से किया जाता है। तो राज्य सरकार ये देखती है कि किस फसल में जोखिम है, हमारे पास डेटा उपलब्ध है ताकि हम उसको अधिसूचित कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है कि हम लोग ने भी सर्वे किया है, अदर किया है, कि जो मुख्य फसल होते हैं वो सारे कवर हैं, कुछ कुछ फसलें ऐसे हैं जिनके इल डेटा नहीं उपलब्ध होते हैं उस टाइम, उनको हम लोग राज्य सरकार को प्रेरित करते हैं, बात करते हैं मौसम आधारित बीमा योजना में, जैसे खास करके आप बागवानी फसलें हैं, खास करके आपके जो सब्जी की फसलें हैं जो आजकल शहर के नजदीक या गांव में भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं, तो वहां भी हम लोग उनके डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है अलग अलग वैरायटी के कारण, अलग अलग टाइम के कारण। तो हम लोग कहते हैं उनको कि मौसम आधारित बीमा योजना है, उसमें आप इसको अधिसूचित करें।
0: जी बिल्कुल।
5: गन्ना भी है, वो भी बाहर है, अभी उत्तर प्रदेश क्या पूरा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, 8 प्रदेश है, लेकिन गन्ना भी अभी योजना में शामिल नहीं हो पा रहा है।
0: जी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और पूरे इस सप्ताह को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वीक के तौर पर मनाया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को इसको लेकर जागरूक किया जाए, डोर टू डोर पहुंचा जाए, किसानों के घर तक पहुंचा जाए और इसके लाभ के बारे में उन्हें बताया जा सके, ताकि वो इससे जुड़े, इसका लाभ ले और जो उनकी आशंकाएं हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
6: किसान भाइयों, अभी हमने फसल बीमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर लेते हम छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए और जानते हैं कुछ और इस फसल बीमा सप्ताह के अंदर क्या जानकारियां हमें मिल सकती है, आइए सुनते हैं।
2: 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के दौरान फसल बीमा वीक मनाया जा रहा है ताकि आप किसानों को इसके लाभ के बारे में बताया जा सके और आपकी समस्याओं को भी सुना जा सके ताकि उनको सुनकर बीमा को लेकर जो सुझाव हैं बदलाव भी किए जा सके, संशोधन भी किए जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले सर मैंने कहा था कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पहुंचे हैं हम इन लगभग 5-6 सालों में, पहले क्या आंकड़ा था और अब कहां कितने किसानों को इसमें कवर किया गया है और कितनी नई फसलों को शामिल किया गया है। सुनील जी,
3: देखिए पहले जब हम पुराने योजनाओं में अगर देखें तो उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम था। उसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग ने देखा कि क्यों कम है, क्या किसान जानते हैं बीमा योजना के बारे में या नहीं जानते हैं, या राज्य सरकार अधिसूचित नहीं कर पाती फसलों को। तो ये सारे चर्चा करके हुआ कि नहीं, इसमें हम पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के हम इनको अच्छे से ढंग से योजना को नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में लागू किया गया, जिसमें पहले वर्ष में जो थे वो आप अगर संख्या देखेंगे किसानों का तो करीब वो 4 करोड़ एप्लीकेशन आए थे। और खरीफ अगर 16 की बात करें, अगर अभी हम पिछले खरीफ की बात करें तो स्वैच्छिक होने के बावजूद, योजना स्वैच्छिक हुई है, आधार इसमें कंपलसरी किया गया है, लैंड रिकॉर्ड को हम लोग जोड़ दिए हैं ताकि इसमें किसी तरह से डी डुप्लीकेशन हम प्रॉपर कर पाए, वो इसकी गलत फायदा लोगों ना उठा पाए। तो ये सारे चीजों को करने के बाद भी अभी हमारे पास खरीफ में केवल 5 करोड़ किसान अभी बीमित हुए हैं। और हम लोग आशा कर रहे हैं ये कोविड काल का पीरियड है जब तक हम लोग के पास बहुत संसाधन कॉन्स्टेंट था, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है 5 करोड़ से ज्यादा फार्मर एप्लीकेशन को हम बीमित करेंगे इस बार। तो इसी तरह से देखेंगे क्लेम के बारे में अगर हम कहें तो क्लेम का भी अच्छा रहा है। जहां जहां प्राकृतिक आपदाएं 5 साल में आए हैं वहां क्लेम किसानों को मिला है। हाँ, किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि ये बीमा योजना है, बीमा योजना में लाभ उसी जगह मिलता है जहां आपकी फसल नुकसान हुई है।
2: ठीक है,
3: तो जहां जहां नुकसान हुई है वहां वहां फसल का बीमा मिला है। सरकार इसको पूरी निरंतर मॉनिटरिंग कर रही है, देखते रहती है और इसके लिए बहुत सुचारू तंत्र भी लगाया गया है कि ताकि आपको किसी तरह की कठिनाइयां ना हो इसमें। अगर खास करके मैं आज बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारे पास जो है शिकायत किसानों का होता था उसके लिए क्या करना चाहिए, तो किसान के लिए शिकायत पहले सीधे मंत्रालय को आता था, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, राष्ट्रपति और मंत्रालय को। ये सारे चीजों को हम लोग ने बहुत ग्राम स्तर तक ले जा रहे हैं। अभी ब्लॉक लेवल पर शिकायत निवारण तंत्र किया गया है। इसके अलावा बीमा कंपनियों को कहा गया कि टोल फ्री नंबर टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उनकी शिकायत को करें और उनको निवारण करें। इसमें भी अब जो है केंद्र सरकार ने ये निश्चित किया है और इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट हो चुका है कि पूरी कॉल सेंटर शिकायत के लिए पूरी स्ट्रेटजी हर एक स्टेट्स में उनके रिप्रेजेंटेटिव टोटल होंगे ताकि आपको शिकायत पूरे डॉकेट नंबर के साथ हो और हर एक चीज पर केंद्र सरकार उस पर निगरानी रख सके कि आपकी शिकायत कैसे हुआ और कब निपटारा।
2: ठीक है सुधाकर जी, जैसे कि कृष्णवीर जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि एक समस्या ये भी आती है कि इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी का कहना होता है कि वो हमें बजट के हिसाब से चीजें करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो पूरा मैन पावर होता है वो उसके अनुसार ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं होंगे, प्रतिनिधि नहीं होंगे तो किससे बात करेंगे किसान।
4: देखिए ये सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट होता अगर ये शायद 2 साल पहले तक, तो ये रेलेवेंट था। आज के समय में आप देखेंगे तो जो भी कंपनी काम कर रही है तो उसका एक प्रतिनिधि जिला स्तर पे भी है और उसका एक एक प्रतिनिधि हर ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर उपलब्ध है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां हमारी कंपनी भी कार्यरत है 37 जिलों में, तो वहां 200 के आसपास हमारे प्रतिनिधि पूरे फील्ड में मौजूद हैं। तो उसमें वैसे जिले भी हैं जहां पर की प्रीमियम जहां जो जिससे कंपनी का आमदनी होता है वहां नहीं के बराबर है, वहां भी जो है हमारे हर ब्लॉक में आपको आप हमारे प्रतिनिधि मिल जाएंगे। तो ये समस्या आती है ज्यादातर उन छोटे राज्यों में जहां पर की प्रीमियम ही बहुत कम है। अगर सारे जगह पे प्रतिनिधि लगा दिया जाए तो जितनी प्रीमियम नहीं आती है उससे अधिक हमारा
2: कॉस्ट
4: बढ़ जाएगा। तो वहां पे एक समस्या है जिसको कि भारत सरकार के सहयोग से उसको ये सुलझाने की कोशिश की जा रही है, शायद उसको भी कुछ जल्दी से
2: उसको लेकर क्या किया जा रहा है सुनील? जैसा कि
3: देखिए इसमें चीजें हैं जैसे अभी बता रहे थे, जिसमें पहले सेगमेंट में ही सुधाकर जी बताया कि कुछ ऐसे जिलों को हम लोग चिन्हित करते हैं जहां पोटेंशियल हो और इंश्योरेंस सभी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोग 75 डिस्ट्रिक्ट इस बार भी चुने हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इनके लिए बिजनेस है, सरकार के लिए है कि किसानों को सुविधा है, तो उसके बीच में क्या बैलेंस हो और कैसे करे, तो इनके इंश्योरेंस कंपनी के जो तंत्र हैं उनको तो हम लोग एक्टिवेट करते हैं, प्लस जो है ये फसल बीमा सप्ताह, फसल बीमा पाठशाला, ये सारे जो हमारी योजनाएं हैं जो लगातार चल रही है उसके द्वारा भी करते हैं। और जो चीजें वहां अगर पोटेंशियल है और किसानों को नहीं है तो टारगेट भी दिया गया है कि हम आप वहां जाएं और टारगेट करें। तो बिजनेस के साथ साथ जो उनकी सरकार की दायित्व है उसमें पूरी समायोजित करके योजना बनाई जाती है और वहां हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता है और हम लोग हर एक किसानों को समझाते हैं कि हाँ आपके पास जो है यहाँ क्षति हो सकती है, यहाँ रिस्क है, इस रिस्क में आपको बीमा करानी चाहिए। बाकी स्वैच्छिक है बीमा, किसान चाहते हैं तो बीमा होती है।
4: और इसमें मैं एक थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, अभी हमारे सीएससी के प्रतिनिधि भी यहाँ पे हैं, पहले भी उन्होंने बताया कि ये हर गांव में एक सेंटर तो है ही, कई कई गांव में तो दो दो सेंटर भी है और कोई बहुत अधिक घनत्व वाला है तो हाँ उससे भी ज्यादा संख्या मिल जाए। तो वो जो सेंटर्स पे हैं उनको बीमा कंपनी, राज्य सरकार के और स्वयं सीएससी के द्वारा भी जो वहां काम कर रहे हैं, इसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उनको काफी उनको मैन पावर इन्हांसमेंट होती है, उनकी जो तकनीकी जानकारी बढ़ाई जाती है, समय समय पर उनको जानकारी दी जाती है, तो वो भी एक तरह से समझ लीजिए योजना का एक्सटेंडेड आर्म है, वो भी हर तरह से हर सुविधा देने के लिए किसानों के लिए सामने खड़े हैं वो, तो चाहे बीमा का लाभ लेना हो या बीमा कराना हो।
2: अच्छा जी जी, एक चीज और बताइए सुधाकर जी कि आप ये फसल बीमा मित्र कुछ हम सुन रहे हैं, ये क्या है?
4: हाँ, ये एक नई कॉन्सेप्ट भारत सरकार ने लाई है कि हर ग्राम पंचायत में या हर गांव में कह लीजिए कि एक वॉलंटियर का सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन क्या मतलब, जो भी वॉलंटियर करेंगे तो एक बंदे को नॉमिनेट किया जाएगा कि फसल बीमा मित्र के रूप में आप कार्य कीजिए
2: किसानों के बीच में
4: से ही।
5: असली बात यह है कि इसलिए मित्र खड़ा करना पड़ रहा भारत सरकार को कि कंपनियों के और किसान के बीच में जो एक समस्या चल रही थी उसके समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो मित्र जो है हर गांव में करना जरूरी हो गया, इसीलिए किया जा रहा है, जिससे इसका किसानों को जो समस्याएं हैं वो है समय पर उसको इंश्योरेंस का जो प्राइस प्रीमियम जो देता है उसका नुकसान होने पर उसकी भरपाई हो जाए, भरपाई करवाने के लिए ही ये ग्राम लेवल पर भारत सरकार मित्र जो है योजना खड़ा कर रही है।
2: जी मैं आपसे समझना चाहूंगी विभास जी, सीएससी का रोल किस तरह का है और कैसे इसे आप यहाँ पर हमारे दर्शकों को किसानों को समझाएंगे?
6: देखिए जैसे अभी सुधाकर जी ने यूपी की बात करी थी तो मैं यूपी का एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। यूपी में हमारे करीब 80,000 केंद्र हैं, एवरेज हो गया करीब करीब 1100-1200 केंद्र हर जिले में
2: जी।
6: तो ये ऑलमोस्ट जैसे इन्होंने कहा हर गांव में एक केंद्र है ही, हर ग्राम पंचायत में डेफिनेटली एक केंद्र है और वहाँ पे सारी उन लोगों को जानकारी होती है फसल बीमा के बारे में। तो हमारे किसान भाई वहां जाके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां से जाके एनरोलमेंट भी कर सकते हैं,
2: दोनों चीजें
6: हो सकती है, जिसमें कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते हैं उनसे। तो वो एक सप्लीमेंट्री मैनपावर की तरह से भी यूज होता है, कई लोग करते हैं कि जो भी आपको जानकारी चाहिए फसल बीमा कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अगर आपने एक बार पॉलिसी ले ली है तो उसके स्टेटस के बारे में, अगर कोई रिफंड या रिजेक्टेड पॉलिसी है उसके स्टेटस के बारे में, ये सारी चीजें हमारे केंद्र से पता की जा सकती है
2: जी। और कृष्णवीर जी, अब मैं आपसे यहाँ पर जाना चाहूंगी, किसानों की एक समस्या हम ये भी देखते हैं कि कई बार जो कोई अगर क्षति होती है या कोई आपदा आती है तो राज्य की तरफ से भी वो आपदा राहत राशि होती है, और वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी अगर वो किसान लाभ ले रहा है, अगर उसने बीमा भी करवाया उस फसल का, तो यहां पर किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि हमें तो ये नहीं पता चलता कि हमें पैसा कौन सा मिल रहा है, दोनों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये आप अब जब किसानों से बात करते हैं तो किस तरह की शिकायत रहती है उनकी तरफ से?
5: देखिए, प्रदेश सरकारों का जो आपदा में पूरा प्रबंधन करती है सरकार और जो पैसा किसानों को देती है, वो राशि जो है वो कम होती है, और वो कम राशि इसलिए होती है कि तत्काल किसानों को एक मदद है आर्थिक रूप से, जो तुरंत मदद की आवश्यकता है किसान को, तो प्रदेश सरकारें सिर्फ तुरंत सहायता के लिए मदद करती हैं। अब बात आती है कि जो फसल बीमा कराया गया है और जिस कंपनी ने किया है, जितना नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए, और वो समय पे भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तक शिकायत ये थी कि समय पर उसको पैसा जो नुकसान है वो उसको मिल जाए। किसान ये चाहता है कि जो प्राकृतिक आपदा से नुकसान है वो हर किसान को समय पर मिल जाए, और जिस दिन कंपनियां देना शुरू करेंगी तो एक किसान जो है 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं बल्कि 13 करोड़ किसान इस योजना को स्वीकार करें।
2: सुनील जी, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे?
3: देखिए, ये चुनौतियां सरकार के पास रही है और अभी बहुत हम लोग सफल हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पूरे हम लोग जितना लक्ष्य रखे हैं उसमें सफल हो पाए हैं, लेकिन पहले इसमें धीरे धीरे कड़ी हम लोग हटा रहे हैं कि क्यों देरी होती थी। पहले चीजें थी कि डेटा जो आता था बहुत देर से आता था, उसको डेटा को कैलकुलेट करने में कि कितना क्षति होगी उसमें दिक्कत होती, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का समावेश किए कि ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग उनको क्षति का आकलन कर पाए। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट का डेटा आता था बड़ा फिजिकली आता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता था, उस सारे चीज ठीक हुए। दूसरा मेन चीज था कि पहले हम लोग सीधे बैंक को देते थे और बैंक जो है सीधे जो इंश्योर्ड फार्मर होते थे उनके खाते में ट्रांसफर करते थे, अब हम लोग सीधे इंश्योर्ड फार्मर्स के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो चुनौतियां थी उसको हम लोग ने दूर कर दिया है। अब केवल चुनौती केवल इतना ही बच गया है कि कहीं कहीं जो है राज्य सरकार जो है प्रीमियम नहीं दे पाती है समय से, इसके कारण भुगतान डिले होता है, लेकिन हम लोग जो है ऐसे बहुत कम परसेंटेज है जो अब ऐसे बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग जो तत्काल 2 महीने का हम लोग टारगेट रखे हैं कि 2 महीने के अंदर जो मौसम फसल कटाई प्रयोग खत्म होते हैं उसके 2 महीने के अंदर अंदर भुगतान करना होता है, इसके लिए मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं, प्लस अगर भुगतान नहीं किए तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और उन पर 12% का ब्याज दर निर्धारित करके हम लोग भुगतान भी करवाते हैं। ये सारी चीजें आई है, तो जिसके कारण से जो है सबको दायित्व दिया गया है, दायित्व के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक समय दिया गया है, उस समय में करें, और टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया ताकि ट्रांसपेरेंट वे में मॉनिटरिंग हर एक स्टेक होल्डर हर एक आदमी कर पाए, वो अपने मोबाइल के माध्यम से है। लेकिन अगले सीजन से हम लोग जो है सीधे सीधे भारत सरकार ही पैसा ट्रांसफर करेगी, ऐसी व्यवस्था कर रही है इंश्योरेंस कंपनी हमारे पोर्टल के माध्यम से ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। दूसरे 2-3 फायदे हैं कि हम लोग को पूरे राज्य सरकार और पूरे उनके प्रतिनिधि साहब को पता होगा कि कब पैसा ट्रांसफर हुआ, और किसान को ट्रैक कर पाएंगे पूरे एक्टिविटीज को। तो ये अगले सीजन से हम लोग ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग चालू करने वाले हैं, तो ताकि अब हम लोग एकदम रूट कॉज में पता कर पाए।
0: किसान साथियों, अभी हमने सुना किस तरीके से पहले जितनी समस्या आती थी हमें हमारे बीमा काम करने में, किस तरह कौन सा पैसा आया कौन सा नहीं आया, इन सारी समस्याओं को जितना हो सके जो लंबी प्रोसेस थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते और सुनते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: कि किसान भाई को सराहता कि मेरा कैलकुलेशन सही नहीं हुआ, मेरा जो आकलन हुआ ठीक नहीं हुआ, वहाँ प्रतिनिधि पूरे अगर डेटा इलेक्ट्रॉनिक वे में आके और सारे चीज रिकॉर्डेड रहेगा और हम लोग उस चीज को बाद में भी ऑडिट कर सकते हैं, उसमें ग्रीवांसेज बनेगी तो हम लोग तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये सारे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। योजना का पर्पस ही है कि हम ट्रांसपेरेंट वे में पूरे हम फार्मर्स को कॉन्फिडेंस में लाएं कि

0: जी ने बताया कि किसानों की तरफ से एक ये भी सवाल रहते हैं या फिर आशंका रहती है कि जो कैलकुलेशन हुआ है वो कितना सही हुआ है, किस आधार पर हुआ है, तो उसे और पारदर्शी करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे कि मैं कुछ पॉइंट्स भी पढ़ रही थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए, तो उनमें से एक पॉइंट था कि उपज के पूरे मूल्य का बीमा होगा और जो बीमित राशि है, जो मूल्य है, उसे कम नहीं किया जाएगा। तो ये किस तरह से ये इसका गणित क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है?
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: मांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है, नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र।
0: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि ब्रेक से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि जो मूल्य की बात कर रहे हैं कि जो उपज है उसकी जो बीमित राशि है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके मानक क्या है, क्या है इसके पीछे का पूरा गणित, तो मुझे लगता है सुनील जी आप इसे बेहतर समझा पाएंगे।
3: देखिए इसमें सरकार की हम मंशा रही है कि हम पूरे जितने क्षति हो उसको हम पूर्ण भरपाई करें, समानुपातिक जितने क्षति हुई उसको करें। अगर 100% लॉस हुआ तो 100% देंगे, 50% लॉस हुआ तो 50% देंगे। इसकी कैलकुलेशन जो है दो तरह के हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं कि या तो आप जो है स्केल ऑफ फाइनेंस जो जिसके आधार पर आपको बैंक ऋण मुहैया कराते हैं उसी के आधार पर वो भी स्केल ऑफ फाइनेंस होगा। वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी बहुत साइंटिफिक तरीके से निर्धारित किया जाता है कि C2 जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके आधार पर हर एक जिले में जो आप वैरायटी लगाते हैं, जो आप इनपुट यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, उसके आधार पर जो है स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित होता है। इस और उसी को हम लोग सम इंश्योर्ड के रूप में अडॉप्ट करते हैं। दूसरा एक राज्य सरकार को और दिया गया है कि आप उसको कुछ क्रॉप्स का कि बहुत दिनों से नहीं अपग्रेड हुआ होगा स्केल ऑफ फाइनेंस या उसमें लगता होगा कि किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक चॉइस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि पिछले जो आपका 7 साल का उपज है उसको एवरेज यील्ड लीजिए और आज का जो पिछले साल MSP घोषणा की गई है या इस साल जब आप नोटिफिकेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें MSP की घोषणा हो गई है तो उस MSP से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका वैल्यू बनेगा पर हेक्टेयर वो सम इंश्योर्ड होगा, यील्ड आपको आ गया पर हेक्टेयर और एमएसपी के प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उनको सम इंश्योर्ड।
0: ठीक है सुधाकर जी, तो ये सब कैलकुलेशन किस स्तर पर होती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं जो गाइडलाइन

0: मिली है सरकार की तरफ से उसके आधार पर?
1: नहीं, ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। राज्य सरकार तय करती है, जब जैसा आपको पता होगा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कंपनियां सबसे कम प्रीमियम देती हैं उसी को वो डिस्ट्रिक्ट में बीमा करने का अधिकार मिलता है। तो जब टेंडर का डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी समय राज्य सरकार कहती है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या सम इंश्योर्ड होगा। जैसा भी सुनील जी ने बताया कि सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, राज्य सरकार के अधीन है कि वो किस तरीके को अपना करके सम इंश्योर्ड तय करती है। तो पहले ही डॉक्यूमेंट हो जाता है कि ये सम इंश्योर्ड इस बार इस क्रॉप में रहेगा। और इंडेमनिटी लेवल दूसरा होता है कि जो क्षतिपूर्ति का स्तर क्या होगा वो भी पहले ही तय हो जाता है राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो 70% हो, 80% हो या 90% हो। जो क्रॉप अधिक रिस्क की है उसको 70% राज्य सरकार रखती है और जो हमेशा अच्छा उपज देने वाली है उसको 90% तक रखती है। तो ये सारा राज्य सरकार करती है, बीमा कंपनियों का इसमें रोल नहीं है।
0: जी कृष्णवीर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो C2 की बात की जा रही है, स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जा रही है, इसे कितना समझते हैं किसान?
2: देखिए, जो क्रॉप कटिंग का जो प्रोडक्टिविटी का पिछला 7 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसमें उतार चढ़ाव बराबर आता रहता है और जो पिछला MSP है उससे कैलकुलेट करके जो सरकार योजना बना रही है, ये इस पर काम चल रहा है अभी, इस पर काम चल रहा है। ये किसानों के हित में होगा कि जो जिला स्तर की यील्ड होगी, जो लेवल होगा प्रोडक्टिविटी का, और उसको MSP से कैलकुलेट करके जो टोटल फसल का दाम होगा उससे किसान को जो है कंपनसेट जो है नुकसान होने पर जो है वो दिया जाएगा। ये किसान के हित में जरूरी है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि नुकसान कितने प्रतिशत हुआ है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने से जो पहले जिला और गांव लेवल पर दिक्कतें थी उसका समाधान करने का प्रयास सरकार ने किया है। खासतौर से जो असेसमेंट का सुधार किया है टेक्नोलॉजी का, वो समय की आवश्यकता थी और उसको सरकार ने लागू किया है। अब सिर्फ स्थिति यहां आके रुकी हुई है कि केंद्र सरकार जिस दिन जो है सीधे किसानों को नुकसान का पैसा उनके खाते में देना शुरू करवा देंगे, जैसा कि सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हम किसानों के नुकसान का पैसा केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में दे, ना कि बैंक को बीच में रखे या पोस्ट ऑफिस को रखे या कंपनियों को अभी तक जो रखा गया, क्योंकि उसी से किसान जो है अभी तक जो समस्याएं हैं उसी लेवल पर हैं। वो समस्या का समाधान जिस दिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से, जो देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, सिंगल क्लिक पर जो है 13 करोड़ किसानों को जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, इसी तरीके सारी योजना है। तो ये भी योजना जिस दिन केंद्र सरकार अपने तरफ से सीधे किसानों खाते में देना शुरू कर देगी उस दिन उस समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रदेश सरकारें जो अपना पैसा भागीदारी का है वो समय पर दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो उस पर 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये तो
0: जवाबदेही भी यहाँ पर तय हो जाएगी,
2: इसे किसान के हित में किया।
0: जी बिल्कुल विभास जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का किस तरह का रुख आप देख रहे हैं, जो इतने सारे बदलाव किए जा रहे हैं इसे और सशक्त बनाया जा रहा है?
3: देखिए, मैं तो CSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ, हमारे यहाँ एनरोलमेंट बढ़े हैं, हर सीजन में लगातार एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा लोग आके जुड़ रहे हैं इस स्कीम के साथ थ्रू द CSE नेटवर्क। तो हमको तो लग रहा है कि ये स्कीम
0: काफी
3: लोकप्रिय हो रही है।
4: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटाबिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटाबिल 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
4: जानकारियों को बढ़ाते हुए ये सुनते हैं कैसे आसानी से हम इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: देखिए, मैं किसान भाई बंधु को मैं बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना बहुत आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर एक आप खेती करते हैं, खेती में जोखिम बहुत है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी लगाते हैं और आप एक भविष्य के लिए एक निश्चित आय आप सोचते हैं कि हमको ये आएगी और उसके लिए वर्तमान में आय से आप फ्यूचर की क्रियाकलाप निर्धारित करते हैं। अगर किसी न किसी कारण से, वैसा कभी ना हो हम लोग सोचते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपके जो है फसल नुकसान हो जाए और जो आप आय के लिए जो आशा किए थे वो आय में बाधा हो, इस चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। आप इसका लाभ लें, बहुत सिंपल है, आपको केवल 2% प्रीमियम देना पड़ता है खरीफ फसलों के लिए, रबी में 1.5% प्रीमियम है अधिकतम, बाकी बागवानी
6: फसलों के लिए अधिकतम 5% है, जो कम ही है, और वो जो है वो बाकी शेष राज्य सरकार केंद्र सरकार वहन करती है। आप योजना में देखें, अपने योजना के बारे में जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप कृषि विभाग से ले सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, आला प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस या बीमा कंपनी के जितने कार्यालय वहां तक हम लोग लगाए। इसके अलावा होर्डिंग हम लोग वैन वगैरह चलवा रहे हैं कि हर एक गाँव में पहुंचे, आपको जानकारी दे, पंपलेट बांटे ताकि आपके पास रहे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके पास जब आए तो सारे चीजें मिले। ये सारे चीजें हमको जानकारी
0: एक्सटेंशन वर्क जो है
6: आप जो है बहुत सिंपल है, हर एक जगह इसकी उपलब्धता है। आप बैंक के माध्यम से करा सकते हैं, सीएससी के माध्यम से करा सकते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, पोर्टल पर जाके कर सकते हैं। ये कहीं भी डोर स्टेप पर हम लोग कोशिश किए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप इनरोल्ड कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए बहुत सरल तरीका है, केवल आपको 3 कागजात देने हैं, कागजात भी नहीं कहिए, कागजात के रूप में केवल आपको, केवल अगर आप भूमि स्वामी है तो रसीद देने पड़ेंगे उनके, अगर आप पट्टे पर लिए हैं तो उनके आपके लिए घोषणा देना पड़ेगा, एक राज्य सरकार ने निर्धारित किया गया है। आपको क्रॉप के बारे में स्व घोषणा करना है कि हम ये क्रॉप के लिए बीमा करा रहे हैं। हाँ, ध्यान दें कि जिसका बीमा कराए वही फसल लगाए, अगर फसल बदलते हैं तो आप तो बीमा कंपनी में जाके बदलवा दें ताकि आपको भविष्य में कठिनाई ना हो। बैंक का हम लोग दस्तावेज लेते हैं, दस्तावेज इसलिए लेते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी हमको भुगतान करना होता है बीमा कंपनियों के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, ताकि हम आपके डिटेल हो पहले कैप्चर करके रखें और दें। हाँ, ये योजना जो है इसमें हम लोग नई 2 चीज और जोड़े हैं, आधार, आधार कंपलसरी है ताकि जो है किसी तरह का योजना का सही लोगों को सही जगह पहुंच पाए, और लैंड रिकॉर्ड की इंटीग्रेशन किए हैं ताकि जो है जिस लैंड में है उसी लैंड का आपका बीमा हो और पूरा डिटेल हमारे पास हो और किसी तरह के जल्दी से जल्दी
0: किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के
6: ट्रांसपेरेंट वे में करें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: किसान साथियों, आपने फसल बीमा योजना से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपरो रेडियो आपरी बातें।

रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम झाबवा की आवाज आपके लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हमारे किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें केवीकी के माध्यम से, कृषि वैज्ञानिक एक्सपर्ट के माध्यम से, रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। और सफल किसान की कहानी के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आप तक हम अच्छी से अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे सकें। तो किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम का यही प्रयास रहा है कि हमेशा हम आपकी समस्याओं का निदान कर सके, आपके लिए कुछ कृषि में नवीनीकरण ला सके और आपकी जो आजीविका के स्रोत हैं उन्हें बढ़ा सके। कृषि विज्ञान के माध्यम से जो स्रोतों में आय वर्धक चीजें हैं उनमें उनको बढ़ावा दे सकें, साथ ही कृषि शिक्षा को भी हम बढ़ावा देते हैं ताकि कृषि शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारियों को पहुंचाने का हमेशा से प्रयास रहा है। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम। किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, आज के कृषि कार्यक्रम में हम जानेंगे शुकर पालन और पशुपालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, जहां हम जानेंगे कैसे हम हमारी आय के स्रोतों में वृद्धि कर सकते हैं और पशुओं का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए, साथ ही किस तरीके से ये पशु हमारे लिए एक आय का स्रोत बन सकते हैं और कैसे हम इससे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: तो देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि आज हम पहले बात करेंगे जो हमारे दुधारू पशु हैं, किस तरह का रखरखाव जो है वो जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम पशुधन की बात करते हैं तो उसकी सार्थकता तभी होगी जब हम बेहतर ढंग से उनका रखरखाव कर सकेंगे। और डॉक्टर पाठक, अगर आप से हम सबसे पहले जानना चाहेंगे और बधाई भी देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पशुपालन क्षेत्र के लिए आपने लाइफ टाइम अचीव जो अवार्ड है वो भी अभी हम कह सकते हैं हासिल किया है, और लगातार इतने सारे एक शिखर तक आपका सफर रहा है, लेकिन जब दुधारू पशुओं के रखरखाव की बात हम करते हैं, कितना जरूरी, क्योंकि शायद यही बात आप ना जाने कितने दशकों से जो किसान हैं उनके साथ बातचीत भी करते आए होंगे, उनको समझाते हुए आए होंगे।
3: जी मुकुल जी, देखिए हम बड़े भाग्यशाली हैं भारतवर्ष के जो पशुपालक हैं और हम सभी नागरिक के, हमारा जो देश है वो पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम है
2: जी।
3: और ये दुग्ध उत्पादन प्रथमता पहली एक दो साल की नहीं है, पिछले 10 वर्ष से जो है दुग्ध उत्पादन में भारतवर्ष जो है प्रथम चल रहा है। तो ये जो दुग्ध उत्पादन है इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे जो पशु हैं, क्योंकि पशुओं की संख्या में भी हम भारत जो है पूरे विश्व में नंबर वन है
2: जी।
3: तो इनको उत्पादकता को बढ़ाए रखने के लिए और दूध की क्षमता बढ़ाने के लिए पशु का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है
2: जी।
3: मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए तीन चीजें हैं पशुपालन में, एक है उसकी ब्रीड, कौन सी आप नस्ल रख रहे हैं, दुधारू पशुओं की बात करेंगे आज, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा है
2: जी,
3: और तीसरा है कि उनका आहार और उनका आवास कैसा है। तो ये अगर तीन चीजें बढ़िया हैं और विशेष रूप से अगर स्वास्थ्य अच्छा है पशु का, तो निश्चित रूप से जो दूध उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, ये हम और कोई भी उत्पादन की बात करें, चाहे हम सुकर पालन की बात करें, चाहे भेड़ पालन की बात करें या बकरी पालन की बात करें
2: जी,
3: उत्तम स्वास्थ्य अगर पशु का रहेगा तो कम से कम पशुपालक का खर्चा होगा, खर्चा बचेगा, साथ ही साथ जो पशु है उसकी उत्पादकता बनी रहेगी
2: जी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से, यानी जो पशुधन है उसकी सार्थकता कैसे हो सकती है, इन जो मुख्य कारक हैं इनका ख्याल हमें रखना होगा और इनके बारे में विस्तार से डॉक्टर पाठक आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: पोषण का असर पशुओं के शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी पड़ता है, ऐसे में दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन के लिए उनके पोषण का ध्यान रखना जरूरी है। दुधारू पशुओं को साफ और ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशु की पानी की जरूरत वातावरण की दशा और उसको दिए गए आहार पर निर्भर करती है। हरे चारे में पानी की मात्रा ज्यादा होने से पशु कम पानी पीते हैं, लेकिन दुधारू पशुओं को गर्मियों में कम से कम 4 बार और सर्दी में 2 बार ताज़ा पानी जरूर पिलाएं। अगर पशु गर्भित है तो दुधारू पशुओं को समय के हिसाब से ताज़ा भरपेट चारा देना चाहिए, तो उसके दूध उत्पादन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। सूखे और हरे चारे को मिलाकर देना चाहिए, खासकर जब बरसीम की पहली या दूसरी कटाई पशु आहार के लिए की गई हो, क्योंकि इस परिस्थिति में बरसीम के पौधे में प्रोटीन और पानी की मात्रा ज्यादा होती है और इनमें सेल्यूलोज की मात्रा कम रहती है। इस स्थिति में हरे चारे से पशु को अफारा होने की संभावना ज्यादा होती है और कभी कभी बिना पचा हुआ हरा चारा पतले दस्त के रूप में गोबर के जरिए निकलता है। ऐसे में पशु आहार से मिलने वाली ताकत पशु को नहीं मिल पाती है, इसीलिए हर दुधारू पशु के हरे चारे में कम से कम 20% सूखा हरा चारा होना चाहिए। अगर कम सूखा चारा पशु को दिया जाता है तब पशु के दूध में वसा की मात्रा कम होने की संभावना रहती है। जैसे जैसे दिए गए हरे चारे में सेल्यूलोज की मात्रा बढ़ती है तब पशु को सूखे चारे की मात्रा कम कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ दुधारू पशु को पशुपालक संतुलित आहार जरूर दे जिसमें खनिज तत्वों की मात्रा कम से कम 2% हो। इस तरह दुधारू पशुओं को उचित पोषण आहार देकर आप पशुपालन से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।

0: जो बहुत ही कम समय में हमें ज्यादा लाभ देती है। शुगर पान हम मुख्यतः जो है मांस उत्पादन के लिए करते हैं, और शुगर जो है एक बार में 8 से 10 बच्चे देती है, और साल भर में इसका जो पीढ़ी अंतराल है वो बहुत ही कम होता है, तो साल भर में ये 2 बार बच्चे देती है, तो हमें 8 से 10 एक बार में मतलब साल भर में 20 बच्चे के आसपास मिल जाती है, जो 8 महीने में 80 से 90 किलो की हो जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमें एक साल में काफी ज्यादा मात्रा में मांस की उत्पादन होती है, और उसको हम 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफी भारी मात्रा में मुनाफा हमें जो है बहुत ही कम समय में मिल जाती है। तो अगर आप व्यावसायिक नजरिए से देखें तो सुपर पालन के द्वारा बहुत ही तेजी से जो है आर्थिक मुनाफा
1: जी, तो ना सिर्फ आर्थिक लाभ बल्कि इसके साथ साथ देखिए किस तरीके से जो हमारे पशुपालक हैं जो दूसरे पशुओं को पालते हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो काफी फायदा इसमें है, लेकिन कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो विस्तार से यहां डॉक्टर सतीश के साथ हम उनको जानेंगे, समझेंगे और आपको भी बताएंगे यहां पर, लेकिन आइए आगे बढ़े, उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
2: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: शुगर पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है, अगर सही तरीके से शुगर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में भी लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि एक तो शुगर पालन कम लागत में किया जा सकता है, दूसरा इस व्यवसाय की शुरुआत कम जगह में भी की जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इस व्यवसाय से बस एक साल में ही मुनाफा भी मिलने लगता है। शुगर पालन के लिए सबसे जरूरी बात है उपयुक्त जमीन या जगह का चयन। शुगर पालन में उनके रहने की जगह का चयन करते समय शुक्रों के लिए सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रों के लिए घर बनाते समय सर्दी, गर्मी, बरसात, नमी और सूखे से बचाव का ध्यान रखना जरूरी है। शुक्रों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शुक्र बाड़े में घूम फिर सके। इनके रहने की जगह पर साफ सफाई का खास ध्यान रखें। आहार की बात करें तो आमतौर पर बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनाने में शुक्र को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। इसके अलावा शुक्रों की सेहत का भी ख्याल रखें। समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। शुक्रों को मुख्य रूप से शुक्र ज्वर, खुर पका, मुंह पका, शुक्र चेचक और गलघोटू बीमारियां हो जाती हैं। इन रोगों से शुक्रों को बचाएं और समय से टीकाकरण करवाएं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: जो किसान हैं, पशुपालक हैं, देसी नस्लों को अपना रहे हैं जिनका स्वास्थ्य बेहतर माना जाता है, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर?
4: बिल्कुल, देखिए जब अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो मुख्य रूप से दो हैं, एक गाय है और एक भैंस है
1: जी।
4: ये दोनों ही हमारे दुधारू पशुओं की श्रेणी में आते हैं, और गाय और भैंस के बारे में मैं फिर कहूंगा कि भारतवंशी, भारत के लोग और भारत की जमीन बड़ी भाग्यशाली है कि प्रकृति ने हमको, गाय की अगर हम बात करें तो गाय की जो हमारी देसी नस्ल है, जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी नस्लें हैं, वो हमारे देश में पाई जाती हैं
1: जी।
4: ऐसे ही अगर हम भैंस की बात करें, भैंस की भी उत्तम नस्ल की जो मैं बात कर रहा हूं कि नस्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो भैंसों की भी नस्ल हमारे यहाँ पूरे विश्व में सबसे अच्छी है। और साथ ही साथ भैंसों के मामले में तो हम पूरे विश्व में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है
1: जी,
4: और भैंसों का दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे देश में होता है। तो नस्ल का बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ पहले बीच में कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि जो हमारी देसी नस्लें हैं, विशेष रूप से मैं गौवंश की बात करता हूं, लोग ये कहते थे कि गाय रखेंगे तो 2 लीटर दूध देगी, 5 लीटर दूध देगी, ज्यादा चारा खाएगी। ये एक गलत धारणा थी लोगों की। हमारे देश, जैसा कि मैंने मुकुल जी भी बताया कि हमारे पास अच्छी नस्ल की और क्षेत्रवार नस्ल की, अगर मैं बात करूं हरियाणा की तो हरियाणा की अपनी एक हरियाणी नस्ल है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां की एक थारपारकर अपनी नस्ल है
1: जी,
4: अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु, यानी प्रकृति ने हमारी जो भौगोलिक स्थिति है हमारे देश की, किसानों की और पशुपालकों की आवश्यकता अनुसार वो नस्ल दी है। तो आप अपने, मैं पशुपालक भाइयों को हमेशा जब भी बात करता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में पाए जा रहे हो, जहां आप रह रहे हो, उस क्षेत्र

0: एक नस्ल है जो हमको मिली है, चाहे वो गाय की हो चाहे भैंस की हो, तो आप उत्तम नस्ल का अगर पशु रखोगे, उत्तम नस्ल का पशु का मेरा यहाँ तात्पर्य है कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे साहीवाल नस्ल की गाय रखनी है, तो साहीवाल नस्ल की प्योर गाय होनी चाहिए, उसमें साहीवाल नस्ल का खून प्योर होना चाहिए। तो अगर ऐसी नस्ल की गाय रखोगे तो जो 15 लीटर और 25 लीटर की जो बात करते हैं लोग, इन गायों से आपको, आप चाहे गिर ले लो, आप गुजरात की गिर ले लो, 25 लीटर तक दूध देती हैं।
1: जी,
0: यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि आपको अच्छी नस्ल का पशु रखना है। संकर नस्ल का पशु रखना चाहते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिप्ट जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो रखने में कोई फायदा नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से पता करके अच्छी नस्ल का पशु खरीदिए। और अब तो एक अच्छी बात भारत सरकार ने करी है कि भारत सरकार की जो अपनी पशुपालन विभाग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी एक उपलब्धता है कि आपको अच्छा अगर गाय चाहिए तो कहां मिलेगी, अच्छी भैंस चाहिए तो कहां मिलेगी।
1: जी,
0: तो वो सारी जानकारी आपको जो पशुपालन विभाग का जो वेबसाइट है उस पर जाइए, और पशु हार्ट बोलते हैं उसको, हार्ट करके उसका उन्होंने तैयार किया है, तो वहां से आपको जानकारी मिल जाती है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
0: कारण हो सकते हैं, तो उन सारे कारणों का परीक्षण होगा। गाय के जननांग को भी देखा जाएगा, उसका पशु को चारा आप कितना दे रहे हो, वो सब चीजें, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे, तब आपकी समस्या ये सॉल्व हो जाएगी निश्चित रूप से।
1: जी बिल्कुल, देखिए इसका समाधान हो सकता है। और साथ ही यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अभी दुधारू पशुओं में हम बात कर रहे थे, कई तरह की भ्रांतियां हो जाती हैं, ऐसी हम शुक्र पालन के क्षेत्र में भी नजर आती हैं। जो आमजन है उनका मानना होता है कि उनके क्षेत्र में ना होना चाहिए, कई तरह समस्याएं आ जाती हैं, और उस वजह से जो पशुपालक हैं वो कहीं ना कहीं एक दूरी बनती चली जाती है उनकी शुक्र पालन से। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, कैसे उनका समाधान हम कर सकते हैं, और एक वैज्ञानिक ढंग से किस तरीके से सफलतापूर्वक शुक्र पालन किया जाए?
3: वैज्ञानिक ढंग से शुक्र पालन करने के लिए सबसे पहले तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कि किस नस्ल की शुक्र हम पाल रहे हैं। जैसे व्यावसायिक पालन के लिए हम जो जनरली जो है लाभ कमाने के लिए, तो हमारा एक देसी नस्ल की शुक्र है, और एक जो है हमारे जो संस्थान है राष्ट्रीय शुक्र अनुसंधान केंद्र, उसके जो 22 केंद्र है AICRP और मेगा, उसके द्वारा जो है बहुत सारे संकर नस्ल का विकास किया गया है। देसी नस्ल के सुगर होते हैं वो कम बच्चे देती हैं, उसका विकास दर जो है कम होता है, मतलब 8 महीने में वो 40 से 50 किलो तक ही होती है। लेकिन जो संकर नस्ल के सुगर जो विकसित किए गए हैं उनमें वजन जो है 8 महीने में 80 किलो तक पहुंच जाती है। तो ये, लेकिन जो संकर नस्ल के शुगर है उसको पालने में आपको ज्यादा आहार की देने की जरूरत होती है, और उसका रख रखाव थोड़ा सा खर्चीला होता है। लेकिन देसी नस्ल के शुगर हम बैकयार्ड प्रणाली में पाल सकते हैं, और जो किचन वेस्ट होता है उसके द्वारा आप कम खर्च में उसको पाल सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है कम लागत पे शुक्र पालन करना है या थोड़ा अधिक लागत पर ज्यादा लाभ कमाना है।
1: तो यानी कम लागत में ज्यादा मुनाफा हमें मिल सकता है, और उसके लिए जो नस्ल है उसका चयन देखिए काफी महत्वपूर्ण होता है। फिर चाहे आप दुधारू पशुओं की बात करें या इसके साथ साथ जो दूसरे, अगर हम शुक्र पालन की बात करें, इसकी बात अगर की जाए।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: एक AICRP सेंटर है, उसमें जो है एक तो उत्तर प्रदेश की देसी नस्ल जो है गुर्रा है, एक देसी नस्ल है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। उसके अलावा जो है एक संकर नस्ल की शुकर है, लैंडली संकर नस्ल की शुकर विकसित की गई है, जिसमें लैंडरेस और गुर्रा के को मिला के एक नस्ल विकसित की गई। इन दोनों नस्ल को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप शुकर पालन शुरू करते हैं तो उस समय नस्ल आप जो है किसी अच्छे फार्म से खरीदें, ताकि किसी तरह की बीमारी और खराब पशु आपको ना मिल जाए। दूसरी बात यह है बीमारी, शुकर में आजकल जो है बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे आपको क्लासिकल स्वाइन फीवर और अभी अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक बीमारी चली हुई है। इस बीमारी का कोई टीका नहीं है, लेकिन आप अपने फार्म में जैव सुरक्षा का उपयोग करके इसको कम कर सकते हैं। मतलब किसी बाहरी लोगों को अपने फार्म में ना प्रवेश करने दें, और जो है चूने या ब्लीचिंग पाउडर का अपने फार्म पे छिड़काव करें, इस तरह से आप बीमारी को अपने फार्म में होने से रोक सकते हैं।
1: चलिए, तमाम सावधानियां जो है
4: किसान साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: अपना अगर छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, छोटे जानवरों के का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका आपके पास जमीन है, चारे की व्यवस्था है वहां पर, तो आप जैसे हम आज बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की, तो दूध के लिए भी आप जो है गाय रख सकते हैं। भैंस की तो मैं नहीं, श्रीनगर में सलाह दूंगा आपको वहां रखने के लिए। और इसके लिए बहुत अच्छी परियोजनाएं जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की हैं, केंद्र सरकार की हैं और राज्य सरकार की हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीक के जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो आपके यहाँ एक श्रीनगर में कृषि विश्वविद्यालय है, शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में जो पशु संबंधित या पोल्ट्री से संबंधित भी अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करें और आपका जो जो जिस तरह का आपका विचार है या आपके पास जैसी जमीन है या चारा है उसकी सारी बात करके वो आपका प्रोजेक्ट बनवाएंगे। साथ ही साथ जो राज्य सरकार की तरफ से चाहे अगर कहीं सब्सिडी दी जाती है उसकी भी जानकारी देंगे। लोन कैसे दिया जाता है पशुपालन के लिए, क्योंकि पशुपालन को व्यवसाय को इस समय केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही, सभी राज्य सरकारें, खाली श्रीनगर में ही नहीं पूरे देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है, वो अब इसको बहुत बढ़ावा दे रही है। और आप सबको जानकारी भी देना चाहूंगा, बहुत सारे पशुपालकों को इस बात की जानकारी भी होगी, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए यह है कि भारत सरकार ने पहली दफे इतिहास में के हमारे जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, पहली दफे ऐसा हुआ है कि पशुपालन विभाग को बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक अलग ही मंत्रालय है। और इतनी परियोजनाएं पशुपालन इसको व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, जैसे यूसुफ जी कह रहे हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे पशुपालकों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा क्या लोन मिल सकता है वो आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो लोग पशु रखे हैं और उनको उनके स्वास्थ्य के लिए
2: जी
1: फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा है,
2: यानी कई तरह की देखिए सुविधाएं हैं जिनका लाभ आपको मिल सकता है।
1: मैं भी हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी व्यवसाय करिए, चाहे बकरी पालन करिए, सुकर पालन करिए या गऊ पालन करिए, पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लें। तो आपके देखिए एक तो जबलपुर में जो है वहां पर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहां से ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हर जिले में, मध्य प्रदेश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र में आप जैसे पशुपालकों के लिए ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप सिवनी के रहने वाले हैं, सिवनी में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर जाइए, पता करिए और उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, उनको अपनी जमीन कितनी है आपके पास में, क्या व्यवसाय करते हैं, आपकी शिक्षा कितनी है, ये सारी जानकारी देना चाहते हैं उनको देनी होगी। साथ ही साथ आपका रुझान किधर है, क्या आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, क्या आप गऊ पालन करना चाहते हैं, भैंस की डेयरी खोलना चाहते हैं या सुकर पालन करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ में कहां से आपको लोन मिल सकता है इसकी जानकारी वो पूरी प्रदान करेंगे और एक प्रशिक्षण भी देते हैं, एक 8 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। रीति कुमार जी, आप वो प्रशिक्षण लेके अपना बकरी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं
2: जी। और उसके साथ साथ देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है उसकी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, बकरू मथुरा में ये संस्थान है, वहां से भी आपको ये सारी जानकारी हासिल हो सकती है। यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि किस तरह की सावधानी अपनाकर अगर पशुपालक चाहें तो सफलतापूर्वक शुकर पालन भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहां पर चुनौतियां रहती हैं, समस्याएं रहती है, रोगों के बारे में हम बात कर रहे थे और इन दोनों हम देखते हैं कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले सामने आते हैं, वहां पर किस तरह का बचाव किया जा सकता है?
3: जैसा कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी बीमारी अभी अभी पिछले एक साल से भारतवर्ष में आई है
2: जी,
3: ये इसका प्रकोप अभी तक तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सीमित था, लेकिन अब मेनलैंड में भी ये जा रही है
2: जी।
3: तो इसका अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व में इसका कोई टीका नहीं है। तो इसके बचाव का सिर्फ एक ही उपाय है, जैव सुरक्षा। जैव सुरक्षा आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने फार्म में किसी भी आगंतुक को प्रवेश ना करने दें, कोई भी गेस्ट आपका आए आपके घर में रखाइए, आप फार्म में ना जाने दें। बाहर से अब आप पशु खरीद के लाते हैं तो उसको पहले क्वारंटाइन रखें, 21 दिन तक क्वारंटाइन रखें, ताकि उसमें अगर कोई बीमारी का सिम्टम आ रहा है तो उसे मेन पशु के साथ ना मिलाएं। उसके अलावा जो है आप अपने फार्म में जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, पोटास 10 लीटर पानी में जो है 1 ग्राम पोटास मिला के उसका जो है छिड़काव करें और उसका फुट डीप मतलब फार्म में प्रवेश करने के पहले अपने पैरों को उसमें डुबा के उसके अंदर जाएं और पशुओं को छूने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करें और फार्म से निकलते समय भी साफ करें। इसके अलावा जो है अपने फार्म में अगर कोई सूकर मर जाए तो उसे अच्छी तरह से उसको दफनाएं, मतलब 6 फीट गड्ढा खोद के उसके अंदर उस पशु को डालें और उसमें चूना या फिर ब्लीचिंग पाउडर के साथ उसको दफनाएं ताकि उस बीमार अगर किसी बीमारी से वो जानवर मरा है तो वो दूसरे जानवर में ना फैले।
2: चलिए इसके लिए भी बेहद जरूरी जो लगातार हमारे किसान हैं वो सावधानी यहाँ पर बरतें हर स्तर पर, क्योंकि इसके जरिए जो आपके जो दूसरे पशु हैं उनकी आप जान बचा सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आप उनके लिए अपने नजदीक के या तो जो वीडियो हैं उनसे संपर्क करें, और सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है बस्तर का, वहां पर जाएं, उनसे बात करें, अपनी रुचि बताएं कि आप कौन सा व्यवसाय अपनाना चाहते हैं। आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आप बकरी पालन करना चाहते हैं, आप दुग्ध उत्पादन, बस्तर में दुग्ध उत्पादन की बहुत ज्यादा मैं कहता हूं इतनी संभावना है, तो आप दुग्ध उत्पादन करिए, वहां बकरी आप भैंस पालिए, वहां पर देसी गाय पालिए, साहिवाल नस्ल की गाय पालिए, आप वहां पर मोर्रा नस्ल की भैंस पालिए। आप बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन भी जो है, मैं आपको रेणु प्रसाद जी बताना चाहता हूं कि बकरी पालन दो चीजों के लिए किया जाता है, एक जो है दूध के लिए और दूसरा मांस के लिए। बकरी का दूध भी आजकल जो है, बकरी भी जो है ना, दुधारू पशुओं की श्रेणी में आ गई है
2: जी।
1: भले ही 2 लीटर देती है, 2.5 लीटर देती है, लेकिन
2: काफी गुणवत्ता मानी जाती है उसकी।
1: हाँ, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, उसका अच्छा दाम मिलता है आपको
2: जी।
1: अगर आप जैसे किसान भाई, अगर पशुपालक भाई बकरी पालन में आगे आना चाहते हैं, उसका चीज बनाइए, उसका दूध बेचिए। इसके अलावा आप मांस परपज के लिए भी बकरी को पाल सकते हैं, और जबरदस्त इसका मार्केट है, इसका प्राइस बहुत अच्छा मिलता है आपको, और इसमें किसी प्रकार का टैबू नहीं है। बस जरूरत यह है कि आप वैज्ञानिक तरीके से पालिए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तो आपके पास मिल ही गया है कि हो सकता है गर्मियों में, क्योंकि आपके उधर चारे की थोड़ी समस्या होती होगी, और ज्यादातर किसान भाई या पशुपालक क्या करते हैं, सिर्फ भूसा खिलाते हैं गर्मियों में,
2: सूखा चारा
1: देते हैं, हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, या उपलब्ध होता है तो उस क्षेत्र में नहीं होता है। तो एक तो ये है कि चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, कोई भी पशु हो, उसको प्रॉपर ढंग से जितना चारा चाहिए, और खासकर जो भैंस है, आप भैंस पाले हुए हैं तो भैंस के लिए सूखे हरे चारे की एक निश्चित मात्रा चाहिए, साथ ही साथ उसको दाना भी चाहिए, आहार में जो है दाना भी चाहिए, मिनरल मिक्सचर भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो ये सब अगर आप दोगे तो आप जो बता रहे हो वो जो है, हो सकता है उनके अंदर विटामिन ए की कमी रह जाती हो, उसकी स्किन में डिसीज हो जाती है, और भी कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है उनके पेट में कीड़े हों, उस भैंस के पेट में कीड़े हों, तो पेट के कीड़ों की दवा आपने प्रॉपर दी है कि नहीं दी है, यानी इसका जो स्वास्थ्य है वो आहार से भी प्रभावित होता है। अगर आहार अच्छा रखोगे, पानी जो है गर्मियों में पानी कम पिलाते हैं, पानी जो है गर्मियों में पूरा पिलाना चाहिए, और भैंस को तो वैसे भी दिन में 2 बार हम तो कहते हैं कि उसको अगर पानी की उपलब्धता है तो नहलाना भी चाहिए
2: जी।
1: तो ये सब
2: दुधारू पशु के लिए किस तरह का आहार व्यवस्था वो हमें अपनानी होगी, अभी का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए?
1: देखिए, इस समय जो है, अभी जो जैसे बरसात का समय है, तो दो चीजें एक मुख्य रूप से, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि इस समय घास खूब हो रही है जहां बरसात हो गई है, और जानवर को घास चरने के लिए छोड़ देते हैं। अब जानवर क्या करता है कि क्योंकि हरी हरी घास है, अच्छी कोमल घास है, स्वादिष्ट घास होती है, तो उसको ज्यादा खा जाता है, और उसकी वजह से उसके अंदर अफारा की बीमारी हो जाती है। अफारा यानी उसका पेट फूल जाता है, और इसमें जो है जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। दुधारू पशुओं में ये विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो आपको तो ये करना है कि उसको जो है ना एकदम पूरा हरा चारा नहीं देना है, या एकदम सारी पूरा दिन भर उसको नहीं चराना है, उसको समय से जितनी आवश्यकता है, और हरा और सूखा चारा, सूखे चारे में अगर आपके पास भूसा है तो भूसा मिलाइए, सूखा और हरा चारा। और अगर जानवर दूध दे रहा है तो दूध देने वाले जानवर को तो हमेशा 12 महीने चारा हरा भी देना चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर कोई किसान पशुपालन करना चाहता है तो वह कैसे लोन ले सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी और इसमें हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: लोन की पूरी शर्तें आपको देखनी होंगी, उन शर्तों में आप आते हैं और लोन की सुविधा है आपके यहाँ। आपको भी यही करना है कि जो संबंधित विभाग है, पशुपालन सीहोर का जो पशुपालन विभाग है, वहां से संपर्क करिए
3: जी।
2: मदद के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की मदद लीजिए। सीहोर में बहुत अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां के वैज्ञानिकों से बात करके और आपको लोन जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आप गाय रखना चाहते हैं, आपने अभी कहा मैं गाय रखना चाहता हूं, गाय के लिए मिल जाएगा। आप बकरी के लिए रखना चाहते हैं, आप सूकर पालन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में सुकर पालन की भी बहुत अच्छी संभावना है
3: जी, बिल्कुल
2: वो व्यवसाय भी अपना सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं।
3: और साथ ही अगर आपके पास केसीसी है तो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको आसानी से जो ऋण है वो उपलब्ध।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आते हैं
3: जी,
4: तो मध्य प्रदेश में शुकर पालन के लिए अपार संभावनाएं हैं। वहाँ का जो वेटनरी कॉलेज है, वहाँ पहले से ISHP केंद्र चल रहे हैं और वहाँ का शुकर नस्ल जो है सुकर पाल सकते हैं। लेकिन सुकर पालन करने से पहले आपको इसका प्रशिक्षण लेना जरूरी है। प्रशिक्षण के दौरान आपको सुकर पालन के विभिन्न पहलुओं जैसे पोषण, आवास, नियमित फार्म गतिविधियां, सुकरों की बीमारी और हर वर्ग के सुकर का रख रखाव के बारे में जानकारी मिलेंगी। इसके अलावा आपको कहां से जो है सुकर नस्ल उपलब्ध होगा, इसके बारे में कैसे चयन करेंगे और कलिंग करेंगे, ये सारे चीज कैसे कैसे उसका हेल्थ कार्ड है, कौन कौन से टीके उनको किस समय पर देना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये प्रशिक्षण आप जो है वो जबलपुर वेटनरी कॉलेज से आप ले सकते हैं और उसके बाद प्रशिक्षण के दौरान जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके द्वारा आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो है सरकार जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के एक कंपोनेंट के आधार पर जो है आपको 25% तक जो लोन जो है वो जनरल कैटेगरी को मिलता है और 33% जो है SC और ST कैटेगरी को लोन मिल सकता है। तो वो प्रशिक्षण

0: का जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आधार पर आप लोन लेके सफलता पूर्वक जो है ये आप जो है सुकर पालन शुरू कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
2: राजगढ़ से हैं और वो प्रोलैप्स का केस है आपके, उसमें योनि बाहर आ जाती है गाय की, यही जानना चाह रहे हैं ना
1: जी।
2: तो आपको तो उसे पशु चिकित्सक को नजदीक के जो पशु चिकित्सालय है वहां ले जाना पड़ेगा। देसी इलाज मत कराइए क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा हो जाता है। गांव में लोग ज्यादातर इसका देसी इलाज करने में लग जाते हैं। तो मैं आपको यहां से यही सलाह दूंगा कि जो नजदीक का पशु चिकित्सालय है वहां पे ले जाके उसका इलाज कराइए और ये ठीक होने वाली है। कोई बिना ठीक होने वाला बीमारी नहीं है या कोई परेशानी नहीं है।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए ये किस तरीके से आप इसका जो समाधान है वो भी हो सकता है। और साथ ये भी माना जाता है कि जो अगला हिस्सा है अगर आप उसको थोड़ा नीचा रखेंगे तब भी इस तरह की जो समस्याएं हैं वो कम हो सकती हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर पाठक के जानना चाहेंगे आपसे जो हमारा आवास प्रबंधन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे समय में।
2: हाँ बिल्कुल मुकुल जी, अब हम दुग्ध उत्पादन की, पहले हमने नस्ल की बात करी, अब आवास विशेष रूप से आज हम बात करेंगे क्योंकि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पूरे देश में जो है इस समय बरसात हो रही है, चाहे हमारा उत्तर क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण क्षेत्र हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, सब जगह। तो पशुओं के लिए आवास बहुत महत्वपूर्ण है और अगर अच्छा आवास नहीं है, अच्छे आवास का यहाँ तात्पर्य है कि आवास ऐसा होना चाहिए खासकर बरसात के दिनों में कि जहाँ पशु जो है का जो पानी है बरसात का वो अंदर नहीं जाए, पशु को वहां भीगने नहीं दे, पशु ऐसा नहीं हो कि बाहर खड़ा है। तो आवास में हवा जानी चाहिए, प्रकाश जाना चाहिए उसके अंदर जो है, साथ ही साथ जो आवास हो उसमें क्योंकि पशु वहां रहेगा, दिन में भी रहेगा रात में भी रहेगा, तो वहां पर जो गौ और जो जो उसका गोबर और मूत्र है वो वहां इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यानी आवास का जो फर्श है पशु का वो फर्श ऐसा होना चाहिए ढलान वाला, ज्यादा ढलान का भी नहीं होना चाहिए लेकिन वहां ये चीज इकट्ठी नहीं हो, वहां पेशाब पशु का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, गोबर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए और खिड़कियां विशेष रूप से, जैसे आप हवा चलती है कुछ बरसात में जो बरसात आती है बरसात में तो हवा की बौछारें आती हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वहां अंदर जो है आपने दरवाजा तो बंद कर दिया है लेकिन खिड़कियां खुली हुई हैं और खिड़कियों से बौछार जा रही है, पशु भीग रहा है, एक तो ये बात। दूसरी बात, जब हम आवास की बात करते हैं तो दो चीजें और ध्यान रखनी है आपको। पहला तो जो ज्ञावन पशु है जो एडवांस स्टेज में है, जो 6 महीने से ऊपर के जिनकी वो
1: गर्भकाल हो चुका है,
2: ज्ञानकाल हो चुका है, उनका आपको ध्यान रखना है कि जो आवास है वो ऐसा रपटन वाला नहीं होना चाहिए जहां पशु रपट के गिर पड़े क्योंकि उसको चोट लग सकती है, उसका एबॉर्शन हो सकता है। दूसरी बात, जो बड़े पशु हैं उनको अलग रखें, जो छोटे पशु हैं, छोटे पशु का मेरा मतलब यहाँ पे उन पशुओं से है जो बच्चे दूध पीते हैं, जो गाय और भैंस के बच्चे छोटे हैं जो उनके दूध पर निर्भर हैं, उनके लिए भी आवास ऐसा करें कि वो भीगे नहीं क्योंकि भीगने से छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है और उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
1: तो जो नवजात हैं उनके भी स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना होगा,
2: उनका भी स्वास्थ्य रखना है। तो आवास ऐसा हो जिसमें पशु पूरी तरह से स्वच्छता के साथ रह सकता हो और किसी तरह का वो भीगे नहीं। एक चीज और ध्यान रखिए, बरसात में जो है क्योंकि आजकल बिजली गिरने के बहुत केसेस हो रहे हैं, आपने देखे होंगे, तो कभी कभी पशुपालक भाई क्या करते हैं, पशु को जो है शाम को जो है किसी नीम के पेड़ से या कहीं बांध देते हैं, वो काम मत करिएगा और वो पशु जो है उसमें रात भर भी अगर बिजली नहीं गिरेगी तो रात भर पशु भीगता रहता है, तो सवेरे देखेंगे तो पशु जो है बीमार हो जाएगा या उसका दूध उत्पादन तो निश्चित रूप से घट जाएगा। तो इस तरह का अगर ध्यान रखेंगे और आवास जो है अच्छा रखेंगे तो आपकी जो उत्पादकता है, जो दूध उत्पादन है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: है थोड़ा पीलापन का आ रहा है और अगर थोड़ा गाढ़ा भी आ रहा है तो ठीक है, 4-5 दिन तो जो है जिसको हम कहते हैं ना कि जो कोलेस्ट्रम उसमें आता है तो वो आप जो है उसको दूध को वो मत मानिए, लेकिन अगर उसके अंदर दूध के साथ में अगर वो आ रहा है, खून आ रहा है या और कुछ चीज आ रही है तो आपका चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ, और देखिए साथ में उनके जो थन है उनमें किसी प्रकार की कोई सूजन तो नहीं है, जो उसके थन है चारों जो टीट्स हैं उनको देखिए, साथ ही साथ जब दूध निकाल रहे हैं तो उसमें नरेंद्र जी थोड़ा ध्यान रखिए कि जो है अब क्योंकि आप बिहार में बरसात खूब हो रही है तो वहां पर गंदगी में नहीं रहनी चाहिए गाय, और साथ ही साथ जब दूध निकालने से पहले थोड़ा पानी, अच्छा पानी लेके साफ पानी से उसका थन धोइए, इसके बाद कपड़े से साफ करिए तब दूध निकालिए।
1: जी बिल्कुल। और गाय अगर देखिए पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो नवजात के लिए जो इस वक्त आप बता रहे हैं जो दूध की परिस्थितियां हैं वो काफी अच्छी मानी जाती हैं।
2: हाँ, वो दूध तो अच्छा है उनके लिए,
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी देखिए इससे काफी बेहतर रहती है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे थे दुधारू पशु में आवास को लेकर, लेकिन शुक्र पालन की अगर बात की जाए तो आवास को लेकर भी अलग अलग तरह की धारणाएं शुक्र पालन में आ जाती है। कई जगह जो दुर्गंध का विषय है वो सामने आ जाता है पशुपालकों के, लेकिन किस तरीके से एक अगर वैज्ञानिक ढंग से हम बात करते हैं तो किस तरह का आवास इसके लिए हमें तैयार करना होगा?
0: शुक्रों का आवास मुख्यतः जो है शुक्रों की संख्या और उसकी पूंजी पर निर्भर करता है।
1: जी
0: जनरली जो है जब हम शुक्र पालन करते हैं तो जो आवास पर जो है 20% खर्च होना चाहिए। आवास जो आप बनाइए वो एक ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जो कि सड़क से जो है पूरी साल के लिए जुड़े होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है उसके लिए आहार जो लाना होगा जो और पानी और बिजली की आपूर्ति जो है उसमें साल भर होनी चाहिए। शुक्र जो है ठंड और गर्मी दोनों से जो है बेहद संवेदनशील होते हैं और विशेष करके जो संकर नस्ल के सूकर आप पालेंगे वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। तो आपको जो उसका आवास बनाना है वो मौसम के अनुकूल होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, सीधा धूप उस पर नहीं पड़ना चाहिए और बारिश से जो है पर्याप्त संरक्षण दे, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसको भोजन और पानी का जो पर्याप्त उपलब्धता वहां पर होना चाहिए। वैसे जो है जो बैकयार्ड सिस्टम में जो सूअर पालते हैं उसमें जो है आप जो है जो परंपरागत रूप से जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री है जैसे बांस हो गया, लकड़ी हो गया या ईंट हो गया उसके द्वारा भी आप घर बना सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर जो है हर वर्ग के सूकरों के लिए अलग अलग आपको बनाना है। जैसे फिर जो आपका पिगलेट है छोटे सूकर है उसके लिए अलग, जो आप प्रेग्नेंट सूकर है उसके लिए अलग बाड़ा बनाना है ताकि वो जो है अपने बच्चे को कुचल ना दे। इस तरह से सबके हर सूकर के लिए अलग अलग आपको जो है बाड़ा बना के तैयार करना है ताकि सारे सूकर अपने आवास में आनंद मतलब अच्छे से रह सके।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आप रेडियो आपकी बातें।
2: जो है पतला गोबर आने लगता है तो एक तो वो जरा टेस्ट करा लिए, इसके अलावा भी क्योंकि अब वैसे एक महीना हो चुका है अब नहीं होना चाहिए, एक महीने के बाद भी कभी कभी गायों के अंदर जो है ये देखा गया है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है आंतों में या किसी तरह से, या आपका जो भोजन का में कोई चेंज किया है आपने तो वो भी परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन पेट के कीड़ों की ज्यादा चांसेस हैं तो अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है तो दवा दिलवा दें और दवा भी अपनी मर्जी से नहीं दें, जो डॉक्टर जैसा कहे दीपक जी उस हिसाब से उनको दवा दीजिए।
1: जी देखिए बेहद जरूरी, जो पशु चिकित्सक हैं पहले आप उनसे जरूर संपर्क करें उसके बाद उन्हीं की सलाह पर ही जो उपचार है उसकी शुरुआत करें। यहाँ डॉक्टर सतीश आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कई तरह की जो बीमारियां हैं वो शुक्र पालन में आ सकती हैं अगर हमारे किसान पशुपालक जो है अनदेखी करते हैं तो, लेकिन अगर पूरी तरीके से प्रबंधन अच्छे से अपनाया जाए तब भी किस तरह की जो समस्याएं हैं आ सकती हैं और उनका निदान कैसे किया जाए जिससे सफलतापूर्वक शुक्र पालन हो सके?
0: शुक्र पालन में जो है बहुत तरह की बीमारियां होती है लेकिन उन बीमारियों को आप प्रॉपर अच्छे प्रबंधन के द्वारा जो है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि जो शुक्रों को समय पर जो है टीकाकरण करें, इसमें शुक्रों में जो मुख्य बीमारियां जो है एक तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है शुक्र जो है, उसके अलावा खुरपका और मुंहपका रोग है और एक बोरसाइन सर्को वायरस है। इन तीन रोगों के लिए जो है टीकाकरण जो है जनरली जो है जब माँ से बच्चे को अलग करते हैं उस समय जो है क्लासिकल स्वाइन फीवर का टीका देते हैं और हर 6-6 महीना पर जो अंतराल पर उसका बूस्टर डोज देते हैं। उसके अलावा ये जो बाकी जो दो टीके मैंने बताए उसका भी करें। इसके अलावा जो कई तरह के परजीवी होते हैं उसके लिए जो कृमि नाशक का उपयोग जो है हर 6-6 महीने पर जो है शुक्रों में करना चाहिए। इसके अलावा जो है शुक्रों को जो पिगलेट होते हैं उसमें आयरन की बहुत कमी होती है तो उसको जन्म के 4 से 14 दिन के अंतराल चौथे दिन और 14वें दिन जो है आयरन डेक्सट्रान का इंजेक्शन दिलवाना चाहिए ताकि उसमें जो है एनीमिया की बीमारी ना हो। तो ये और इसके अलावा जो शुक्र में जो है मां से बच्चे को जो है 42 दिन के बाद जो है अलग कर देना चाहिए। अगर आप माँ से बच्चे को अलग नहीं करेंगे तो वो फिर से गर्मी में नहीं आएगी, और गर्मी में नहीं आएगी तो बच्चे फिर से देने के कंडीशन में नहीं आएगी। तो अगर आपको ज्यादा मुनाफे कर रहे हैं तो इस तरह से जो है माँ से बच्चे को जो है वीनिंग के बाद जो है अलग कर देना चाहिए।
1: चलिए, इन बातों का ख्याल हमारे जो शुक्र पालक है उनको रखना होगा, और उसके बाद देखिए उनका जो ना सिर्फ लाभ जो है वो बढ़ सकता है बल्कि आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर सतीश, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो यहाँ डॉक्टर सतीश हमें जानकारी दे रहे थे, खासतौर से डॉक्टर पाठक अगर टीकाकरण की बात की जाए तो उतना ही महत्वपूर्ण हमारे दुधारू पशुओं के लिए भी है, क्या इसमें आप जोड़ना चाहेंगे?
2: देखिए बिल्कुल, पशुओं का टीकाकरण बहुत आवश्यक है, खासकर दुधारू पशुओं में तीन बीमारियां मुख्य रूप से, देखिए खुरपका मुंहपका FMD बोलते हैं, एक हिमोरेजिक सेप्टीमिया HS बोलते हैं, और ब्लैक क्वार्टर BQ। इन तीनों का वैक्सीनेशन जिन पशुपालक भाइयों ने अपने पशुओं का करा रखा है दुधारू पशुओं का, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं कराया है वो जल्दी से जल्दी अपने पशुओं का टीकाकरण इन तीनों बीमारी को लेकर करा लें। ये टीका जो है सभी पशु चिकित्सालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, बस सिर्फ आपको यह करना है कि अपने पशु को वहां पशु चिकित्सालय के पास लेके जाना है। साथ ही साथ जो है जिन्होंने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है अपने पशुओं को, जरूरी नहीं, मैं खाली दुधारू पशुओं की बात नहीं कर रहा, सभी पशुओं को अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा नहीं पिलाई है तो वो भी दवा पिला लीजिए। और जो दूध देने वाले पशु हैं जिनसे आप दूध ले रहे हो, गाय या भैंस है, उनमें मस्टाइटिस थनेला रोग जो है इन दिनों काफी होता है, उसके बचाव के लिए जरूरी है कि आप अपनी जहां भी पशु का आवास है उसको साफ रखिए, वहां गंदगी मत होने दीजिए, और दूध जब भी निकालें तो स्वच्छ बर्तन में निकालिए और साफ पानी से पशु का थन धोकर दूध निकालिए। और आखिरी बात कि पशु को दूध निकालने के आध घंटे तक नीचे मत बैठने दीजिए ताकि उसको थनेला रोग जो है होने के चांसेस नहीं होंगे।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए जो मूल मंत्र हो यही, अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वास्थ्य बेहतर आपके जो पशु है उसको मिल सकता है, साथ ही जो मानव स्वास्थ्य है वो भी इससे जुड़ा रहता है, तो ये जरूरी कि आप इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल डॉक्टर केमल पाठक जी, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
4: तो जी हाँ किसान साथियों, जैसे आपने जाना भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, विपरीत विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमारे पशु बीमार हो जाते हैं और उन स्थितियों में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कहां हमें इसका इलाज करना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियां इनमें आ सकती है, इनके रख रखाव में आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आज के खेती बाड़ी प्रोग्राम में आपने जाना। किसान साथियों, रेडियो टाइमटेबल 90.8 FM झाबवा की आवाज़ आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ साझा करेगा, परंतु अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ तो रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM के साथ छवा की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्याबिल, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्या भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। डॉक्टर मनीष कुमार साहब आज के टैलेंट हैं, आज की प्रतिभा हैं, आज के गायक हैं, हमारे ही आपके ही सभी के आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर मनीष का बहुत बहुत आभारी हूं, स्वागत करता हूं उनका। वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर, और आपसे बस हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे सारे सुनने वालों को, जो भी हमारे आज के कलाकार प्रोग्राम के फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए ना, आप कहाँ हैं, भला क्या करते हैं आप?
1: ओके, सबको मेरा नमस्कार। एसएम रेडियोस जो है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया एज ए गेस्ट। अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं वैसे, मेरा जन्म तो गाजियाबाद में हुआ था, दिल्ली के पास, 1959 दिसंबर का हूँ मैं, और वहां से मैंने प्लस वन तक की पढ़ाई, मेरे फादर वहां पर इंजीनियर थे, तो वहां पर प्लस वन की पढ़ाई के बाद हमारा जो प्रांत है, जो हम केरल के रहने वाले हैं, मेरे फादर पेरेंट्स वगैरह, तो जब मेरे फादर वापस केरल आना चाहते थे मेरी 11वीं के बाद, तो हम भी आ गए, और यहाँ पर फिर मैंने अपना कॉलेज वगैरह कंप्लीट किया, 5 years ऑफ कॉलेज पीजी किया 81 में। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में मैंने पीएचडी की, और उसके बाद फिर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में 2 साल। उसके बाद वापस मैं कैलिकट में आया, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में लेक्चरर करके ज्वाइन किया, और काफी साल हो गए हैं, मैं रिटायर हो चुका हूँ अब, 66 कंप्लीट कर लिया है मैंने। और अभी मतलब ये है कि उन जमाने में कैरियर था, रिसर्च था, बच्चों की पीएचडी डॉक्टरेट्स कंप्लीट करवानी थी, तो टीचिंग और रिसर्च में मेरा कैरियर निकला, लेकिन गाना मेरा बचपन से ही शौकीन रहा है, शौक रहा है, तो फिर मैंने रिटायरमेंट के बाद फिर से घर पे गाना शुरू किया, और कराओके यू नो ट्रैक्स में गाना शुरू किया, कई प्लेटफॉर्म्स पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह उसको लाइक करने लगे,

0: तो फिर मैंने ये मतलब एक रूटीन सा बना लिया कि हाँ भाई जब भी मूड बना तो एक दो गाने गा लिए, रिकॉर्ड कर लिए, और कभी कभी स्टेज प्रोग्राम्स भी कर लेता हूँ। तो यही है आज तक का सफर, बताइए।
1: बहुत बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, आपने जाना कि डॉक्टर मनीष कुमार ओरिजिनली केरल से बिलोंग करते हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि टाइम एंड अगेन जितने भी हमारे टैलेंट से हमारी बातचीत हो रही है, उसमें बहुत बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद अपने इस पैशन को फॉलो करने लगे हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने कहीं पढ़ा भी था, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट इफ इट ऑल वी कीप ऑन लर्निंग थिंग्स वी नेवर गेट ओल्ड। हमारा ब्रेन जो है वो इलास्टिसिटी रहती है उसकी, तभी कहा जाता है कि अगर उम्र मतलब थोड़ी सी बढ़ जाए तो स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक, स्टार्ट लर्निंग इंस्ट्रूमेंटल सम इंस्ट्रूमेंट, स्टार्ट लर्निंग सम न्यू लैंग्वेज, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन शुड कीप ऑन यू नो बी वर्किंग ऑन इट। सो
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: बहुत ही प्यारा सा येट अनदर हमारे सामने एग्जाम्पल है मनीष कुमार साहब। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए इनके संगीत का भी मजा लेते हैं जो इनको बचपन से पसंद था, लेकिन गायकी अभी शुरू हुई। आइए सुनते हैं।

0: बहुत खूब। डॉक्टर मनीष, आपने कहा कि आपने रिटायरमेंट के बाद गाना शुरू किया करियो के ट्रैक्स पर, अच्छा हुआ। सो हम सभी सुनने वालों को ये एक दिमाग में पिक्चर अभी राइट नाउ बन गई है कि आप सक्सेसफुली आपने काम किया प्रोफेशनल लाइफ में और उसके बाद रिटायर हुए, बट टायर्ड नहीं हुए और आपने गाना शुरू किया। लेकिन आपके बचपन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है इस बात से, तो चलिए आपके साथ आपके बचपन में चलते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, बचपन में हर बच्चा ऑलमोस्ट यू नो 99% बच्चे, तो कोई एक आध परसेंट बच्चा एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बचपन में सारे बच्चे बहुत भयंकर शरारती होते हैं। मुझे उम्मीद है आप भी रहे होंगे। तो बचपन की सबसे कोई मजेदार सी शरारत बताइए, कोई शानदार शरारत जहां पर आपने की हो, फिर पापा मम्मी दोनों खूब गुस्सा हो गए हो। लेकिन शरारत तो शरारत है, वो तो क्यूट ही होती है, बताइए ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बचपन में क्या था सीन कि मैं मतलब काफी अच्छा अपने टीचर्स को, अपने जो नेबर्स जो आंटी अंकल वगैरह होते थे, कईयों के घर में जाता था, तो उनको मैं उनकी नकल बहुत अच्छी कर लेता था, मतलब मिमिक्री की तरह बचपन में ही कर लेता था। डांस मैंने बचपन में सीखा हुआ था, गाना भी थोड़ा कुछ गाना और बाजा बजाना मतलब हारमोनियम वगैरह सीखा था, गिटार थोड़ा आता था, हवाइन गिटार। तो मतलब कॉलोनी में बहुत हम लोग गांधीनगर में रहते थे गाजियाबाद में, तो वहां पर मैं काफी पॉपुलर था अपनी कॉलोनी में, सब लोग मुझे बुलाया करते थे गाने के लिए, कभी डांस करने के लिए। और कभी कभी क्या होता था कि जो नेबर्स के एक नेबर दूसरे नेबर का मतलब कभी कभी इस तरह से वो एंजॉय कर जाते थे, तो मैं कभी कभी अपने नेबर्स के घर में जाता था, वहां का जो सीन होता था, कहीं शादी हो रही है, कहीं सगाई हो रही है, किसी का बर्थडे चल रहा है या कोई गेस्ट आया हुआ है, तो वहां पर जो जो जो जो सीन जो बन जाता था, मैं बहुत ऑब्जर्वेटिव रहा करता था, तो मैं उसको एकदम अपने मन में उसको उतार लेता था। और मेरी नीचे की जो आंटी थी वो मुझसे पूछती थी, मनीषा हाँ भाई वहां पर क्या हुआ, कुछ हाल वाल सुनाओ, तो मैं कभी कभी इस तरह से उनको इमिटेट करता था। हर मतलब पड़ोस वाले जो मेंबर है जिनके घर में मैं गया और जहां पर कोई भी इवेंट हुआ हो, तो मैं हर चीज को, जैसे अंकल हो, आंटी हो, वहां की दीदी हो, उन सबको मैं इमिटेट करता था। तो ये लोग बहुत मतलब उसको पसंद करने लगे मेरे इस चुटबुले और इस व्यवहार से। लेकिन कभी कभार मेरे पापा के कान में खबर लग जाती थी कि हाँ भाई ये दोस्तों को का मजाक उड़ाता है कभी कभी, मतलब बड़े इनोसेंस में करता था, तो पापा भी कभी कभी डांट दिया करते थे, नहीं ऐसा नहीं करना। तो फिर नीचे वाले अंकल कहते थे नहीं नहीं नहीं नहीं, ये तो टैलेंट है इसका, तो इसको आप बिल्कुल मतलब कंट्रोल नहीं कीजिए, इसको डांटिए मत, इसको करने दीजिए। और ऐसे करते करते करते मैं रेडियो बहुत सुनता था, आकाशवाणी से मतलब रेडियो से लगा रहता था, तो मोहम्मद रफी का, पहले तो मेरी आवाज बहुत पतली थी, बिल्कुल लता जी की आशा जी के गाने गाता था, तो बहुत पसंद करते थे लोग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्यूबर्टी के बाद वो जो गला क्रैक हो जाता है, वॉइस चेंज हो जाती है, तो फिर उसके बाद मैंने मोहम्मद रफी के गाने, और रफी साहब का तो मैं दीवाना था, तो गाने गाता था। तो इस तरह मतलब ये सिलसिला चलता रहा, हंसी मजाक चुटकुले और गाने बजाने का सब चलता रहा, और मतलब सारे नेबर्स मतलब दे वर क्वाइट यू नो हैप्पी अबाउट इट एंड दे यूज्ड टू लाइक इट आल्सो।
0: वाओ,
1: तो यही था बचपन का सीन।
0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों सुना किस तरीके की शरारत, यानी कि आसपास के लोगों की मिमिक्री। हम लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, अपने अंदर झांकिए ना, पता चलेगा। चलिए तब तक आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मनीष सर की आवाज में, जो उन्होंने हमारे लिए गीत रिकॉर्ड किए, उनका भी मजा लें और फिर आते हैं मनीष सर के पास।

0: बहुत सुंदर। अब देखिए,
1: ओके,
0: शुरुआत हुई आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पैशन को परस्यू करने की, फिर हमने आपके बचपन के बारे में भी जान लिया। अब थोड़ा सा हमें अपने संगीत के बारे में बता दीजिए। फर्ज कीजिए आपको एक स्टेज परफॉर्मेंस करनी है और सामने ऑडियंस में लता मंगेशकर जी बैठी हैं, आशा भोसले जी बैठी हैं, मोहम्मद रफी साहब बैठे हैं, किशोर कुमार साहब बैठे हैं, मनडे साहब बैठे हैं, तलत महमूद साहब बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, और इन सब ने आपको चिट्ठी पर लिख के ये दिया है कि हम सब लोगों को छोड़ दीजिए, हम यहां पर आपका गाना सुनने आए हैं, आप अपने पसंद के किसी एक सिंगर को बुलाइए, हम में से नहीं, हमारे से अलावा। तो किस सिंगर को आप स्टेज पे बुलाएंगे और उसके साथ आप गाना गाना चाहेंगे?
1: ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है समीर जी। वैसे मुझे ये जो जो बॉलीवुड के जो प्लेबैक सिंगर्स हैं ये तो बहुत पसंद है ही है, लेकिन यहाँ पर साउथ में आने के बाद मुझे यशुदास जी का गाना बहुत बहुत ही भाया है। वैसे वो हिंदी में भी गा चुके हैं और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने पहली बार हिंदी में अपना मतलब कदम रखा था, तो सलील चौधरी जी के म्यूजिक में उन्होंने गाया था। तो यशुदास जी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ की एस जानकी जो हैं, जो ऑलमोस्ट लता जी की जैसी आवाज है, और आशा जी के उन्होंने भी हिंदी में गाए हैं गाने बप्पी लहरी जी के निर्देशन में, तो ये सब दो तीन कलाकार यहाँ के जो हैं, एस पी बालासुब्रमण्यम, ये सब मुझे बहुत पसंद है।
0: तो आप किसको बुलाना चाहेंगे स्टेज पे?
1: बुलाने के लिए मतलब यशुदास जी के साथ भी गाना बढ़िया रहेगा, क्यों नहीं?
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्या बात है, यशुदास साहब के साथ गाना, आई मीन अ ड्रीम कमिंग ट्रू वाली बात हो जाती है। इतना लेजेंडरी माहौल होगा दोस्तों, जरा एक बार विचार करके तो देखिए, इट्स वेरी वेरी हाई, मजा आ जाएगा। चलिए तब तक मनीष सर की आवाज में ये गीत सुनते हैं और इमेजिन करते हैं कि यशुदास साहब उनके पीछे खड़े हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। वाओ,
1: ओके ओके।

0: बहुत खूब, अमेजिंग। चलिए, आपके म्यूजिक की बात हो गई, अब थोड़ा सा आपके शख्सियत के बारे में बात करते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी चरित्र के बारे में, आप कौन हो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जिंदगी अगर एक फिल्म होती तो उसका नाम क्या होता?
1: वैसे ये तो जरा मुश्किल सवाल है
0: जी।
1: वैसे वैसे मुझे ना लेक्चर्स मतलब आई वांटेड टू बिकम ए टीचर।
0: यू आर अ टीचर सर।
1: या आई एम ए टीचर ऑफ कोर्स। या नो द थिंग इज मुझे ना मेडिसिन में बीएससी के मार्क्स जो उस जमाने में यहाँ पर केरला में ये नीट एग्जाम्स नहीं होते थे, प्लस टू के मार्क और प्लस थ्री के मार्क के हिसाब से एडमिशन मिलता था। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बीएससी कंप्लीट किया तो मेरे मार्क बहुत अच्छे थे और मेरे फादर के इंसिस्टेंस पर मैंने मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया और मुझे मिल भी गया, मतलब सीट मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि मुझे ना मैं बहुत थोड़ा सा क्या कहते हैं नाजुक मिजाज इस तरह है कि जैसे ही ब्लड वगैरह देख लिया तो मेरा सिर चकराने लगता था। तो मैं डिग्री में मैंने जुआलॉजी ली थी, तो कभी कभार क्या होता था डिसेक्शन करते समय एक आध बार जब फ्रॉग का डिसेक्शन करते थे तो एक दो बारी उनका जो वेनिकावा जो होता है जो मेन वेन होती है जो उनके वेंट्रल साइड पे, हाँ, तो उसमें मेरा पंक्चर सा हो गया और मेरे ट्रे में कंप्लीट खून आ गया था, मतलब फ्रॉग का ब्लड आ गया था। तो मैं एकदम फेंट कर गया, ये दो तीन बार हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई मेडिसिन तो मेरे लिए ठीक नहीं है और वैसे भी मैं क्लासेस वगैरह मुझे मतलब टीचिंग बहुत पसंद था। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे एडमिशन का कार्ड मिला नहीं, घर वालों को नहीं बताया, मेरे पापा दिल्ली में थे उस टाइम तो उन्हें पता भी नहीं चला। और फिर मैंने जाके कॉलेज में अपना पीजी का एडमिशन मैंने कंप्लीट किया, मतलब फिर मैं गया नहीं। तो ये एक मतलब बहुत ही अनोखा सा इंसिडेंट है। लोग तो मेडिसिन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे मिला लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। लेकिन एमएससी के बाद फिर डॉक्टरेट करके पोस्ट डॉक्टर रिसर्च करके मुझे वही मिला, मतलब मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी जॉब मिली, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में था, वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था 6 साल। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड और गिफ्टेड मानता हूँ कि ये जो कहते हैं ना कि अपना प्रोफेशन और जो हमारा पैशन है ये दोनों अगर एक हो जाएं तो फिर इससे ज्यादा मतलब किस्मत क्या हो सकती है। तो ये मेरे लाइफ में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। लेकिन

0: तो इस तरह से वो गाना जो है, और हिंदी जो मुझे बहुत अच्छी आती है, मेरी मदर टंग के बराबर ही है, मतलब केरल में आके ही मैंने मलयालम सीखी। लेकिन ये जो है ना सिलसिला गानों का, ये क्लासेस लेने का, ये सब चलता रहा। और सफर जब खत्म हुआ उसके बाद भी मैंने काफी मतलब डिपार्टमेंट में जाके एक्सटेंशन लेक्चर्स लिए हैं। तो ये सब मतलब किस्मत ही है और क्या।
1: सर, आपने बहुत खूबसूरती से मेरे क्वेश्चन को उड़ा दिया। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो उसका नाम क्या होता, वो नहीं बताया आपने।
0: वैसे नाम तो ये, इसका जवाब तो मुश्किल है समीर जी। मतलब क्या नाम रख सकते हैं, मतलब आई एम ए वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड पर्सन। अभी भी आपने जो अभी बात कही थी ना म्यूजिक के बारे में, ये जो म्यूजिक से जो कनेक्शन है मेरी जिंदगी का, वो अभी बरकरार है। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, इलास्टिसिटी, उसको हम बोलते हैं टेक्निकली न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, ये कहते हैं कि जब कोई गुनगुनाए गाना या कोई गाना गाए, तो उसके पूरे के पूरे ब्रेन को, मतलब कॉर्टिकल रीजन जो होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जहाँ पर सारे वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, ये जो कॉर्टिकल रीजन है, ये कम्प्लीटली लाइट अप हो जाता है। मतलब पेट स्कैंस बोलते हैं उसको, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। पेट स्कैंस में अगर कोई गाए या गुनगुनाए, तो उसका पूरा का पूरा एरिया जो है ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तरह से एंटी एजिंग है मेरे लिए। मैं बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, योगा करता हूँ 30-40 सालों से। और गाना जो है मेरे लिए एक मेडिसिन की तरह है, एक मेडिटेशन की तरह है। और यही होगा, अब इसी से जोड़ लीजिए कोई, अगर आप मेरे बायोग्राफी का नाम देना चाहें तो।
1: ऑल राइट दोस्तों, चलिए आप विचार कीजिए और डॉक्टर साहब आप भी विचार कीजिए कि कौन सा टाइटल हो सकता है आपकी मूवी का। और तब तक हम लोग आपके गीतों का मजा लेते हैं, तब तक हम विचार करते हैं, फिर विल कम बैक टू यू ऑन दिस। बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल डॉक्टर साहब, आपने बात करी, आपने पीएचडी की, और थोड़ा सा शायद आपने जिक्र किया, इफ एट ऑल आई एम नॉट रॉन्ग, इफ एट ऑल आई हैव हर्ड करेक्टली, कि आपने अपने बच्चों को भी पीएचडी वगैरह कराई शायद, एम आई राइट
0: हाँ
1: सर?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ
1: तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा एकेडमिक्स में इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है, और मतलब बिल्कुल ही साधारण भाषा में कहें तो प्रबुद्ध और शिक्षित लोग, करेक्ट सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वाह, तो जाहिर सी बात है, मैं ये भी मानता हूं कि आप सारे के सारे लोग, पूरा घर बार, मतलब सभी लोग हर समय, मतलब ज्यादातर बुक्स में रहते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, कितना अच्छा माहौल दिखता होगा घर में। सो अपने कोई भी एक नॉन फिक्शन, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं सर, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं सर, बिल्कुल अलग नॉन फिक्शन कोई फेवरेट बुक का नाम बताइए ना।
0: अच्छा, बहुत ही, मेरी बहुत ही फेवरेट जो नॉन फिक्शन बुक है, जो मैंने रिसर्च के दौरान पढ़ी थी, वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। योगानंदा परमहंस जी का जो जो किताब है, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। उसने समझिए मेरी मेरी मेरी जो लाइफ की जो दिशा जो है, उसको चेंज कर दिया था। मैंने जैसे रिसर्च में मैंने ज्वाइन किया, तो किसी ने मुझे ये ला के दिया, फिर मैंने इसको पढ़ा। और मुझे मतलब ये जो योगिक सिस्टम जो है, इसमें मैंने योगा सीखा। बचपन में मैं करता था, मेरे को, मैं वहां पर एक अद्वैत आश्रम था हमारे गाजियाबाद में, वहां से थोड़ी सी शिक्षण मिली थी। लेकिन यहाँ पर भी मैंने 2-3 योगा कैंप्स किए, और मतलब उसमें सीखा काफी। और मतलब 1984-85 से लेकर आज तक, समझ लिए 40-42 ईयर्स हो गए हैं, मैंने अभी तक उसको छोड़ा नहीं है। तो ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो, ये किताब जो है, इसने समझ लीजिए मेरी जो लाइफ को एक डायरेक्शन दिया। और मैं थोड़ा सा मतलब बायोलॉजी तो अच्छे खासा ट्रेन था ही एकेडमिक्स में, लेकिन थोड़ा योगा से क्या हुआ, साइकोलॉजी थोड़ा समझना चालू किया, फिर साइकोलॉजी से थोड़ा फिलोसफी समझना चालू किया, और फिलोसफी से क्या हुआ, कहते हैं कि वेयर साइकोलॉजी एंड्स फिलोसफी स्टार्ट्स, एंड वेयर फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। तो स्पिरिचुअल, आई वॉज काइंड ऑफ लॉन्च्ड इन टू ए जर्नी ऑन स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म इज अ वेरी वेरी

0: very broad term, and I believe that my path towards self-realization, shall I say that, began with that book. So it has influenced me a lot, and I think my life has taken a very beautiful turn because of this book. तो हो सकता है कि मेरा जो झुकाव जो था थोड़ा सा स्पिरिचुअल रेलम में था, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो ट्रेनिंग जो बायोलॉजी में मिला, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो पीएचडी की, उसके बाद काफी मिस्टिसिज्म मेटाफिजिक्स वगैरह सीखा, मतलब बायोलॉजी और सब्जेक्ट के अलावा भी मैंने इस एरिया में थोड़ा सा रिसर्च भी किया. और फिर ये क्या होता है कि जो हमारे जो पंचेंद्रिय होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, उसको अंदर की तरफ लाना और अपने आप को समझना, ये एक दूसरा ही टोटली डिफरेंट साइंस है. और कई लोग तो इसको इसमें विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये जो जर्नी जो है, मुझे लगता है हर ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वो जो जर्नी अभी भी चल रही है, बहुत ही बढ़िया चल रही है, और जो एक आत्मसंतृप्ति जो मिलती है वो बिल्कुल मिल रही है समीर जी.
1: राइट सर, थैंक यू। आइए दोस्तों, तो मनीष जी के गीतों का आनंद लें और फिर वापस आएं।

0: बहुत खूब मनीष जी, थैंक यू सो मच। बस अब हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मुझे आपसे गुजारिश करनी है कि हमारे सभी सुनने वालों के लिए कोई मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: ओके ओके ओके। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि जो जो संगीत के साथ जो मेरा झुकाव था और जो बचपन से लेके अभी तक मेरे साथ है, तो मुझे लगता है संगीत इतनी एक ऐसी एरिया है, ये सिर्फ सप्तस्वरों का खेल नहीं है, ये इसमें भक्ति भी है, दर्शन भी है और मतलब एक रिलीफ भी है। तो ये मुझे लगता है जिन जिन लोगों को म्यूजिक का झुकाव है, जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, म्यूजिक हमेशा साथ रखिए। हर तरह के मतलब लाइट म्यूजिक होता है, क्लासिकल म्यूजिक होता है, तो उसको ना ये मैंने जैसे कहा स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से कनेक्ट करना बहुत इजी है। मैं तो सच में ये मेरे जो जो गाने गाता हूँ, जो बहुत फोकस करता हूँ, तो ये एक ही मुझे एक तरह से मेडिटेशन की तरह ही लगता है और बहुत बहुत सुकून मिलता है मतलब से। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेस बस्टर भी है। स्ट्रेस नाम की कोई चीज वैसे है नहीं ऊपर वाले की दुआ से, लेकिन ये जो म्यूजिक में जो जब हम रम जाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूशन होता है। कोई वरी नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, और इसमें जो थेरेप्यूटिक वैल्यू जो है म्यूजिक में, वो मुझे लगता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मैं अपने सब सुनने वालों से ये कहूँगा कि म्यूजिक जो है, अगर आप उसको पसंद करते हैं तो समझिए आप लोग ब्लेस्ड हैं, बिल्कुल ब्लेस्ड हैं। ओके,
0: अमेजिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आप मिले डॉक्टर मनीष से, उनके गीत सुने और उनकी बातें सुनी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।
1: ओ वेलकम वेलकम वेलकम।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: लीजिए दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और पवित्र कार्यक्रम, एक और पवित्र एपिसोड हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं रोहिणी जी। और जैसा मैं हमेशा करता हूं, जिससे कि जो भी हमारे मेहमान हैं वो सीधे सीधे आपसे बात करें, मैं बीच में से हट जाऊं, मैं रोहिणी जी का स्वागत करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि वो आपसे बात करें, आपको बताएं कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करती हैं। तो रोहिणी जी, हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए, उनके सामने आइए, हमें बताइए आप कहाँ हैं, क्या करती हैं।
2: मेरा नाम टीवीबी रोहिणी है। बेसिकली मैं हैदराबाद की नेटिव हूँ और रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में। ऑल माय लाइफ, जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक तो हम लोग सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड काम कर रही थी। बाय प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉरेक्स मैनेज करती थी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, ही वाज अ डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वी लिव्ड इन पंडारा रोड। तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा ये हमारा।
1: दैट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों, आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पंडारा रोड बहुत ज्यादा हैपनिंग प्लेस है, और वहां पर रहकर हम बात करेंगे रोहिणी जी से, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया, समझा दुनिया को, जिंदगी को समझा। तो रोहिणी जी, इस प्रोग्राम के तहत हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, अपने आप को पहचानने की। तो आप मुझे थोड़ा एनलाइटन करने कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है क्या, और सबसे पहले आपको आध्यात्म के बारे में कब पता चला, किसने बताया?
2: ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे आपने इस सुंदर दिव्य दर्शन नाम से जो चैनल आप कर रहे हैं काम, इस नाम से उस पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और सुंदर तरीके से अगर बताएं तो आध्यात्म तो हर घर में, एवरीवन, एवरी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो पूजा पाठ अपने घरों में करते ही हैं। तो आस्था ही हमने समझा कि स्पिरिचुअलिटी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा शुरुआत हुआ था, आई वुड से कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि मेरी आत्मा ने या मेरे सोल ने ऐसे पेरेंट्स को चुना जो आंध्रा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं।
1: जी।
2: तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग यू नो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करना, उनको मैं बचपन से देखती रही हूँ, और मुझे लगा कि वही आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है। बट दैट इज ओनली रिचुअल दैट वी वर डूइंग इट, और आत्मा को अपने इवोल्यूशन के लिए जो चाहिए था वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर ये प्रश्न उठना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे आई हूँ, इस पृथ्वी पे आके क्या मकसद है मेरा और मुझे कहाँ जाना है
1: जी।
2: अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर उठे तो आप समझो कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हो। देयर एक्चुअली योर फर्स्ट स्टेप बिगिंस। और वो कब होता है, जनरली हम देखते हैं कि या तो मन बहुत ही खुश है या फिर बहुत ही सैड है। जैसे घर पे आपने अपने क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को, किसी को देखा, ही हैज पास्ड अवे और शी हैज पास्ड अवे, एंड यू सी द बॉडी एंड यू सी दैट ही इज नो मोर इन इट, देयर इज नो लाइफ, आत्मा कहीं चली गई। ये तो शरीर है, और वो जब देखते हैं वो वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है अंदर कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो
1: जी
2: ये वाला जो प्रश्न आपने बोला मेरे स्पिरिचुअलिटी का कब शुरू हुआ, तो ये तो मेरे को लगता है कि 35-36 years old जब मैं हो गई, आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 34। उसके बाद से ये डीपर सर्च जो है, ये हमारा जर्नी इस सर्च पे शुरू हुआ।
1: ओके
2: सो दिस इज व्हाट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी।
1: जी
2: तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को समझ, जो मुझे समझ में आया अभी तक, तो मैं ये बता सकती हूँ आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी,
1: जी
2: और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, मुझे ये ऐसा लगता है। आई एम देयर फ्रॉम 1996 से मैं कुछ साधना कर रही हूँ जिससे मुझे इस बात पे कॉन्स्टेंटली विथ कमिटमेंट चलने का मौका मिला।
1: जी बहुत खूब। इसी तरीके की यात्राएं हमारे अपने जीवन में भी होंगी। आज जब रोहिणी जी ने कहा है तो हो सकता है आपको भी आपकी यात्रा याद और आ रही हो। दोस्तों चलिए उस यात्रा पर चलते हैं अपने को समझने की और इस भजन को सुनते हुए।

0: बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर बात रोहिणी जी। तो आज के प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है, जिस वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, उस समय में और समय में बहुत फर्क आ गया है। तो आज के यूथ के लिए आपको क्या लगता है, जो आज की जनरेशन है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारे परिवार में ही लोग हैं, उनके लिए अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो हर चीज में ट्रेंड फॉलो करते हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पार्टनरशिप, कपड़े और जॉब और एवरीथिंग। सो आर दे फॉलोइंग ट्रेंड ओनली, या स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी मायने है उनका?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं आपने आपको ब्लेस्ड बोल रही थी, उसी तरह से मैं तो बोलूंगी कि आज का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर रियली ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उनको ये चीज तो समझ में आ जा रही है बहुत अच्छे से कि वेल्थ एंड नेम एंड फेम इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो भी कभी भी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या परमानेंट खुशी जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको कहाँ से तलाशना है, और उस परमानेंट खुशी के लिए क्या करना है, ये नॉलेज उन लोगों में बहुत यंग उम्र में ही मिलने लग गई है। मैंने जैसे बोला कि 36 इयर्स मुझे लगे कि वहां मेरा सर्च शुरू करने के लिए, तो मेरा बेटा जो 7 साल का था, he was really blessed। उसको unknowingly वो दीक्षा मिली, unknowingly उस पाथ को चुनने का मौका मिला, एंड देन ही कुड गो मूव फॉरवर्ड। उसी तरह से मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त किया, देन माय पैशन, इट वाज माय पैशन टू टेक अलोंग पीपल ऑन दिस पाथ, हैंड होल्ड करके लोगों को, जिसको भी इंटरेस्ट है अपने आत्मज्ञान के रास्ते पे चलने का, उसका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाने का मेरा पैशन रहा है। हीलिंग वाज माय पैशन। पहले मैं बीमार थी, उसमें से मैंने अपने आप को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इस जर्नी पे चलती रही, और चलते चलते जितने लोगों को पॉसिबल है, जितने लोगों को चाहिए, इच्छा है, उन लोगों का हाथ होल्ड करके मैं आगे लेके चलना ही मेरा मकसद बना लिया अपने जीवन का
0: जी।
1: तो इसमें मैंने पाया है कि 8 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक सबको मैं इस रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ। आई फैसिलिटेट द कोर्सेस फॉर देम। तो वो कोर्सेस के माध्यम से उनको अनोइंगली नोइंगली वो कौन है ये जानने का मौका मिल जाता है। और जो अल्टीमेट चीज है, हम इस पृथ्वी पे आए क्यों, क्या करना चाहते हैं, उसके रास्ते पे उनको ले जाना शुरू कर देती हूँ। तो आई फील दैट यंगर जनरेशन इज रियली ब्लेस्ड। और मैं देखती हूँ कितने यंगस्टर्स हैं जो एक बार इस रास्ते पे एक चख लेते ना, जैसे कि आंखें बंद किया और आपने ध्यान अपने सांस पे लेके गए, सी हु यू आर, आपको समझ में आना लगता है।
0: Wow।
1: और आज के डेट में बच्चे से लेके बड़े तक सारे स्ट्रेस में ही है, और जैसे स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ भी रास्ता अगर थोड़ा सा भी उनको चखा दो तो दे आर गोइंग डीपली इनटू इट। सो आई वुड से कि इवन इफ दे आर फॉलोइंग ए ट्रेंड, इट नेवर माइंड, बट वो रास्ते पे चल पड़े ना
0: जी।
1: और वो जो चलना शुरू करते हैं, फिर उनको और कुछ चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ इस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। सो दे आर एंजॉइंग दैट अल्टीमेट ब्लिस एंड परमानंद जो है वो महसूस कर पा रहे हैं।
0: Right।
1: तो उससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं हमें।
0: बहुत सुंदर विचार करने वाली बात है, और हमें विश्वास कई बार हो जाता है कि हम यूथ से या आज की जनरेशन से थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबली हम चाहते हैं कि वो हमारी तरीके की जिंदगी जिए, लेकिन उनको भी पूरा हक है अपने तरीके से जीने का। तो रोहिणी जी ने बहुत प्यारे ढंग से हमें क्लैरिफाई किया, समझाया है। आइए विचार करते हुए इस भजन को सुने और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत सुंदर। और जाहिर से बात है रोहिणी जी, जैसे जैसे हमने पिछले सवाल में थोड़ा सा डिस्कशन किया और आपने हमें बताया, हमको समझ में आई बात। और आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी है हम पर, हम लगातार कोशिश में लगे हैं कि वो हमारे मतलब हमको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया से, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा पूछा। सोशल मीडिया समझिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जो इतने फास्ट इम्प्रूव हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, सोशल मीडिया क्या, ये सब चीजों की वजह से तो हमें कोने कोने में बैठे हुए भी कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो हमें बहुत जल्दी से पता चल जाता है, isn't it?
0: जी।
1: तो अब इसके दोनों एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पुराने जमाने में टीवी चलती थी तो लोग, सिर्फ एक टीवी थी और कुछ थी नहीं, तो लोग उसमें ग्लूड हो जाते थे, बट देन देयर वाज अ टाइम कि दे वर फेड अप ऑफ दैट, दे कुड कम आउट ऑफ इट। सिमिलरली ये भी आप मानिए, सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फेसबुक है, लोग उसमें गुम हो जाते हैं। हाँ, उनमें से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं, वो खुद अपने विजडम से उनको ये यू नो दे नीड टू हैव देयर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बात सच्ची है कौन सी बात झूठी है, इतना तो विजडम उनमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। और वो मीडिया के वजह से वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, ये भी बहुत जरूरी है। बट ऑल सेड एंड डन, सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड एंड इज गुड। इट्स गुड दैट सोशल मीडिया के वजह से काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जिन जिनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वो यहाँ टटोलते टटोलते बाय चांस एक्सीडेंटली भी अगर उसमें कहीं देख लेते हैं एंड देयर उनका इंटरेस्ट जग जाता है, तो इट कैन कॉज एन अवेकनिंग इन देम। सो यू कैन टेक इट इन बोथ वेज।
0: जी,
1: सोशल मीडिया कैन इम्पैक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और बहुत ही अच्छे वैल्यूज के साथ में सोशल मीडिया को अगर लेके चले तो इट विल हैव वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन इवन स्पिरिचुअलिटी एंड द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं।
0: आई गेट इट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात बार बार कही जा रही है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड, हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना होगा। इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि हम अपना नुकसान कर बैठे, लेकिन सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए विचार करते हुए, ये एक थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है सोशल मीडिया को यूज करने का, विचार कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए।

0: ना।
1: रोहिणी जी, बात स्पिरिचुअलिटी की हो, आध्यात्म की हो, तो एक टर्म और है जो पीछे नहीं रह सकता, वो है रिलीजन। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन आध्यात्म और धर्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, हमें बताइए ना, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग है?
2: धर्म तो वो हुआ जिसमें आप लोग पर्टिकुलर रिलीजन से आप पैदा हुए हो, उसी रिलीजन में जहाँ पे आपके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप आपके आत्मा ने उन पेरेंट्स को चुना और इस रिलीजन को चुना, आप पैदा हुए और उसमें चल रहे हो, एक आस्था के साथ चल रहे हो, दैट इज अ रिलीजन। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द रिलीजन। आप अगर एक बनाना लोगे, बनाना का जो छिलका है वो समझिए कि वो रिलीजन है, और बनाना जो है वो है स्पिरिचुअलिटी है। वेरी सिंपल एग्जांपल अगर बोलो तो।
1: जी जी जी जी, जी.
2: तो हम लोग क्या कहाँ फंस गए, हम लोग सारे अपने अपने रिलीजन के, मतलब बनाना के छिलके में फंसे हुए हैं। बनाना को टेस्ट करना और बनाना को एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। जो बंदा स्पिरिचुअल होता है, आई मीन स्पिरिचुअल पाथ में जो चल पड़ता है, उसको ही इज एबल टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड and he understands the true being of love. You are made up of love and you are love. तो वो एक experience है, spirituality is an experience, I would say.
1: जी।
2: और वो experience आपको इतना mature कर देता है कि आप हर किसी में positive चीज ही देख सकोगे और प्रेम से दुनिया को connect कर सकोगे, क्योंकि this whole world is nothing but the consciousness of pure love. और आप कण कण से आप जुड़ सकते हो with this experience of love. The whole universe is made up of love. तो ये हमें उस तरह से कनेक्ट कर सकता है, और स्पिरिचुअलिटी इज दैट, आई वुड से। और रिलीजन में तो वो बात वहां से कुछ और में चली जाती है ना। रिलीजन इज फर्स्ट स्टेप, यू कैन से एटलीस्ट रिलीजन, एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को मानते हैं, कुछ आस्था है, कहीं पे श्रद्धा भक्ति बनी हुई है उनके अपने ही तरीके से, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। तो ये तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप इसको आगे मिला के ले जा सकते हो।
1: आई गेट यू पॉइंट। दोस्तों, अगेन बहुत ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये हल्का फुल्का विषय वैसे भी है नहीं, क्योंकि जब ये पूरी जिंदगी को बदल के रख देने की ताकत रखता है तो गहराई से विचार तो दोस्तों करना होगा ना। चलिए एक प्यारे से भजन को सुनते हुए विचार करते हैं, मेडिटेट करते हैं।

0: बहुत सुंदर। अब एक शब्द मुंह से निकल गया मैम, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल, जैसे आपने मेडिटेशन बोला तो वाव बोला
0: जी। सो क्या अध्यात्म में मेडिटेशन का रोल है, किस तरह से है? अगर है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं मेडिटेशन को? मतलब इसका मतलब हुआ ध्यान। तो मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल रही है। ध्यान का मतलब क्या है मैम, और क्या अध्यात्म में ध्यान अगर हम यूज करें तो कुछ ज्यादा फायदा है? मतलब व्हाट इज द यूसेज?
1: बिल्कुल सही बोला आपने। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो सदियों पुरानी हमारे जो संस्कृति है भारत की, हजारों साल से लोग मेडिटेट करते रहे हैं। ऋषि मुनिया जो जो हमारे गैंजेस के बैंक्स के ऊपर बैठ के करते रहे हैं, दैट इज अ टेक्निक कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट लेटिंग गो, जस्ट लेट गो ऑफ योर सेल्फ। आपके क्रेविंग्स या अवर्शंस को लेट गो करना ही है और कुछ नहीं है। इट इज वेरी सिंपल टू लेट गो, और वो ही हम कर नहीं पाते हैं। जैसा ही हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस बनती है। वेरी सिंपली आई वुड से, पास्ट क्या है? पास्ट तो चला गया, क्या आप उसको लेके आ सकते हो? क्या नहीं ला सकते? और फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हो आगे क्या होने वाला है?
0: कुछ नहीं पता,
1: आगे का भी हमें पता नहीं। बड़ी सिंपल, एक बड़ी सुंदर एक सॉन्ग है, आई रिमेम्बर, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। Isn't it?
0: Absolutely.
1: तो जो भी है वो सिर्फ यही इस पल है, और इस पल की गहराई में जाना जो है वो मेडिटेशन है। So whatever you are doing, you are fully into that, पूरे दिल जान से आप जो भी काम कर रहे हो, जब उसके अंदर आप घुस जाते हो, that is meditation. You know, fully being your 100% in that work, whatever you are doing is meditation. और इस पल को जीना वही meditation बोलते हैं।
0: जी।
1: और इसी पल के लिए very beautifully it has been said, Present is it's a gift, isn't it?
0: Correct.
1: ये पल जो है गिफ्ट है, वो आपके लिए प्रेजेंट है वो।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: इसको ही समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक जो हम अपने सांसों के माध्यम से मेडिटेशन के अंदर जा सकते हैं। एंड ब्रेथ इज द वन दैट कनेक्ट्स यू टू द आउटर एक्टिविटी एंड द इनर वर्ल्ड।
0: Yes.
1: आप आंखें बंद करो, और एक मिनट के लिए अगर आप आंखें बंद करें और ध्यान अपने सांस पे ले जाएंगे, जस्ट फॉर अ मिनट,
0: जी,
1: कैन यू डू दैट? आप आंखें बंद करो और ध्यान अपने सांस पे ले जाएं, धीरे से आंखें खोलें।
0: Wow.
1: You feel so relaxed.
0: Absolutely.
1: So I can make you meditate just for 10 minutes and you can experience and let me know how you feel it.
0: Of course.
1: आपने रास्ता जो है, बोलते ना ब्रह्म ज्ञान खुद के अंदर है, ब्रह्मा जी ने अपने अंदर ही दबा दिया है। इट इज एवरीथिंग इज इनसाइड यू एंड यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग सर्चिंग आउटसाइड एवरीथिंग। तो वापस अपने घर का रास्ता, मतलब ये मान के चलो कि मेरा जो मकसद बना है आपको आपसे पहचान कराना, यू नो, खुद से खुद का जो मिलन है
0: जी,
1: वही है रास्ता अपने आप अंदर ले जाने वाला, और जो आपको